0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: शिवाजी की तलवार है, लावरी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
2: करदर्शन

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं, एकता की डोर में सबको बांधता। पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन फीलिंग्स वर्ड्स

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए फुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप ऐकत आहे

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

यानि कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज

0: चेंज कैसे करना है ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है?
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन ए सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, यू नो, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा,
1: ये गलत नहीं हो रहा, ये
0: ऑल डिस्टर्बेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसके बारे में, स्मोकिंग तो मेरे लिए ठीक है, इट्स अलाउड टू डू इट, तो आई डू इट वेरी इजिली। लेकिन जो नहीं करता है तो वो नहीं करता, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्मोक। सिमिलरली इफ आई क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम, पीस इज नेचुरल। अभी तक मेरा बिलीफ सिस्टम था टेंशन इज नेचुरल,
0: एंगर, छोटे छोटे एंगर तो ठीक है ना?
1: तो अगर मेरा बिलीफ सिस्टम है एंगर इज नेचुरल, तो फिर मैं गुस्सा करने से पहले दो बार सोचूंगी तो नहीं ना, एंगर इज नेचुरल, तो थॉट कैसे क्रिएट होगी वैसे ही होगी, फिर वो आगे बिहेवियर में आएगी। अब एक्सपेरिमेंट करके देखें कि एंगर इज नेचुरल के साथ हम कहां पहुंचे। गुस्सा करने की हमें आदत सी पड़ती गई और हर बार करके मेरे अंदर ही वो दर्द क्रिएट हुआ। एक दिन के लिए एक्सप्लोर करें एक नया बिलीफ सिस्टम, एंड दैट इज पीस इज नेचुरल। और कैसे पता चलेगा विच वन इज नेचुरल? जो हमें कंफर्टेबल फील करता है। आज भी कितना भी गुस्सा कर लें लेकिन हर एक को अच्छा क्या लगता?
0: पीस, शांति मांग ही रहे होते ना, ढूंढ रहे होते।
1: तो अभी हम शांति मांग रहे हैं, ये भी तो एक बिलीफ है कि शांति हमें मांगनी है, शांति हमें कहीं बाहर से, खुशी भी हमें बाहर से ढूंढनी है। अब मेरा ये बिलीफ है कि खुशी बाहर मिलती है, तो मैं ढूंढूंगी कहाँ? बाहर ही ढूंढूंगी। मैंने ये तो बिलीफ कभी क्रिएट ही नहीं किया कि खुशी तो मेरी अपनी इनर स्टेट ऑफ बीइंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट है। तो जिस क्वालिटी का बिलीफ उसी क्वालिटी के फिर थॉट क्रिएट होती। तो एक दिन हम एक सिंपल न्यू बिलीफ से एक्सप्लोर करते, पीस इज नेचुरल, एंगर इज अननेचुरल, लेकिन एंगर पे नहीं मनन करेंगे तो हम कहते पीस इज नेचुरल, पीस इज माय नेचर, हैप्पीनेस इज नेचुरल, हैप्पीनेस इज माय नेचर। तो ये बिलीफ लेकर अब सारा दिन चलो। एक दिन में मैजिक नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो हमारा बिलीफ हमारे थॉट पर वर्क करेगा। अब मुझे अगर गुस्सा आएगा, या अगर मैं गुस्सा, सी अभी तक गुस्सा आएगा तो गुस्सा आएगा नहीं, अब अगर मैं गुस्सा करूंगी तो आई विल इमीडिएटली टेल माई सेल्फ गुस्सा मेरा नेचुरल नहीं है।
0: ओ अमेजिंग, यू नो, गुस्सा आएगा मतलब क्योंकि कोई और
1: देखो
0: तो आएगा।
1: हाउ डीप रूटेड इट इज, बट नाउ इमीडिएटली वी कैन चेंज। गुस्सा अब जब हम क्रिएट करेंगे तो हम तुरंत अपने आप को कहेंगे दिस इज नॉट नेचुरल। अभी तक पहले मैं कहती थी ये तो करना ही था ना, तो उसके लिए भी जस्टिफिकेशन था मेरे पास करने के लिए, तो मैंने वो संस्कार पर वर्क नहीं किया। अब हम कहेंगे कि नहीं, मुझे आया लेकिन स्टिल दिस आई कुड हैव डन विदाउट दिस, इनफैक्ट आई वॉन्ट टू डू इट विदाउट दिस। तो धीरे धीरे मेरा अटेंशन होगा उस पर, धीरे धीरे मेरा थॉट चेंज होगा, बट फिर ऑटोमेटिकली वो मेरे बिहेवियर में आएगा। लेकिन गुस्सा जायज है, गुस्से से ही काम होगा, गुस्सा तो नेचुरल है, तो देन माई थॉट प्रोसेस विल वर्क ओनली।
0: इनफैक्ट अगर हम देखें बिलीफ जो है वो एक थॉट ही तो है।
1: इट इज,
0: बट देखो इतना
1: इट इज अ डीप रूटेड फाउंडेशन थॉट जिसके ऊपर से बेसिस पर
0: छोटे छोटे और थॉट्स निकलते हैं। ओके,
1: इसीलिए वो फंडामेंटल की क्वालिटी और भी ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट होती कि उसके आधार पर ही ये क्रिएट होंगे। अब जो इस थॉट को लेकर या इस बिलीफ को लेकर चलेंगे, एंगर इज नॉट हेल्दी या एंगर के बिना काम हो सकता है, तो उनको जब भी गुस्सा आएगा वो तुरंत किसको देखेंगे? अपने को देखेंगे, अपने पर काम करेंगे, और धीरे धीरे वो बिलीफ फिर उनकी डेस्टिनी बन जाएगा कि एंगर के बिना प्यार से काम करेंगे। हो सकता है, लेकिन जब तक उधर ही चेंज नहीं किया इट विल नॉट वर्क।
0: अगेन आई थिंक इट शुड बी बिलीफ, my belief leads me to destiny.
1: Yes.
0: Basically.
1: It is. Belief creates thoughts and then thoughts leads to destiny. Absolutely.
0: तो somewhere ये जो belief system की बात करते हैं, कई सारे हमने beliefs लेकर देखे थे, उन्हें एक्सप्लोर किया था, आगे आने वाली कड़ियों में भी हम करेंगे कि क्योंकि हम हैप्पीनेस इंडेक्स को देख रहे हैं कि दिन भर में मेरा इंडेक्स जो है वो स्टेबल है या कहाँ कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है। जो हमने कई चीजें देखी थी जो बिलीफ सिस्टम ही थे वो एक्चुअली मेरी हैप्पीनेस

0: किस पे डिपेंड कर रही थी. यू नो, जब मैंने ये कहा कि बाहर से आनी है तो मैंने देखा कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ मुझे हैप्पीनेस मेरी डिपेंड करती थी. मैंने अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया. आई डोंट नो डीप रूटेड गया कि नहीं, लेकिन ये एक थॉट, एक नया बिलीफ सिस्टम बन गया एक्चुअली कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है.
1: अभी तक था साधनों से खुशी मिलेगी, अब हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है. दो बिलीफ सिस्टम,
0: साधन है या नहीं है,
1: डिपेंडेंसी नहीं है उस पर. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी अगर मेरे पास मोबाइल आज नहीं है. मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊंगी मेरा मोबाइल अगर बाकियों के हिसाब से थोड़ा सा लोअर क्वालिटी का है. साधन यूज करने के लिए है, लेकिन अगर वो साधन ही मुझे डिस्टर्बेंस का कारण बने तो वो बने तो लाए, तो हमने सोचा था कि ये खुशी देंगे, लेकिन ये ही और रही. तो जैसे ही हम अपने बिलीफ्स को चेक करेंगे, अब नए बिलीफ के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें कि साधन है यूज करने के लिए, साधन कंफर्ट देते हैं, खुशी नहीं क्रिएट करते. नाउ एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट विद दिस, एंड फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो फिर उसको हम कह सकते हैं दिस इज द ट्रूथ
0: एंड दिस इज माय न्यू बिलीफ सिस्टम.
1: दिस इज द ट्रूथ. एक है बिलीफ, एक है ट्रूथ
0: जो शाश्वत है, जो सच है.
1: जो हम कहते हैं ना, हमने कई बार कहा कि राइट और रॉन्ग एक्चुअली क्या है. तो राइट और रॉन्ग, यस वी से इट्स रिलेटिव, बट एक्चुअली इट इज वॉट इज गोइंग टू मेक मी कम्फर्टेबल, दैट इज ट्रूथ फॉर मी. तो जब हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड इफ इट मेक्स मी कम्फर्टेबल, देन इट्स नो लॉन्गर अ बिलीफ, दिस इज द ट्रूथ फॉर मी. यस, दिस इज वॉट इज नेचुरल. फिर हमारे जीवन के वो जो फाउंडेशन लेयर है वो थोड़ी
0: समवे वी आर रियली रीचिंग आउट टू द क्रक्स कि क्या है वो चीज जो अभी भी हम कहते थे ना कि वो फीलिंग या वो थॉट इतना स्ट्रांग होता है कि वो नहीं चेंज हो पा रहा था, क्योंकि डीप रूटेड, मतलब जीवन भर हम उस पर चले होते हैं. एक और अब बिलीफ सिस्टम है या एक ट्रुथ है, क्या है, क्योंकि हमारी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही होती है. या हम कहते हैं कि वी गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ दैट, एंड दैट इज व्हेन वी टेक अ ब्रेक, व्हेन वी गो ऑन हॉलीडेज, या हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से होता है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से है, या किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसी नॉवल पढ़ रहे हैं. यू नो, दिस एक्चुअली गिव्स मी, व्हाई वी go for movies.
1: Yeah.
0: You know, why we watch television also?
1: Why do we watch?
0: Because it gives us somewhere, you know, we feel good.
1: See, why do we watch television? Yeah, why do we watch a movie? Yeah, why do we want to go for a holiday? कि कहीं ना कहीं जो मेरे thoughts चल रहे हैं उनकी quality बहुत pleasant नहीं है मुझे. Then I say,
0: take a break. You know, every time you're stressed out, go and take a break.
1: Absolutely. तो take a break क्या करना है actually मुझे? मैं चाहती हूँ कि मेरे वो वाले जो thoughts हैं वो चले जाए, एंड आई कैन यू नो बी मेंटली वेरी रिलैक्स्ड. लेकिन व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये सब करने से, इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू गो फॉर अ हॉलीडे, टू वॉच अ मूवी, टू गो वॉच टेलीविजन, व्हाटएवर, लेकिन विद फुल अंडरस्टैंडिंग कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट है और इसका क्या क्या फायदा है. हम सोच रहे हैं ये करने से खुशी मिलेगी, वो हमें अपने आप के अंदर चेक करना पड़ेगा कि क्या ये करने से खुशी मिलती है आपको, खुशी आप क्रिएट कर पाते हैं. एक्चुअली अगर आप थोड़े दिन ध्यान से अपने आप को देखेंगे तो जितनी देर हम कुछ और करते हैं हमारा मन वो हमारे थॉट. सपोज आज मेरा ऑफिस में किसी के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया, इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन माई माइंड, उसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा मैं कल, अब मैं घर आई मैं टीवी ऑन कर दिया, राइट, टीवी में कुछ और टोटली डिफरेंट आई एम वॉचिंग. तो उतनी देर के लिए वो थॉट्स जो मेरे वो चली गई, तो क्योंकि वो थॉट्स चली गई तो मुझे लगा वो टीवी का वो प्रोग्राम मुझे खुशी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोग्राम ने क्या कर दिया था, मेरी वो जो पेनफुल वाले थॉट्स थी सारे, वो पेनफुल वाली थॉट्स थोड़ी देर के लिए वो रुक गई, तो मुझे तो आई फील बेटर, क्योंकि वो पेनफुल वाली थॉट्स तो मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए I forgot about it. तो मुझे लगता है ये प्रोग्राम ने मुझे खुशी दी. I have to be very clear. प्रोग्राम ने मुझे खुशी नहीं दी. वो थॉट्स को थोड़ी देर के लिए आउट कर दिया. जैसे ही प्रोग्राम ऑफ होगा वही वाले थॉट्स
0: वापस आने वाले
1: हैं. वापस आ जाएंगे. कितनी देर प्रोग्राम देखेंगे, कितनी देर टीवी देखेंगे, कितनी बार हॉलीडे पर जाएंगे. सो दिस इज जस्ट अ सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग द इनर वर्क. क्योंकि हमें लगता है बस ये थोड़ी देर देख लिया वो सारी बातें भूल गई. एंड हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, कोई लोग उसके लिए शॉपिंग जाते हैं, कोई लोग
0: अपना
1: उसके
0: हर्ट
1: लिए
0: दूर करने के लिए
1: भूलने के
0: हाँ,
1: लिए
0: भूलने
1: कि दैट इज द डिफरेंस. एक है भूलना, एक है दूर करना, एक है उसको खत्म कर देना. तो कोई भी ऐसे माध्यम यूज करने से वो खत्म नहीं होता है, वो थोड़ी देर के लिए
0: भूल
1: जाता है, क्योंकि एक और मीडियम आपके माइंड के

0: Oh, we really need to see. Actually, if I repeat it, it'll become more comfortable for me कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो, राइट? लेकिन मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था, वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी, नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी. और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस, ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो सीरियल है, फिल्म है या नॉवल है, कि उस हर सिचुएशन में मेरे क्रिएट करने की, थॉट क्रिएट करने की, सही थॉट चूज करने की जो पावर है, उसको कुंद कर दिया, उसको खत्म कर दिया.
1: एब्सोल्युटली. एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है, क्वालिटी, इट इज हार्मफुल, यस. एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं.
0: हाँ,
1: जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे थॉट्स को क्रिएट करना है. अब मेजोरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है, उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है, कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि देवल से दिस इज व्हाट सेल्स. अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू
0: नहीं. और ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लगे कि जो हो रहा है समाज में, उसी का आईना है.
1: या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा है सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माई थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे
0: होना शुरू हो जाएगा,
1: क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया. टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है, और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन. अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे, अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माई थॉट?
0: डेफिनेटली. इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं, हर रोज चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज इतनी ये वाली हिट कर रही है,
1: वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा. अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम. क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि यहां हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं. अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा. एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था. लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा है,
0: तो गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका
1: इट इज अ डायलाइट
0: जो ग्लैमराइज किया जाता है.
1: एब्सोल्युटली. तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है.
0: यू नो इनफैक्ट आई हैव दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है. इट पैसा इज सिल. And this is what the belief system had because of the films.
1: True, but which is not true.
0: Of
1: but
0: course,
1: actually,
0: I understood it now.
1: Yeah. So this is not true. So कहीं ना कहीं वो हमारा belief system बहुत influence होता है. तो भले आज हम TV देख रहे हैं, movies देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें.
0: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है सुशिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चल. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें, तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट.
1: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए या उनकी आईसाइट खराब होती है. वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना पड़ता
0: है. हम कहते तो आते थे लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक.
1: अब अगर मैं इतनी देर टीवी एक घंटा भी देखा, सपोज दो घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम यू नो ओवर पावर्ड बाय दैट, अब पढ़ने के लिए बैठो उसके बाद माइंड तो नंब अवस्था में है अभी, फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर आ, उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है. उसने वो एक घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेट,
0: उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ
1: इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स लाइक

0: फिर उसको बहुत धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है। तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है। एंड टूडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
1: तो
0: कुछ,
1: हम सब इतने अच्छा। अनदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक इज दट ये तो एंटरटेनमेंट वो है जो मुझे सचमुच में आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व यू नो मे बी सीरियल्स थे या फिल्म थी, लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच भी नहीं ऑफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह का उनका परफॉर्मेंस, मतलब कितना एक ऐसा सिनेरियो सामने आता है जो हम सबको तकलीफ दे रहा है,
0: लेकिन फिर भी हम सब बैठकर देख रहे हैं,
1: डिस्कस कर रहे हैं उसको।
0: वो तो फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, यू नो, आज का रात का एपिसोड, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वॉक पर जब आप जाएंगे, जॉगिंग जाएंगे या ऑफिस जाएंगे,
1: yes,
0: वो आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो वो नेगेटिविटी सिर्फ सुनने तक और देखने तक नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में इतनी बार,
1: तो हमारा एडिक्शन ये हो गया है टीवी का कि हम ना चाहते हुए भी उसे देख रहे हैं।
0: समवेयर पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि हम अपने अंदर क्या फीड कर रहे हैं। आज बहुत सारी बातें जो हम समझते थे कि हमारे लिए गलत है या सोसाइटी की मर्यादाओं के हिसाब से हमने कहा कि दिस इज, आज उन्हीं बातों को बहुत ओपनली बात भी की जा रही है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग उसको कहीं ना कहीं एक सोशल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, यू नो कि दिस इज ओके, एंड इनफैक्ट उसको इतना जब दुनिया से एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उसको इतना ग्लैमराइज किया जा रहा है, सारे उसको प्रेज कर रहे हैं, तो हर एक का माइंडसेट कैसा क्रिएट होता जाएगा कि दिस इज ओके, पीपल आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड जितना हम उस तरह का इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालेंगे, हमारी सोच की क्वालिटी क्या होती जाएगी, हमारा राइट्स और रॉन्ग जो हम कभी कभी सोचते तो थे कि ये राइट है या ये रॉन्ग है, अब तो शायद वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोचते नहीं।
1: और सबसे बड़ी बात, हम ना देखना भी जाएं तब भी हम क्या कहते हैं, क्योंकि हमें इम्पैक्ट का नहीं पता, हाउ इज गोइंग टू इम्पैक्ट माय माइंड, हम कहते हैं एक बार देखने में क्या हर्ज है, पता तो चले चर्चा किस बात की हो रही है, क्या है ऐसा इसमें, देखें तो क्या बात हो रही है, एंड देन वी स्टार्ट यू नो अप्रूविंग।
0: Yes, we do. And then our mind starts taking that, ना वो हमारे अंदर से। आज आप बच्चों का प्रोग्राम देख लो, तो बच्चे उसमें किस तरह से ड्रेसअप कर रहे हैं, बच्चे उसमें किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने वो गीत को कितनी बार देखा होगा कि वो लोग उसी तरह उसको इनैक्ट कर पा रहे हैं, एंड वी से इट्स ओके, ये बच्चों का प्रोग्राम है, तो हमारे घर में बच्चे बैठकर उसको देख रहे हैं। कल अगर बच्चे वही कपड़े पहनना चाहते हैं, फिर हम उसके लिए इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं घर पे, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो इन्फ्लुएंस तो हमने दिया था। और वो बच्चे ने देखा कि जब सामने उस आर्टिस्ट ने इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह का परफॉर्मेंस दिया, उसको सबसे इतनी प्रेज मिली। एवरीवन इज लुकिंग फॉर एक्सेप्टेंस कि मुझे प्रेज चाहिए, मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए, और जब मैंने देखा इस चीज को एक्सेप्टेंस मिलती है, व्हाई विल आई नॉट ट्राई टू कॉपी इट इन माय लाइफ, तो फिर आई विल ऑल्सो वॉन्ट कि मुझे ऐसे वाले कपड़े पहनने हैं, मुझे ये सीखना है, मुझे बट समवेयर वी आर इंस्ट्रूमेंटल, और ये सब कुछ खुशी के लिए हो रहा है।
1: बॉटम लाइन वॉज खुशी,
0: खुशी के लिए हो रहा है। तो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
1: इंडस्ट्री इज गिविंग मी हैप्पीनेस, आई हैव टू रियली रियली चेक दिस चीज़,
0: एंड इसको कहीं ना कहीं घर में एक कल्चर क्रिएट करना होगा कि क्या हमने वॉच करना है और कितना उसको वॉच करना है और कितना उसका मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
1: इनफैक्ट अब हमें टीवी देखना ही, हमें पिक्चर देखनी है, कम से कम हम ये तो तय कर सकते हैं कि हम क्या देखें, यू नो दिस इज समथिंग विच वी रियली हैव टू थिंक। एंड नाउ अगर आपको बच्चों को भी मना करना है कि कितना टीवी देखना है, क्या देखना है, खुद को भी कहना है, हस्बैंड को भी कहना है, यू हैव अ पॉइंट, यू नो देयर इज अ लॉजिक, टुडे यू गेट दैट लॉजिक अपने लिए भी, अब आप कन्विक्शन से कह पाएंगे, कन्विक्शन से तय कर पाएंगे कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। कोई सवाल, कोई मन में बात उठती है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ चाहते हैं कि शेयर करें, कोई सजेशन भी उठ रहा है, स्वागत करते हैं, आप हमें ईमेल पर या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555,

हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। तो शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक बहुत परिवर्तन की बात है और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम की अभी तक ये था कि टेलीविजन ठीक है, मीडिया है, उसका इन्फ्लुएंस हाँ नहीं देखना चाहिए, आपने कहा कि आंखें खराब हो जाती हैं शायद या टाइम वेस्ट होता है, लेकिन हाउ मच इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग, हमें कितना हमारा पूरा माइंड का कंट्रोल पूरी सिचुएशंस पे जा रहा है और हमारी हैबिट बनती जा रही है, आने वाले जो सिचुएशंस हैं उन्हें हम अपने कंट्रोल देते जाते हैं फिर। तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। और आपसे हम विदा लेते हैं, लेकिन यही कहेंगे कि आप इस श्रृंखला में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम और कई बिलीफ सिस्टम्स को देखेंगे, किस तरह से वो मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं और कैसे मैं बदल सकता हूं उन्हें। आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

दबाव और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग द ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूं, ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुंच रहा है, आपके फोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफर पर चले, उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूं कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए।
1: मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एवरीवन हैज जस्ट जॉइंड इन एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव एवरीवन टुगेदर एंड एवरीवन जस्ट सेंड्स इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेस भेजते हैं। और सबसे ब्यूटिफुल चीज जो लगती है कि मेजोरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि you know, कोई हमारे घर में ट्रांजिट हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू

0: come out of it. And which is a very big achievement, you know, ki it just goes to prove ki jahan aap thoda sa apne upar dhyan dena shuru karo, to parivartan kitna sahaj hai. Jo aaj tak hum soch rahe the, nahi, apni aadaton se mukt hona kitna mushkil hai, वो कितना सहज अब लगने लग गया है.
1: अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हमारे सभी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो एक इतना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नजर आ रही है, तो आप इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई है और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं, तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है.
0: हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है, ये डायरेक्ट इस समय, इट्स नॉट जस्ट टू से इट बट इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, के ये डायरेक्ट निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं. आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया, और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था. जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था. शायद हमारी बुद्धि उतनी शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए, लेकिन जो परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं, तो वो सुप्रीम टीचर है. और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं. तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करे, बिकॉज I had also read so many books and listened to so many people, but वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक और एक कन्फ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं. तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा. मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे, यू रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटिफुल. और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज, हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना, वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता.
1: बिल्कुल, और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है, तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में इतनी आसानी,
0: और उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते, और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर सुप्रीम फादर आकर देते हैं, और हमें वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं. कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते, और फिर बताते बताते चाहे वो बहुत हाई बात भी हो, वो हमारे लिए इतना इजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं. सो इट्स एवरीथिंग इज डन. तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ भी मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका, और हजार कदम मदद के मेरे साथ में. दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. आज दिन तक हम एफर्ट कर रहे थे, इट वॉज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफर्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल. आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज है, वो एफर्ट करते भी तो उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफर्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है.
1: तो शिवानी, एक और बात अभी हमने, क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है, चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है, और ये सबसे सुंदर बात है. फिर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी जिंदगी जीते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशंस सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है, तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी जरूरत लगती है.
0: हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहने कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं, और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे, और वो रोज पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज डलती जाएगी, और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं.

0: परिवर्तन तो आएगा ही। एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें, अब दूसरा है अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग्स, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन का और गहरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन से हमें पावर मिलती है, हमें नॉलेज और पावर दोनों चीजें चाहिए। अभी हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज से एफर्ट हो रहा है, लेकिन पावर चाहिए और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब कई भाई बहने हमें लिखते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सेंटर पर अगर समय निकाल कर जाएं, क्योंकि दैट इज वेयर इट विल बिकम वेरी इजी। सेंटर का एक वायुमंडल होता है, वहां बहने हैं जो हमें गाइड कर सकती हैं। हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है, तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहने रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज लाइक अ चार्जर। आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगी। अब यही चीज को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा, यू नो इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना, तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहने भी वहां हेल्प करने के लिए होंगी, इट जस्ट बिकम सो इजी। तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज जा पाए तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर रोज नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज।
1: इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफर में ये रही है कि अनुभव, तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश जरूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है, तो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दो महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव हम कहां खुद खड़े
0: हैं। दो महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहां पहुंच जाएंगे। यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले, तो यू नो कल कर लेंगे कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है, तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। 10 दिन कर ले वो एफर्ट और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट। फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट विल बी वन ऑफ द थिंग्स इन योर डेली रूटीन। जैसे कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम ना होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते, भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, एक या दो बार मिस कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा, तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे। इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है, हम सेंटर पर जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है, तो वो मेरे को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा, तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज बढ़ा रही है, व्हाई विल आई नॉट टेक आउट टाइम फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट।
1: ओके, सो इट्स अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ्स, एक्चुअली एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद।
0: इट्स ओनली फॉर दोज हू वांट टू डू इट, सी अगेन इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज हैव टू गो एनीवेयर, लेकिन अगर क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, देन दैट इज द स्टेप।
1: वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफर होता है, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो है वो उस आगे के सफर पे भी जाना चाहते हैं। वॉट एग्जैक्टली इज इमोशन, यू नो मतलब क्या है वो बेसिकली?
0: आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। लगभग लेट्स से 10 ईयर्स बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है, उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू जिसके लिए हम कहते हैं। आईक्यू

0: अभी उसी की आदत पड़ी हुई है, तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं। तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज रीडिंग, बट वेयर इज द प्रूफ दैट आई एम रीडिंग दैट बुक, दैट प्रूफ हैज टू कम इन टू मी, बट आई जस्ट रेड इट, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, क्लोज द बुक एंड फिनिश्ड, एंड देन आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय द नेक्स्ट बुक, बट आई एम नॉट यूजिंग इट। तो ज्ञान इज नॉट जस्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड डिस्कसिंग, ज्ञान मतलब अवेयरनेस, क्या आप, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस ऑफ मेरे अंदर क्या चल रहा है। अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं इंटरनलाइज कैसे करूं, एक सिर्फ एक सेंटेंस को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, एंड यू विल नीड वन वीक टू वर्क ऑन इट, इट्स नॉट दैट सिंपल, लेकिन एक बार आपने उसके साथ वर्क कर लिया, इट्स देयर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम, उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया, और एक बार अनुभव की हुई चीज अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है। तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माई इमोशंस, माई फीलिंग्स, अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ओवर माई इमोशंस, मास्टरी ओवर माई फीलिंग्स। अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता, तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है। इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो ईक्यू। तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा, आई एम फीलिंग दैट एंगर, जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई शाउट एट एवरीबडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया, दैट्स लो। लेकिन इफ आई एम अवेयर जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर। और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस।
1: If you talk about emotions, what exactly is meant by emotion? Because emotional strength, emotions को भी बहुत अभी भी हम बहुत positively लेते हैं कि मेरी emotions बहुत strong है, बहुत strongly feel करता हूँ मैं, या
0: feel करता हूँ, see, मैं strongly feel करता हूँ, that's okay. Emotions different, feeling different. अभी क्या हुआ है कि बिकॉज वी नॉट अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम इमोशन वर्ड और फीलिंग वर्ड को एक ही भाषा में यूज कर लेते हैं कि एज इफ दे बोथ द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे टोटली,
1: अच्छा, इमोशन, बीइंग इमोशनल एंड हैविंग फीलिंग्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग,
0: टोटली डिफरेंट थिंग। अभी बीइंग इमोशनल इज इवन टेकन इन अ वेरी पॉजिटिव सेंस, लाइक वी सेड बीइंग सेंसिटिव, यू नो, बीइंग सेंसिटिव, आई एम वेरी इमोशनल, कि क्या मेरे पास मेरे इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई रो रहा है तो मैं भी रो देता हूँ, तो दैट्स नॉट अ स्ट्रेंथ एक्चुअली, इट जस्ट शोज कि आप कितनी जल्दी
1: डिप्लीट
0: हो जाते हैं, कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है, और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ। इमोशंस वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वो टेक इमोशन इन अ हेल्दी वे, दे थिंक इट्स हेल्दी क्रिएशन
1: एक्चुअली,
0: या बट अगर स्पिरिचुअल लेवल पर हम उसको समझते हैं एट अ डीपर लेवल, तो इमोशन इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस इन द एनर्जी ऑफ माई कॉन्शियसनेस, विच हैपन्स वेन समथिंग और समवन टू विच आई एम अटैच्ड इज थ्रेटन्ड और मूव्ड। सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, तो मेरी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है। आप आए और आपने ऐसे हाथ मारो और ये कप टूट गया। इफ दैट कप इज वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो, जैसे कईयों का होता है घर में दैट फ्लावर वाज इज वेरी प्रेशियस टू मी, या ये क्रॉकरी इज वेरी प्रेशियस, मतलब आई एम अटैच्ड टू दैट, तो टूटा तो ये, लेकिन डिस्टर्बेंस यहां क्रिएट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माई अटैचमेंट ये कप था, और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने आकर हिला दिया, और जैसे ही मेरे अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट को किसी ने हिला दिया, मेरी जो एनर्जी अंदर वो

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी

0: बात याद आई, एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
3: दोस्तों, जब एक परिवार शुरू करने की बात होती है तो माता पिता दोनों की आंखों में कई आशाएं होती हैं। हमारा बच्चा ऐसा होगा, हमारा जीवन ऐसा होगा, हमारा घर ऐसा होगा, बच्चे का फ्यूचर भी वो देख चुके हैं। क्या होता होगा उस परिवार के साथ जब उनको पता चलता है कि उनका बच्चा जो है मानसिक रूप से असंतुलित है। क्या होता होगा उस परिवार को या उनके सपनों को जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका जो सपना है वो पूरी तरीके से अब अलग है, क्योंकि उनका बच्चा जो है वो कई तरीके से मानसिक रूप से कई ऐसे अंदरूनी परेशानियों से जूझ रहा है जिसका समाधान माता पिता के पास नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है जो अपनी उदारता से, अपनी दृढ़ता से और अपनी समझ से उनके जीवन की इस परेशानी

0: कम करने में या उसका सामना करने में उस माता पिता को मदद करता है। और इस मदद के दौरान सबसे बड़ा मदद का जो भागीदार होता है वो बच्चा होता है, जिसे खुद को नहीं समझ कि वो किन चीजों से गुजर रहा है या उसके जीवन में क्या हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ आज हमारी मुलाकात होने जा रही। स्वागत है आप सभी श्रोता साथियों का यशस्वी भारत कार्यक्रम के आज के एपिसोड में, जहां हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव से, सिकंदराबाद के बहुत ही प्रतापी हॉस्पिटल स्वीकार। हॉस्पिटल ही नहीं, एक स्कूल भी है, एक इंस्टीट्यूट भी है, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, पुनर्वास का एक यज्ञ है, जहां कई ऐसे बच्चों का पुनर्वास किया जाता है, उनके माता पिताओं का काउंसलिंग किया जाता है। और अपने इस समाज सेवी प्रयत्न की वजह से डॉक्टर पी हनुमंत राव जी को भारत सरकार ने वर्ष 2023 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं डॉक्टर पी हनुमंत राव जी का। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोता साथियों की तरफ से और रेडियो मधुबन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने समय निकाला हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपना टाइम शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक्स।
1: मुझे भी बहुत खुशी है, मैं बहुत मेरे शुभकामनाएं हैं, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: अक्सर ये ऐसा होता है डॉक्टर हनुमंत जी, दैट हम सोचते हैं कि हमारा दिन कैसे शुरू होगा, कैसे जाएगा, कैसे होने वाला है, बट मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि मुझे और हमारे श्रोता साथियों को इस बात का यकीन जरूर होता है कि रेडियो मधुबन जैसे ही हम खोलते हैं, दिन की शुरुआत तो अच्छी होती ही है, लेकिन दिन भर में भी जो कार्यक्रम रेडियो मधुबन प्रस्तुत करता है उसके जरिए दिन हमारा बेहतर से बेहतर बनने लगता है। और जब कार्यक्रम यशस्वी भारत का हो, जिसमें हम भारत के यशस्वी पुत्र आप जैसे डॉक्टर पी हनुमंत राव जी से मिलते हैं, तो हमारा दिन बेहद खुशनुमा हो जाता है। जैसे कि आपकी कहानी में आता है कि आपने भारत के सैकड़ों ऐसे बच्चों का जीवन सुधारा है जिनके लिए लोगों ने उम्मीद या आस छोड़ दी थी, और तब जबकि उनके खुद के परिवार वालों ने भी आस छोड़ दी थी, तब आपने उनका हाथ थामा और उनको एक ऐसे जीवन की दिशा दी, जीवन को जी करके न केवल वो लाभान्वित हो रहे हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम की या ऐसे सेवा की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, ये हम जानना चाहेंगे, इसलिए हम शुरू करना चाहते हैं आपकी कहानी आपकी जुबानी।
1: मेरा पैदाइशी तो ओल्ड सिटी में हुआ, हैदराबाद में, चार मिनट से 3-4 किलोमीटर। पूरे डॉक्टर्स के परिवार में मैं पैदा हुआ, मेरे फादर मेरे अंकल पूरे आरएमपी थे, वो जमाने में एमबीबीएस बहुत कम लोग थे, पूरे आरएमपी थे और बहुत पॉपुलर थे, बहुत नाम था, वो जमाने में डॉक्टर्स ही कम थे। तो हमारा एक 40 रूम्स का नर्सिंग होम था, जब हमारा जॉइंट फैमिली ब्रेकडाउन हो गया, मैं मेडिसिन में ज्वाइन हुआ, सेकेंड ईयर में ब्रेकडाउन हुआ, तो बहुत तकलीफों के सामना करना पड़ा, पूरे हमारे अंकल सब सेपरेट हो गए, तो बहुत आर्थिक तकलीफों में शुमार हो गया। एक मरतब मेडिकल कॉलेज से निकाले गया, दो मरतब हॉस्टल से निकाले गया, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहने से। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मैं आई एम ए कंट्रीब्यूटरी प्रोडक्ट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वेलविशर्स। तो मैं सोचा भी नहीं था मेडिसिन कंप्लीट करता हूँ, मैं वरंगल में मेडिसिन कंप्लीट करके काकतिया मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद आया, गांधी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन हुआ। वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट बोले, भाई मैं हॉस्पिटल हॉस्टल के लिए पूछा, आउटसाइड जन हॉस्टल, नहीं नहीं तुम हैदराबाद के ना, हॉस्टल क्यों? मैं बोला नहीं सर, मैं वरंगल का हूँ, हॉस्टल चाहिए। तो फिर बाद में मैं ओल्ड सिटी गया नहीं, मेरे मेडिसिन में जब ज्वाइन हुआ ओल्ड सिटी नहीं गया, तो इधर ही मैं सिकंदराबाद में सेटअप हो गया, मेरा हाउस जॉब हो गया, सीनियर हाउस जॉब हो गया, मेरे फादर को ओल्ड सिटी से सिकंदराबाद लाया। मेरे फादर बोले नहीं गवर्नमेंट जॉब आया, तुम्हारा कॉल आया, चले जाओ। मैं बोला गवर्नमेंट जॉब अभी करना नहीं है मेरे को आगे पढ़ना है। नहीं नहीं मैं तो पढ़ा नहीं सकता, मैं घर भी चला नहीं सकता। तो मैं पूछा भाई घर चलाने में कितना पैसा चाहिए? 600 रूपये। ठीक है मैं वो दे दूंगा, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वो लोगों को सिकंदराबाद लाया, मगर माँ नहीं ठहरा, मैं हॉस्टल में ही ठहरा, गांधी हॉस्टल में। तो मेरा स्टाइपेंड जो आता था पूरा 600 वो लोगों को देता था। हम चार बहन है, चार भाई है, हम लोग टोटल 10 मेंबर्स का फैमिली है। तो मैं हाउस सर्जन से ही प्रैक्टिस शुरू करा था, बिकॉज आई एम बॉर्न इन ए जॉइंट फैमिली, मैं जब से ही डॉक्टरी करता था।

वचन देना, दवाया देना, मिक्सरा वो बनाना। तो इमीडिएटली मैं जैसा औरंगल से आया और जब शुरू करा साथ ही साथ प्रैक्टिस भी शुरू करा, तो थोड़ा कुछ जो भी कमाता था मेरा लिविंग चलता था, मेरा स्टाइपेंड फैमिली को देता था। वैसा मैं एमडी पीडियाट्रिक्स में ज्वाइन हुआ। हालांकि पीडियाट्रिक्स मेरा इंटरेस्ट नहीं था, एमडी जनरल मेडिसिन था, मगर उसमें डख ले गया मेरा सीधा और कोई दिए। उस जमाने में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था जो मनमाने करते थे, तो मेरा सीट और एक इन्फ्लुएंसियल आदमी लिया। मैं 3 महीने तक रेगुलर नहीं गया, मेरे को पीडियाट्रिक्स इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को जनरल मेडिसिन जाना है। बाद में मेरे सीनियर लोग एडवाइस करे, मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ने, नहीं तुम लड़े तो तुम्हारा लाइफ खराब हो जाता, तुम्हारे को फेल कर देंगे, तुम तो जो मिला हो ईश्वर की कृपा से हम जो चयन लगाओ। तो फिर मैं कॉन्सेंट्रेट करके एमडी पीडियाट्रिक्स कर लिया। सोचा मेरे फादर्स और ये लोग जो है आरएमपी रह के इतना सेवा करे, सर्दी खांसी बुखार ये रूटीन एलिमेंट्स को देखते थे। मैं एमडी पीडियाट्रिक्स करा, मैं भी वही काम करूंगा। ये पीडियाट्रिक्स होने के बाद कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं क्या करा, बॉम्बे गया, मेरा प्रैक्टिस को और एक दोस्त को बिठा के बॉम्बे गया। बॉम्बे में 4 महीने पीजी डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन रिहैबिलिटेशन, जब जब वो 3-4 साल के नीचे खुला था, वहाँ मैं एक ही डॉक्टर था, दूसरे पूरे फिजियोथेरेपी से दूसरे दूसरे स्पेशलिटी वाले थे, सब लोग थोड़ा एक अलग ही नजर से देखे। अरे इतना बड़ा उन्होंने क्वालिफिकेशन रह के कोर्स ज्वाइन करा, इन्हों पूरा पैरामेडिकल के थे बहुत से। तो मैं इसलिए ज्वाइन हुआ कि मेरे को दूसरा नॉलेज भी है, रिहैबिलिटेशन क्या चीज है, कैसा करना है। वो ध्यान से मैं वो मिशन से मैं वहाँ ट्रेनिंग को ओरिएंटेशन गया, वहाँ के डायरेक्टर को इन्वाइट करके मेरा पार्ट ऑफ मैं क्लिनिक में स्टार्ट करा एज ए हैदराबाद स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर। वो नाम तो सबको समझ में नहीं आया व्हाट इज स्पेशल स्कूल। जमाने में स्पेशल एजुकेशन बोले तो भी मालूम नहीं था, स्पेशल स्कूल मालूम नहीं था। लोग मेरे को आगे डॉक्टर साहब हमारे बच्चों को एडमिशन दो, हमें बोला ये ऐसा नहीं भाई, ये स्पेशल बच्चों के वास्ते है, ये ऐसा नॉर्मल बच्चों के वास्ते नहीं। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे प्रैक्टिस में एक शॉप लिया और एक शॉप लिया और एक शॉप लिया, 4 शॉप्स पीछे जो है, और जो घरा भी ब्लॉक्स ले लिया था किराए को। बाद में सोचा ये मेंटली ट्रायड एक ही नहीं है, डेफ बच्चों को भी मैं अपनी सेवा जरूरत है बोल के डेफ स्कूल स्टार्ट करा, पोलों को हॉस्टल भी स्टार्ट करा। और बहुत भीड़ बढ़ने लगा तो मैं सोचा गवर्नमेंट को अपील करेंगे। मेरे नेबर थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर मिस्टर डी के रेड्डी, बहुत अच्छे स्वभाव के आदमी थे डिफेंस स्टेट ऑफिसर, उन्होंने मेरे को गाइड करा, डॉक्टर साहब आप इतना काम कर रहे हैं, आप डिफेंस का जमीन के वास्ते अपील करो। तो उन्होंने बहुत सहायता करे, डिफेंस का लैंड 1 एकड़ लैंड सिकंदराबाद में जुबली बस स्टेशन के सामने, वो जब तो वैल्यू नहीं था, अभी बहुत बड़ा वैल्यू है उसका, सबकी नजर अपने ऊपर ही है। और अब उस तरीके से अपन बहुत लोगों की ईर्ष्या के शिकार हुए, मगर सबका सामना करा, ईश्वर की कृपा है कि अपने को गिराया नहीं। तो आगे बढ़ते गया आगे बढ़ते गया। एक मरतबा हमारे सीएम डॉक्टर वाईएसआर रेड्डी को बुलाया था, हम एक बिल्डिंग 5 माले का 5 स्टोरी बिल्डिंग को मैं एग्रीमेंट करा एक दोस्त से। भाई वो दोस्त पंडित राव बोल के थे, उन्होंने भाई इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया 2 साल से खाली रखे, मेरे को दे दो। तो इतना पैसा आप कहां से दे सकते डॉक्टर साहब, मैं बोला भाई एवरी मंथ देगा मैं थोड़ा। तो एग्रीमेंट करे हम, वहां पर जो है ड्रग रिएक्शन स्टार्ट करा, ये नशीली दवाओं के शिकार होकर बहुत से लोग तकलीफ उठा रहे थे। जहां जहां मेरे का दिल को तकलीफ हुआ, ये काम करना है या कुछ करना है, ये किसी का दुख बांटना है, तो वहां ड्रग रिएक्शन चलाया, डेव स्कूल यहां से वहां शिफ्ट कर दिया, मेंटली रिटायर्ड स्कूल भी शिफ्ट कर दिया, हॉस्टल शिफ्ट करा वहां पर, और होम फॉर द एजेड भी बनाया वहीं। तो बहुत से काफी बिल्डिंग था, 5 स्टोरी बिल्डिंग था, 45 फ्लैट थे उसमें, काफी 15-20 साल चलाया वहां। चलाने के 10 साल के बाद जब मैं पूरा पैसा पे कर दिया, जब चीफ मिनिस्टर को बुलाया तो डॉक्टर साहब तो 10 साल से बिल्डिंग में आपको पे करा हुआ है, आज हमारे से इनॉग्रेट कर रहे हैं। मेरा साहब अभी तक हम ओनर नहीं थे, अभी स्वीकार इज ओनर, उस वजह से आपसे डेडिकेशन कराया। तो बहुत उन्होंने खुश होकर क्या करा, नहीं नहीं ये सब कुछ आने दो, मैं आपसे बात करना है। तो मैंने बाद में बिठा के बात करा, ऐसा सेंटर आप कड़प्पा में खोलो। तो कड़प्पा में अपने को जमाने में 40 साल के नीचे मेरे को अलग ही इम्प्रेशन था, लोग मार लेते मर्डर कर लेते, सब बहुत फैक्शन। वो मैं
में मैं नहीं आता था बल, तो ये परस्यूट देन मेरे में भी कुछ लालची बना हुआ, अरे ये आदमी को तो अपन यूज कर लेते और आगे इंस्टीट्यूशन को ले जा सकते, उससे मैं क्या कर रहा, ठीक है चलाएंगे। तो कड़पा में जाके एक सेंटर ओपन करा, उन्होंने पहले तो जगह नहीं दिया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टार्ट करा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज नहीं कर सकता, फ्री रहता, दो फ्लोर मेरे को दे दिया। तो मैं दो कंपोनेंट्स थे मेरे स्वीकार एक्टिविटी में, स्वीकार एक्टिविटी में सेवा, एक जो है सर्विस है विकलांग को, हर तरीके के विकलांग को सेवा देना है। मेरा मोटो ये था रिहैबिलिटेशन फ्रॉम टूम टू टूम, फायदा हुए से जब से उन्होंने जब टूम में जाता है, ग्रेवयार्ड को जब जाता है, तो कितने भी कहीं भी हर किस्म का रिहैबिलिटेशन, दैट इज द नेम आई कॉल इट स्वीकार। बोलो तो वे लोगों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रहना अपने पास, दिल रहना चाहिए। तो स्वीकार के बाद उपकार बोल के लगा और एक ऑर्गेनाइजेशन, तो सेवा करना है। उसके बाद क्या है आश्रय, उसको आश्रय देना, नहीं तो भिगड़ आदमी, यू विल बी लॉस्ट। आश्रय के बाद सुरक्षा देना है। तो फोर्थ ऑर्गेनाइजेशन आई मेड इज सुरक्षा, स्वीकार, उपकार, आश्रय, सुरक्षा, ये चार ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन करा। ये सब मेरे जो सर्विस यूनिट थे सब चार ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड कर दिया, तो के इजी मैनेजमेंट के लिए। अभी मेरा डायनेमिज्म मेरा एनिमी हुआ, जैसा मैं कड़पा गया, पूरा एस्टेब्लिशमेंट कास्ट मेरा था, ऑपरेशनल कास्ट मेरा था। अब सीएम साहब पैसे देते हूँ बोले, उन्होंने बहुत बिजी हो गए थे सेकंड टाइम इलेक्शन में, तो पैसे उधर से नहीं आए। मगर एक पांच साल के बाद जमीन दिया हूँ, 10 एकड़ का जमीन दिया हूँ, वो बहुत वैल्यू चीज है, मगर उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता, मैं बेच नहीं सकता और कुछ कमर्शियली नहीं कर सकता। तो वो भी क्या करा, मैं बोला साहब ये फ्री देता हूँ, बोले सीएम, मैं बोला नको साहब कुछ नॉमिनल चार्ज करो, आप कोई और एनजीओ को दे देना, ये चार्ज 1 रुपया 5 रुपये, आप कितना चार्ज करो, मैं 50,000 पर एकड़ लगाओ सब, बोले नहीं यहाँ तो 1 करोड़ पर एकड़ है ना डॉक्टर साहब, सब 1 करोड़ है तो मैं तो प्लॉटिंग वोटिंग करके तो नहीं बेच सकता, मैं हैदराबाद भी नहीं ले जा सकता। तो इंडस्ट्रियन को आगे आपके बाद मेरे बाद कोई भी चलाएगा। तो फाउंडेशन उन्हीं से कराया, उससे पहला क्या करा, वो सर्विस यूनिट अपने शिंदे साहब गवर्नर थे, वो नया गवर्नमेंट प्रोविंसियल गवर्नर साहब से इनॉग्रेट कराया सर्विस यूनिट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्वीकार्स, स्वीकार रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड। उसके 3 महीने के बाद सीएम साहब से और एक इनॉग्रेशन कराया, डॉक्टर साहब ये क्या 3 महीने नीचे कराया, गवर्नर जी को बोला कि अभी मेरे से करा है सब, आप जो है ट्रेनिंग कॉलेज को इनॉग्रेट कर रहे हैं। एक डॉक्टर हनुमंतराव कितने लोगों को सर्विस देगा, एक कहावत है इफ यू गिव ए फिश इन चैरिटी यू विल ईट इन द मॉर्निंग शिट इन द इवनिंग, इफ यू टीच ए पर्सन फिशिंग यू विल कैच फिश फॉर हिमसेल्फ फॉर द फैमिली फॉर द सोसाइटी लाइफ लॉन्ग एंड यू विल टीच 100 पीपल फिशिंग। तो विद्या दान इज द ग्रेटेस्ट दान द अन्नदान। बहुत से स्वामी जी भी अग्री करते हैं ये जमाने में तो विद्या दान बहुत बड़ी महत्व है, क्यों बोलते, खाना फ्री खिलाए तो हर एक आदमी बैठ जाता है उसमें। वो कहावत है इंडिया हैज इनफ फॉर द नीडी नॉट फॉर द ग्रीडी, देयर इज अ शॉर्टेज बिकॉज ऑफ मोर ग्रीडी पीपल आर देयर। मैं इतने मरता हुआ देखा, मैं 2 दिन जगह फेल हुआ, मैं सोचा सोसाइटी सामने आगा एक हेल्पिंग हैंड देते समझा, मगर चलो डिसअपॉइंट हो गया, मैं कोई चिंता की बात नहीं है। तो और क्या कह रहा, मेरा डायनेमिज्म से कौशल आंध्र से बहुत से लोग आ रहे थे, मैं बोला भाई वहां एक सेंटर खोलेंगे, गुंडर में जाके खोल दिया सेंटर। और मेरे वाइफ का नेटिव प्लेस तांडुरबल के है, विकाराबाद के करीब है वो, एक 250 किलोमीटर है। तो वहां जाके खोला, एक 5 एकड़ जमीन खरीदा स्वीकार के नाम पे मेरा पैसे से, तो अच्छा बिल्डिंग बनाया 1-2 करोड़ से, वहां भी स्टार्ट करा, वहां भी सीएम स्टार्ट करे। और गुंटूर का जो है वहां के कलेक्टर और वाइस चांसलर इनॉग्रेट करे। तो तीनों सेंटर्स को चलाते गया, मैं सीएम साहब को पैसा पूछा, दे दो बोले, और उन्होंने देहांत हो गए हिफाज देवे, देन मेरा मिशन में बहुत बड़ा रुकावट शुरू हो गया। मगर मैं रोका नहीं, मैं बोला ये मिशन तो चालू रखना है। तो अभी बैंक लोन्स लेना शुरू करा, कड़पा में बैंक लोन लेके, तांडुर में बैंक लोन।

एक बिल्डिंग बनाया, कड़पा में जमीन दिए, जमीन दिए तलक भी सीएम साहब थे, मगर बाद में बिल्डिंग मैं बनाया मेरे पैसे से, एक दो फ्लोर्स का बिल्डिंग, 10,000 स्क्वायर फीट का बिल्डिंग बनाया, यहाँ भी एक 5,000 का स्क्वायर फीट तांडर में बनाया, मगर गुंडर में बिल्डिंग ओन बिल्डिंग नहीं बनाया, किराए का बिल्डिंग मेरा एक दोस्त का नर्सिंग होम क्लोज हो गया तो वो लिया, 75,000 रेंट पर मंथ देता था, वो भी चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट था, उन्हें भी काफी सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट दिया। अब हर जगह सब मेरे दोस्तों बोले अरे बंद कर दो तुम, पूरा फाइनेंशियली क्या कर रहे हो तुम, मुश्किल हो जाता, बंद कर दो। मैं बोला नहीं नहीं, कहीं ना कहीं से हेल्प आएगा, ये तो आई हैव डन ऑलवेज, आई हैड अ फेथ, आई हैव डन गॉड्स वर्क, आई नीड नॉट लुक आउट, यू विल टेक केयर। वो मेरा बहुत बड़ा जिद था, वो मेरा फेथ था। हलो हलो 25 करोड़ लोन कर दिया मैं, और कौन सा भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं था। अभी लोन से ज्यादा लोग प्रेशर करना शुरू करे, प्रॉपर्टीज में बहुत बनाया था स्वीकार के नाम पे। मेरा दोस्त में बोलते थे क्या तुम रियल एस्टेट कर रहे क्या, मतलब ये मैं तो स्वीकार के वास्ते खरीदा पैसा पूरा प्रॉपर्टीज। तो 32 एकर्स लैंड था स्वीकार, हैदराबाद से 30 एकर्स के डिस्टेंस में, 32 किलोमीटर के डिस्टेंस में 32 एकर जमीन लेके वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, रूरल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मेंटली चैलेंज्ड। पूरे आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से भी आते थे लोग, बड़े बच्चे। तो एग्री बेस्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग फॉर द मेंटली चैलेंज वो भी चलाया, काफी साल चलाया, सिर्फ 25 साल से ज्यादा चलाया। मैं जैसे मैं आगे बढ़ते गया तो आई स्टार्टेड सिंकिंग। अब मैं एक सर्विसेज पे नहीं रोका, और एक मिस्टेक नहीं, आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स बट आई डोंट थिंक अगेन इज नॉट अ मिस्टेक। हु एम आई टू डू, ही मेड मी डू, आई हैव डन, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। तो खाली सर्विस करे तो क्या फायदा, बोल के टीचिंग शुरू करा, डिप्लोमा से शुरू करके 1, 2, 3 डिप्लोमा इन हियरिंग इम्पेयर्ड, जो पढ़ते हैं वो लोग हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग देते, मेंटली डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग लेते हैं नॉर्मल लोग, वो मंद बुद्धि बच्चों की सेवा करते ट्रेनिंग देते। वैसे देन साइकोलॉजी, अब इतने लोग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सुइसाइड, मर्डर, स्टैबिंग, स्कूल ड्रॉपआउट, बच्चे मिसबिहेवियर, और ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते थे, अल्कोहलिक्स हो जाते थे। मैं बोला ये सब दवाएं रोकना है, ये सब रोकना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ स्टार्ट कर, दैट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इन प्राइवेट इन आंध्र एंड तेलंगाना। गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट था एर्रागड्डा, दैट इज बहुत पुराना है, वो ब्रिटिश टाइम से था। मैं प्राइवेट में स्टार्ट कर रहा था, मैं एक ही था, और रूरल में वहां भी लगाया। वहां लगाने के बाद क्या है, मेंटली इन लोग थे, मेंटली हैंडीकैप थे, तो एक आदमी बॉडी में गिर के सुइसाइड कर लिया, तो उन्हें नोट लिखा, नहीं नहीं डॉक्टर इज वेरी काइंड, दे आर ऑल लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल, ही क्रिएटेड ए शेल्टर फॉर अस, वैसा ऐसा अच्छा ही लिखा, अच्छा लिख के मर गया। तो मेरे को वहां से जब सेलफोन वेलफोन नहीं था, मैसेज आया ऐसा ऐसा, एक आदमी मर गया। बोला निकाल दो आदमी को अंदर से, बॉडी से निकालो। एक्सीडेंटली मेरे साथ एक इंस्पेक्टर था, डॉक्टर साहब ऐसा नहीं निकालना पड़ता, आप पंचनामा कराओ, आप इंस्ट्रक्शन बराबर दो, वो लोगों को पुलिस को बुलाओ, बोलो गांव वालों को बुलाओ, बोलो पंचनामा करके जब भी बॉडी निकालना है। तो इट वॉज ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। सो वो जमीन था, बहुत साल वहां भी चला। अब कोर्सेज बढ़ाते गया, डिप्लोमा से डिग्री, डिग्री में से पीजी, पीजी में से डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी स्टार्ट करा। ये कोर्सेज स्टार्ट करने में अपने वाई एस रेड्डी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों बोले तो मेरे को कौन सुनता था, यूनिवर्सिटी वाला कोई नहीं सुनता, आई एम ए नॉन एंटिटी। तो उन्होंने सेक्रेटरी बोला डॉक्टर साहब जो भी सपोर्ट होना बोलते दे दो डॉक्टर हनुमंतराव को, कोई चीज रुकना नहीं है। तो मैं कोर्सेज स्टार्ट करा, यूनिवर्सिटी वाले रिफ्यूज करते थे, क्यों भाई हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं है, आप कोर्स का स्टार्ट करते, हमारे पास स्पेशलिस्ट ही नहीं है। भाई हम स्पेशलिस्ट देगा, ऑल ओवर द कंट्री से स्पेशलिस्ट को आपके बोर्ड में लगेगा, दे विल मॉनिटर दिस। तो ऐसा कोर्सेज का परमिशन तो मिला उनका, स्वर्गवासी होने के बाद हम बहुत उलझन में फंस गए। अब लड़ाई लड़ते गए, बहुत से प्रॉपर्टीज बेच दिया, गुंडर का क्लोज डाउन कर दिया, तांडूर का क्लोज डाउन कर दिया, 17 ईयर चलाए सब। आरटीबीसी कृत्रिम अंग निर्माण वो भी क्लोज कर दिया, ओमफर देश क्लोज कर दिया, बहुत से क्लोज करा। अभी थोड़े कोर्सेज चल रहे हैं स्वीकार में, सिकंदराबाद में, उसमें भी क्या बहुत से बाधाएं आ रहे हैं। ये

0: वो इंस्पेक्शन को आते मेडिकल काउंसिल के वैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल बोल के है, वो दिल्ली में है। उससे पहले ही मैं स्टार्ट कर रहा था ये सेंटर। रिहैबिलिटेशन काउंसिल जन्म नहीं हुए से पहले हम सोच रहे बिकॉज हमें चिल्ड्रंस बेटिक्स चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर कोई नहीं था सिकंदराबाद हैदराबाद में, मैं ही स्टार्ट कर रहा था। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली चैलेंज या खोले, मैं खोलने के 10 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खोले, मगर किसी में नजर में नहीं आए, लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिए, कोई सपोर्ट नहीं आया किसी भी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस आते थे, दैट वॉज पिटेंस ओनली फॉर स्कूल को आता था, मेंटली चैलेंज स्कूल को आता था, डिफ स्कूल को आता था, बाकी सब इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ माई डायनेमिज्म। आई क्रिएटेड प्रॉब्लम एंड माई डायनेमिज्म बिकेम माई एनिमी, बट आई सक्सीडेड। नाउ स्लोली आई हैड टू वाइंड अप। नाउ आई आज पीपल इन्वाइट करा, मैं बोला देखो भाई मेरे को कुछ मत दो, आप इसमें भागीदार बनो अंडर CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप नाम लो मैनेज एंड स्पॉन्सर्ड बाई नाम लिख लो। मैं तो अपना नाम कहीं नहीं लिखा ना, मतलब बोल के अपना कर्म निभाया हमने, हम कर दिया, तो जो भगवान हमसे कराए हम कर दिया, नाम हमसे कोई आई डोंट बिलीव इन दैट। तो बहुत से कंपनी को बोला चेक पावर दो, कमिटी में ज्वाइन हो, मगर अभी तक तो कोई ऐसा रिस्पांस तो नहीं आया, मगर लोग बहुत से थोड़े एक्सपर्ट करने लगे थे, हमारे कमेटी में मेंबर दो, तुम्हारे पास कमेटी मेंबर्स क्या सेवा करे, कुछ भी नहीं करे, खाली नाम दर्शन मूर्ति है। मैं बोला वो सब एक्शन मूर्ति है तो काम आगे नहीं बढ़ता।
1: लेकिन आपकी जो इस कहानी में मैंने एक चीज देखा कि देखने में लगता है कि ये तो कितना अच्छा काम है, ये तो मैं भी करना चाहूंगा, ये तो बहुत सुंदर सेवा है, मुझे भी करना चाहिए, ये भाव लोगों में जरूर आएगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि इस सुंदर सेवा के पीछे कितना कठोर परिश्रम है, कितना मेहनत है, कितना चैलेंजेस है, और इन सभी परिस्थितियों को पार करने में एक व्यक्ति के अंदर कितनी दृढ़ता होनी चाहिए, तब जाकर के वो कुछ ऐसा कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन जब मैं आपकी कहानी को सुन रहा था तो मेरा ध्यान उस टाइम पे गया जब आपने बताया कि आपके परिवार में सभी चिकित्सक थे, सभी डॉक्टर थे, और इसलिए चिकित्सक बनना या डॉक्टर बनना जायज ही लग रहा था। लेकिन आपने ये भी बताया कि उस दौरान आपको बहुत मॉनेटरी सिचुएशंस आए, बहुत सारा आपके सामने ऐसा परिस्थिति आया जहाँ पर धन की वजह से आपको कॉलेज से निकाला गया या हॉस्टल से निकाला गया, लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हुए और अपने पढ़ाई की। बार बार ये जो गिरना और उठना चलता रहा, उसमें आपको क्या लगता है आपके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति थी जिसकी वजह से गिरने के बावजूद भी आप खड़े हो जाते थे, या आपके अंदर वो कौन सी बात थी जिसकी वजह से आप कभी झुके नहीं?
0: बस मैं ईश्वर की कृपा ही समझता हूँ और कुछ नहीं है। अपन तो बिल्कुल स्मॉल है, वी आर वेरी स्मॉल, इट इज ऑल ही इज द पावर, इट इज द पावर विद इन अस। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा नाम हनुमान है, बोला भाई ये तो शक्ति है
1: जी। जैसे हनुमान के लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं था, वो उन्होंने पर्वत भी दिखाया, ऐसा पर्वत दिखाते हैं कि उन्होंने पर्वत हाथों में उठाया और संजीवनी बूटी एक लेने गए थे, पूरा पर्वत ले आए, तो ऐसे ही आप एक का भला करने निकले थे और आपने पूरे पर्वत समान लोगों, मतलब एक बहुत बड़े हिस्सा का आपने जीवन कल्याण किया है, बहुत बड़े समुदाय का जीवन कल्याण किया है। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है कि जब आप बॉम्बे गए पढ़ने के लिए और आपके परिवार को आवश्यकता थी उस समय एक ऐसे व्यक्ति की जो कमा करके डायरेक्टली उनको सपोर्ट करे, बट उस समय आपने अपना बहुत बड़ा जो मोटो है या आपके जीवन का उद्देश्य है, आपने समाज सेवा भले चिकित्सा के द्वारा ही हो, लेकिन आपने उन बच्चों के प्रति अपना जीवन और अपना समय अपनी शक्ति को लगा दिया जिनके प्रति लोगों का इतना भाव नहीं होता है, लोग उन लोगों से बहुत बेउम्मीद होते ही हैं, उनके परिवार वाले भी बेउम्मीद होते हैं कि ये तो मेंटली चैलेंज हैं, मानसिक रूप से ये थोड़े से उतने परिपक्व नहीं हैं, आगे चल के क्या कर पाएंगे, तो परिवार वाले काफी दुखी होते हैं। ऐसे में आपने उनका हाथ थामा, आपके परिवार ने क्या साथ दिया आपका या आपके परिवार वाले?
0: मेरा ये एक बड़ा यज्ञ है, मैं तो बोलता हूँ ये बड़ा यज्ञ है, यज्ञ में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग मदद करे, अकेला यज्ञ एक आदमी नहीं करता है, एक यज्ञ जो है बहुत ग्रुप से बनाया जाता है, उसमें ज्यादा भागीदारी तो मेरे पत्नी है, डॉक्टर

0: लेडी निर्मला राव। तो बाद में मेरे बच्चे, मेरा पत्नी भी डॉक्टर है, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है। मैं बिफोर मैरिज इंटरव्यू करा मैं, शी कम्स बहुत बड़े फैमिली से भी आते उन्होंने, उनके दो ब्रदर्स मिनिस्टर थे। तो बहुत बड़ा योगदान मेरे बीवी का था कि मतलब मेरे ओन प्रॉपर्टीज भी बेचना पड़ा, बहुत से मरता हूँ, मेरा ओन हाउस भी मैं हाइपोथिकेट करना पड़ा। परसों जनवरी में रिलीज करा, फिर अभी परसों मैं ज्यादा अभी सैलरी नहीं दे सक रहा था, वैसे स्टेज में आ गया। तो क्या करा मैं, एक बैंक को ओवरड्राफ्ट देने के लिए, एक फ्रेंड जो है डॉक्टर राम करीबुल के है, उन्होंने एक बैंक से इंफ्लुएंस डाल के मैं भाई डॉक्टर साहब को मिनिमम 1 करोड़ ओवरड्राफ्ट दो, मेरे को सैलरी टाइम पे देने का है, मेरे को थोड़ा 1-6 महीने में संभाल लिया ना बागे आगे जा सकते। तो ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी करने के लिए फिर मेरा घर हाइपोथिकेट करना पड़ रहा, अभी वो प्रोसेस में है। तो कभी मेरे मिसेज, मेरे पत्नी जो है बीच में नया ये मत करो वो मत करो, मैं जो भी करा उसके साथ दिए, वो लोग मेरे साथ भी तकलीफ उठाए। मेरे को दो डॉक्टर्स है, एक जो है ऑस्ट्रेलिया में है, वो जो है फैशन डिजाइनर है। मेरे सेकंड डॉटर जो है, तो बड़ी डॉटर का नाम ममता राव है, छोटी डॉटर का नाम नम्रता, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है वो भी, उसको भी मैं सुपर स्पेशलिटी कराया, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन। ये बहुत डिमांड ब्रांचेस थे, न्यूनेटोलॉजी वो है। मैं बोला नहीं, जो सोसाइटी में शॉर्टेज है उसको तो तुम ज्यादा लोगों को सर्विस कर सकते। वैसे मेरे सन इन लॉ भी है, मेरे दामाद जी डॉक्टर आनंद प्रसाद, उन्होंने भी न्यूनेटोलॉजी करना चाह रहा था, तो आई हैड टू बैप्टाइज हिम, बैप्टाइज करके न्यूरोलॉजी में शिफ्ट कराया। वो टाइम पे काउंसिलिंग जरूरत रहता, गाइडेंस जरूरत रहता, और ये सज्जन मैं सब लोग मेरे बहुत से दोस्त थे इंग्लैंड में, अमेरिका में, मैंने इंग्लैंड को अभी आना मुश्किल है वो ये बोले तो मैं इंटरनेट में सर्च करके 6 इंडियन कंसल्टेंट को ढूंढ निकाला न्यूरोलॉजिस्ट को, उसमें जो 3 लोग बहुत बड़ा इंटरेस्ट बताया, उसमें अरे केरला का आदमी बहुत इंटरेस्ट बताया, डॉक्टर साहब यू सेंड बैक योर सन इन लॉ, आई विल टेक केयर ऑफ हिम एंड आई विल बी हैप्पी टू ट्रेन माई बॉयज बैक होम, इंडिया नीड्स। वो आदमी अभी अमेरिका में है, वो बहुत हेल्प करा हमारे सन इन लॉ को, विद इन 15 दिन में उन्होंने वीसा भेजा दिया, वो हम भेजा दिया, वहां जाके हॉस्टल में अकोमोडेशन दिया, यू हैव टू पे ओनली फॉर द हॉस्टल, रेस्ट ऑफ द थिंग्स ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द हॉस्पिटल। तो मेरा सन इन लॉ न्यूरोलॉजी बना के, वो न्यूरोलॉजी पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी हैदराबाद में नहीं था।
1: इसका मतलब ये केवल ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले भी कहा कि केवल आपका सामर्थ्य नहीं है, कई लोगों का योगदान है इस यज्ञ में, जिसमें आपका पूरा परिवार भी है सम्मिलित और आसपास के आपके दोस्त साथी सभी सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो बात आपने कही कि जब लोग उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई बार वो केवल धन संपदा और वैभव ऐश्वर्य ये सब कैसे प्राप्त हो उसके लिए सोचते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि समाज में अभी किस चीज की आवश्यकता है, समाज में किस चीज की नीड है, उस आवश्यकता को परिपूर्ण करने के लिए मैं अपनी उच्च शिक्षा का समय लगाऊं। ये सोच जो है बच्चों में या युवाओं में डेवलप करना बहुत जरूरी है, जो कि आपने किया अपने बच्चों में भी और अपने जैसे परिवार वालों के लिए आपने कहा, और इसके वजह से आज उनके जीवन में ये परिवर्तन हुआ। लेकिन आपके साथ जब उच्च शिक्षा का समय आया, जब आप MD करना चाहते थे और आपको बच्चों के लिए उच्च शिक्षा करना, पीडियाट्रिशियन बनने का आपको भाग्य मिला, उस समय आप वो नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि अगर मुझे पीडियाट्रिशियन नहीं बनकर के अगर मैं जनरल फिजिशियन का MD कर लिया होता तो क्या आपका लाइफ डिफरेंट होता, और आप कुछ बदलना चाहते अगर आप बाय टाइम मशीन पहुंच जाए तो?
0: नहीं, इतना कर नहीं पाता था। ये बच्चों बच्चे भगवान के स्वरूप है, ये दैव, स्वामी जी साई बाबा जी बोलते थे दे आर दैव स्वरूपास, ये लोगों को कोई आशा नहीं रहता, ग्रीड नहीं रहता, नीड नहीं रहता, सो एनीथिंग विदाउट नीड एंड ग्रीड इज डिवाइन।
1: कि कोई भी चीज जो कि लोभ और आकांक्षाओं से जो परे है वो बहुत दिव्य होता है, और बच्चे जो है बड़े दैवी स्वरूप के होते हैं। इन बच्चों की जब आप सेवा करते हैं तो ये स्पेशल बच्चे हैं, इनकी आवश्यकताएं अधिक

0: इंजर है बोल के पता नहीं लगता है, गर्म की चीज भी पकड़ लेता है, लोगों को मारता काटता, ये बहुत बड़े तो दुख की बात रहता है। फैमिली में एक बच्चा ऑटिज्म है तो अब उसके अंदर में बहुत बड़ा रिसर्च करा, तो अभी दवाएं लिखता हूं मैं, बहुत से दवाएं लिखता हूं, बहुत से लोग मेरे अगेंस्ट भी है दवाएं नहीं लिखना। मेरा लॉजिक क्या है, मैं तो दवाया कोई चीज नहीं बना रहा हूं, अवेलेबल मेडिसिन आई एम यूजिंग, दोज मेडिसिन वर यूज इन एडल्ट्स आर बीइंग यूज इन एडल्ट्स इवन टूडे, वही दवाएं कम मात्रा में बच्चों को देता हूं। तो ये आर्टिस्टिक बच्चे अभी मेडिसिन यूज करता हूं, अभी लोगों को मैं समझाने को कोशिश कर रहा हूं, जो भी चांस मिला वो एडल्ट मेडिसिन से कम मात्रा में बच्चों को यूज करे तो क्या है, उन्हें स्टेबल हो जाता। अभी 90% बच्चों को 90% बच्चों को क्या कर रहे हैं ये लोग, तो मेडिसिन से क्या है, अभी मेडिसिन के एक मेंटेलिटी है, रिहैबिलिटेशन फील्ड में अभी मोस्ट ऑफ लेडीज आर डोमिनेटिंग, लेडीज एंड नॉन डॉक्टर्स, तो उसमें क्या वो लोगों को मैसेज नहीं जा रहा, वो लोगों को कन्विंस करना बोल तो बहुत पब्लिसिटी करना पड़ता, ये जो जो बच्चों को बेनिफिट हो रहा है वो लोगों को बताना पड़ता। देर शुड बी लॉट ऑफ सेशंस दैट मेडिसिन आर यूजफुल फॉर दिस चिल्ड्रन। मैं पीडियाट्रिशियन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट एंड आई हैव डन पीएचडी इन साइकोलॉजी ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एट द एज ऑफ 50 आई हैव रिटन एग्जाम फॉर 5 डेज, देन आई टुक 3 इयर्स टू सबमिट माई थीसिस एंड गॉट द पीएचडी, नॉट 100 पीएचडी एज अ शवरिंग नहीं है, आई गॉट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड 7 टाइम्स, ये पद्मश्री परसों आया, 5 टाइम्स इट वॉज रिकमेंडेड, अभी 6 टाइम बोला मैं ये लास्ट चांस लेता हूँ सेल्फ नॉमिनेशन। हम मोदी जी साहब के ये हया में सेल्फ नॉमिनेशन भी है, तो मैं मेरा पीए को बोला, वो मेरे कंप्यूटर इतना नया था, तो बोला भाई तो चलो अपलोड करते जा, किसी को नहीं बोलेंगे, आई डिडंट टेल माय वाइफ आल्सो। जनवरी में फोन आया, तो होम मिनिस्टर से फोन आया, देयर इज अ गुड न्यूज, वी वांट टू विल कंग्रेचुलेट यू, बोला सर क्या बात है, बोलता ऐसा ऐसा यार बिन सेलेक्टेड फॉर पद्म अवार्ड, वो ये बोला था नहीं डू एक्चुअल में बोला श्योर इट इज ऑनर। तो वैसा हुआ, जनवरी में अनाउंसमेंट हुआ, उगादि के डे एग्जैक्टली 1 ईयर नाउ टुडे। और एक चीज क्या है इंसिडेंटली, उगादि के दिन मैं स्वीकार साथ करा।
1: अच्छा स्वीकार को भी उगादि के दिन उसके जन्मदिन की
0: मार्च 17, 1977 47 इयर्स हो गए अभी। तो अभी तक तो चल रहा है, अभी तो ज्यादा लोग ऑल ओवर द कंट्री से फॉरेन से भी आ रहे हैं लोग ये मेडिसिन दे रहे हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो सम्मान है, जैसे आपने बताया 7 बार आपको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ और इस वर्ष 2023 का आपको पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, क्या इन सम्मान और पुरस्कारों की वजह से आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा, वो थोड़ी सहज होती है या मुश्किलात उतनी ही आते रहते?
0: मुश्किलात में तो कुछ कमी नहीं हुआ, मगर एक ही क्या है, मैं आई गॉट रिचार्ज, माई एनर्जी गेट्स रिचार्ज, मैं डिमोरलाइज हुआ तो ये सब चीजें मेरे को रिचार्ज कर देते, आगे बढ़ाते रहते, प्रोपेल करते रहते, तो कहीं रुक नहीं पाया, ये जर्नी तो चलाते जा रहा हूँ आज तक भी। तो ये पद्मश्री पुरस्कार आने के बाद बहुत से लोगों को मालूम हुआ, उससे पहले बीच राय अवार्ड भी आया था, वो भी बहुत बड़ा अवार्ड है, प्रेसिडेंट से दिए है, मेडिकल फील्ड में बड़ा अवार्ड है वो भी, मगर पब्लिक को, जनरल पब्लिक को नहीं मालूम।
1: जब आप तो राष्ट्रपति भवन गए पद्मश्री सम्मान लेने के लिए और जब आप राष्ट्रपति महोदय से मिले, तो क्या बातचीत हुई आपकी या कैसा रहा आपका यहाँ?
0: नहीं अभी सब तो मैं आपको भिजाना, मैं भिजाता हूँ, मेरा वीडियो है अभी सब थे।
1: हाँ जी, आपका स्वीकार का मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा है, बट ये पुरस्कार का आप बता रहे?
0: पुरस्कार थे, पीएम साहब थे, अमित शाह थे, पूरे जयशंकर जी थे, शांतिवनम के दाजी थे
1: जी,
0: उनको मैं सामने देखा था, तो उनको भी जाके चरण प्रणाम करा, क्यों बोलते सब डिवाइन सोल्स है, वो लोगों को मिलना तो मुश्किल है, मैं बोला अपोजिट में, मेरे अपोजिट में बैठे थे, मैं उठ के जाके उधर चरण प्रणाम करके आया, तो वो एक

0: सौभाग्य है, जब दर्शन हुआ तो भाई चलो अभी पीएम साहब वाले सबको मिले, एक एक को आके एक एक को करचालन करे, तो उनके सामने अपन बात नहीं कर सकते, इतना बड़ा पर्सनालिटी है ना, अपन अपना मुंह बंद हुआ था। तो फिर भी बोला मैं स्वर्ण सो और क्या बात कर सकते उनसे
1: जी।
0: इस सच्चे पर्सनालिटी एक बस अभी क्या बोल सकते, अभी देखना है अभी कैसा कैसा अपना कंट्री तो आगे बढ़ रहा है। अब उन्होंने इतने चीजों के सामना कर रहे हैं, हम तो नाचीज है, हम जो चीज को हम सामना कर रहे हैं तो ये तो बहुत कम है
1: ये। मुझे जो चीज समझ में आता है कि आप वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन आप उसका बिल्कुल भी अभिमान नहीं करते हैं और आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही नम्र चित्त हैं। इसीलिए मुझे ये उत्सुकता थी कि आपके सामने जब राष्ट्रपति महोदय थे, क्योंकि वह भी एक बहुत ऐसी नम्र चित्त व्यक्तित्व है जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन बिल्कुल ही निर्माण है, कोई अभिमान नहीं है, बहुत ही परेशानियों का सामना करते हुए आज वो उस मुकाम पे पहुंची है। तो मुझे वही लगा कि जब ऐसी दो हस्तियां आमने सामने होती हैं तो कैसा अनुभव होता होगा, इसलिए मैंने आपको ये सवाल पूछा।
0: जी जी जी।
1: मुझे एक और चीज ये जानना था कि ऐसे आपके जीवन में आपने इतने सारे बच्चों के साथ समय गुजारा है, उनको समय दे करके, उनको चिकित्सा के द्वारा, उनको काउंसलिंग के द्वारा अपने बेहद मदद पहुंचाई है, स्वीकार, उपकार, रक्षा,
0: आश्रय, सुरक्षा,
1: आश्रय सुरक्षा, इन चार माध्यमों से आपने उनके जीवन को एक सर्वांगीण विकास का रास्ता दिया है। इस दौरान आपके सामने कोई ऐसा केस, ऐसा कोई बच्चा आया हो जिसकी कहानी आपके दिल को छू गई या जिसके द्वारा एक आपको शिक्षा मिली, कोई ऐसी कहानी आई क्या? दो
0: ऐसा तो बहुत से है, एक तो आज बोल के भी नहीं है, बहुत से है। मैं एक दिन एक स्वीकार के नाम पे एक प्लॉट लिए थे और वो साइड को जाने के लिए एक हार्डवेयर शॉप के पास रुका, वो इंक्वायरी कर रहा था, एक बच्चा आके नमस्कार करा, साहब मैं स्वीकार में पढ़ा, मैं स्वीकार में स्वीकार का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ अभी स्टील शॉप में काम कर रहा हूँ। सो मेरे साथ और एक दोस्त थे, उन्होंने बहरेन से आए हुए थे, आनंद बाला बोल के, बहुत अच्छे इंसान है। तो उन्होंने बोले डॉक्टर साहब कितना खुशी होता है वो आदमी आके हंसते हुए आपको विनम्रता से नमस्ते कर रहा है। बोला हाँ भाई मेरे भी खुशी होता, वही आनंद है, वही हमारा प्रॉपर्टी है, हम तो ज्यादा कुछ कमाए नहीं है मगर भगवान नहीं गिरा है, हमारे आनंद है। तो आत्मतृप्ति बोलते है ना, आत्मतृप्ति है
1: जी,
0: आत्मतृप्ति जब नहीं रहता आदमी दुखी रहता,
1: जी
0: दुखी रहता आदमी,
1: आत्मतृप्ति ही आनंद है। और आनंद जो आपने बताया वो दूसरों की खुशी में, मुझे इसमें एक और चीज जानना था कि जैसे ये तो एक आपने ऐसा किस्सा बताया जो कि किसी बच्चे ने जिसने कुछ उपकार प्राप्त किया है स्वीकार के द्वारा और उसके जीवन में संवर्धना हुई है और फिर वो आपके सामने आया, क्या कभी कोई ऐसे लोगों की कहानी आपको सामने आती है या आपको याद आता हो कोई ऐसा व्यक्तित्व या ऐसा किस्सा जहाँ लोग आपके जो अगेंस्ट थे, जो आपके विपरीत दिशा में खड़े थे, आपके कार्य को देखते हुए धीरे धीरे वो बदल गए, कोई ऐसा कोई कहानी आपको याद आता हो?
0: नहीं, एक सेइंग है, मैं ऑलवेज बिलीव करता हूँ, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन एग्जिस्ट विदाउट क्रिटिसिज्म, नो गुड वर्क कैन प्रोग्रेस विदाउट रेजिस्टेंस। मेरे को जितना क्रिटिसाइज कर रहे थे उतना आगे बढ़ते गया, मेरे को जितना रुकावट बढ़ते गया मेरा प्रॉब्लम और इजी होता गया। मेरे ऊपर कोर्ट केसेस है, मैं एक्सेस बनाया बिल्डिंग, मैं बोला था मेरा प्रॉपर्टी तो नहीं है, वो गिराने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर दे दिया गया इसको डिसमेंटल नोटिस, वो भी बनाने के 15 साल के बाद। मैं बोले थोड़ी दुष्ट शक्तियां रहते, ये दुष्ट शक्तियां क्या है, यज्ञ भंग करने के लिए राक्षस संतान भी रहता ना, ये मैं कर रहा था यज्ञ है, वो यज्ञ को भंग करने के लिए बहुत से दुष्ट शक्तियां पैदा होते। तो मेरे को कोर्ट को खींचे, मैं बोला चला था गया, अब कड़पा में 10 एकड़ तुम्हारे कई को हमारे को दे दो, 9 एकड़ कलेक्टर नोटिस दे दिया, वहां भी केस चल रहा, तो केस मेरे फेवर में आया, मगर दुखी हो जाते हम, इतना परेशान होना पड़ता है, कोर्ट को जाना है, वो ये सब बड़ी चिंता की बात है। अब बिल्डिंग गिराना बोल के नोटिस दिया तो कोर्ट को जाना पड़ता, मैं 3-4 मरता गया, मैं बोला भाई मैं कोर्ट को नहीं आता,

0: क्या मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या? हम अच्छे भावना से बनाए, मेरा तो प्रॉपर्टी नहीं हो, एक कुर्सी भी मेरा नहीं हो। तो मेरा पीए को लगाया, एक बच्चा है, यंग बच्चा है, पूरा उन्हें कोर्ट को घूमता, उसको पर वो जीपीए दे दिया और पूरा कोर्ट को उन्हें फिरता। तो इतने संघर्ष करना पड़ा मेरे को, कहीं इजी वर्क नहीं चला मेरा। आज भी बहुत से बड़े बड़े बहुत पैसा ऐसे वाले नहीं दिए मेरे को पैसे, छोटे आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं रहता, उन्हें मंथली पेंशन रहे तो साल को एक मरता आगे 20,000 देके जाता था। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर साहब को मिल सकता हूँ क्या? मैंने बराबर मिल सकते, मेरे फोन आए नीचे से एक एक साहब है, हर साल अपने को 20,000 देते, उन्हें मिलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो ठीक है भाई, लेको चलते के व्हील चेयर में लाओ। नहीं नहीं, अभी सपोर्ट इज वॉकिंग, मैंने व्हील चेयर में लेके आ बोला, ये रिफ्यूज टू कम ऑन व्हील चेयर। तो आदमी को पकड़ के सपोर्ट से आ गया ऊपर, मैं उठ के नमस्कार करा, पेट में मुंडी डाला। नहीं नहीं नहीं, आप उठना नहीं, आप महान है। मैं बोला मैं कहां से महान हूँ, आप इंजन है, मैं इंजन हूँ, बगैर इंजन का इंजन नहीं चलेगा,
1: इंजन नहीं चलेगा बगैर फ्यूल का नहीं चलता।
0: ना आप, आपके आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत एजेड था आदमी, मैं ऐसा झुक के नमस्कार किया तो वो रो लिया आदमी। मैं बोला नहीं नहीं, ये आप ही भागीदारी है, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। एक ने एक आदमी से नहीं होता, बार बार बोलता हूँ। कोई लकड़ी डालता, कोई घी डालता, कोई पंचदान डालता, कोई प्रेयर पढ़ता, मतलब आप सब लोग भागीदारी है इसमें। तो अपने अपने अकाउंट सेपरेट है, उसके बाद ईश्वर के पास ज्वाइंट अकाउंट नहीं है, बेनामी अकाउंट नहीं है वहाँ। जो आप ठीक काम करते हैं, नहीं की करते हैं, वहीं जाता है, सेपरेट अकाउंट में जाता है। मैं तो खाली एक इंसान हूँ। तो दूसरे लोग मेरे को एक दिन नीचे आ रहा था बंगले, थर्ड फ्लोर से, मेरा ऑफिस थर्ड फ्लोर पे, डॉक्टर साहब आप इतने लोगों को पैसा पूछते, मैं अकेला दे सकता हूँ पैसे? ऐसा देखा मैं, तो मैं मेरे बच्चे अच्छा कर दो देता हूँ। मैं बोला मैं नहीं कर सकता आपके बच्चे को, ईश्वर मेरे को सब कुंजियाँ नहीं दिया, थोड़ा ज्ञान दिया है, थोड़ा बुद्धि दिया है, थोड़े कुंजियाँ दिया है, उसी को ऑपरेट करता हूँ, तो उसी की कृपा है, आप उसी को पूछो, मैं नहीं दे सकता, अब मैं आपके पैसा भी न कहूँ। तो फिर एक बात बोला, आप ऊपर वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, आप मेरे से बिजनेस नहीं कर, आपके जरा बुद्धि जो है चेंज होना है। मैं हमेशा ये करता हूँ कि किसी को तो नहीं छोड़ता, उसको एक झलक तो देता हूँ। क्यों बोलते हो? विद्यादान, हर एक को एक झलक दे दो। बस मैं ये तो समझा दिया, देखो आपका बच्चे को मैं अच्छा नहीं कर सका, जरा बहुत से बच्चों में तो फायदा हो रहा ना, ये स्वार्थ छोड़ दो। जब आपका नियत ठीक रहता है, भगवान की कृपा आपके ऊपर आता है।
1: ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब व्यक्ति का नियत साफ होता है तो मुराद हासिल होता है, अर्थात जब उसकी नियत साफ है, दिल साफ है, तो ऊपर वाला भी बैठा होता है मेहरबानी उसके ऊपर झड़काने के लिए, उसके ऊपर मेहरबानी होती रहती है। मुझे आपसे बहुत अहम सवाल पूछना है, वो ये कि आज कई लोग, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, युवा जो है, एक दिशा ढूंढ रहा होता है, वो अपने जीवन में कोई जॉब ढूंढ रहा होता है या कोई स्टार्टअप करता है, चाहे वो कोई भी स्टार्टअप हो, उद्देश्य तो उसका यही होता है कि इससे लोगों का भला, लेकिन उस रास्ते में चलते चलते कई बार वो इतने उलझ जाते हैं कि जिस उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था उस काम को, वो उद्देश्य पीछे रह जाता है और भागम भाग दौड़ ये बहुत आगे निकल जाता है। क्या आप सुझाव देना चाहेंगे, कौन सी चीजें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे वो किसी भी समस्या का समाधान कर सके, या कौन सी वो बातें एक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जिससे जो उन्होंने उद्देश्य लिया है उस उद्देश्य को वो मूल रूप से पकड़ के रखे, उसमें कोई गोल मेल या उसमें कोई जो बाहरी तत्वों का सम्मेलन हो जाता है वो ना, उसकी प्यूरिटी को कैसे मेंटेन करे, किसी भी यज्ञ के भाव को कैसे संजो करके रखा जा सके?
0: मैं इंडिया में 32 कोर्सेज स्टार्ट करा था, वही माध्यम से क्या है, ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग करूंगा, ज्यादा लोग जाके सर्विस करेंगे। एक डॉक्टर मतलब कितने लोगों को सर्विस कर, तो बहुत से स्पेशलिस्ट आना बोल के 9,700 स्पेशलिस्ट को मैं डेवलप करा। देट इज एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वीकार टू द सोसाइटी, बट वेरी फ्यू रियलाइज माई कंट्रीब्यूशन। लोग समझते कि पैसा आता, पैसा कहां से आता? 25-35,000 दिए तो मैं डिग्री बताया, आज एक एक बच्चा जो है महीने को 2-3 लाख भी कमाता है, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी क्लिनिक लगा के, एक एक को 6-6 क्लिनिक भी है। हमारे स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़े, जो 25,000 साल को दिए, मैं तो आज बच्चों को पढ़ाता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ, क्वार्टरली मैं 25,000 देता हूँ हाई स्कूल बच्चे को, मैं उसको

0: कैसे कराया और कड़पा में कराया डिग्री, गुंडर में कराया, मेरा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, मेरा एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या है, वो कोई नहीं सोचा बच्चे। अभी ज्यादा परिवर्तन है जनरेशन में, कोई चीज की वैल्यू नहीं रख रहे। तो मैं परसों मीटिंग लगा तो बोला, मैं बोला भाई तुम समझ रहे कि मेरे पास 25,000 में तुम डिग्री खरीद लिए, क्या कॉस्ट हुआ मेरे को तुमको पढ़ाने के लिए। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इज माइन, ऑपरेशनल कॉस्ट इज माइन, और कितना हम कितने चीजों का सामना करा, कितना दुखी हो गए तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो मगर अभी बहुत ये लोगों में स्पिरिचुअल नॉलेज के वैक्यूम हो गए, दे आर स्पिरिचुअली सार्व्ड द जनरेशन। तो मैं परसों बोल रहा था कृष्णा बहन से, माधवी बहन से और दो तीन लोगों से, हमारे पास ये लोगों का में परिवर्तन लाना है, अपना भी करती है। क्यों बोलो तो भगवान सबको सद्बुद्धि नहीं देता। दे नो द सब्जेक्ट व्हाट इज इन द बुक्स, दे डोंट नो व्हाट इज इन बिटवीन लाइन्स, दैट इज ह्यूमन साइंस। ये ह्यूमन साइंस जो ज्ञानी रहते हैं वही दे सकते। ह्यूमन साइंस कोई किताब में नहीं पढ़ा हुआ रहता।
1: ये आपने बहुत ही अंदरूनी बात को टच किया आपने, कि व्यक्ति किताब पढ़ सकता है लेकिन किताब के अंदर में जो ज्ञान निहित है उसको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं होती। और आज का जो जनरेशन है उसे आवश्यकता सबसे ज्यादा अधिक आध्यात्मिक बल की है, आत्मिक बल की है, जिसकी वजह से ही लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आध्यात्मिक बल है, आत्मिक बल है, तो वो समस्या कोई समस्या नहीं लगेगी, व्यक्ति उसका सामना आसानी से कर सकता। और दूसरी जो बात आपने कही कि महत्व, कोई भी चीज का जो पूर्ण महत्व है उसको समझना, उसे उस महत्व से सम्मान देना, ये हमारे में कहीं कमी रह जाती है। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आप भारत के कई स्थानों का भ्रमण कर चुके हैं, भारत में कई जगहों पर जा चुके हैं, कौन सी ऐसी बात आपको अनोखी लगती है पूरे भारत में जो कि पूरे भारत को एक करती, भारत को अनेक या विविध बनाने वाली बहुत सारी बातें, लेकिन कोई एक चीज जो पूरे भारत देश को जोड़ती आपके हिसाब से वो कौन सी बात?
0: वही सनातन धर्म है, वही स्पिरिचुअल नॉलेज है। मेनी पीपल द प्रेजेंट जनरेशन स्पिरिचुअली स्टार्ड, दे आर रनिंग लाइक मैड रेस, पैसा पैसा पैसा, कितना जरूरत है, हाउ मच यू ब्रॉट, हाउ मच यू आर गोइंग टू टेक, हाउ मच हैप्पीनेस इट गिव्स। द मोर मनी आई हैव सीन पीपल, दे आर मोर अनहैप्पी। Happiness is not bought with money. तो अभी मैं देखता हूँ अभी जनरेशन में, अभी आगे जनरेशन में चेंज लाना है बोले तो अपने वैसे लोग ही लाना, आध्यात्मिक धार्मिक ये सब स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेना है, बहुत से सनातन धर्म को रिवाइव करना है। अब मोदी साहब ये 5-10 साल में तो बहुत परिवर्तन लाए, बहुत से परिवर्तन लाए। अब मैं माउंट आबू भी गया था, कितना शांति रहता, कितना एक किस्म का आदमी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। See, every human is not a human. In every human being, there will not be humanity. एक हिंदी में कहावत, हर एक आदमी इंसान नहीं होता है, हर एक इंसान में इंसानियत नहीं रहता है। So, people think that having degrees is not a human being, in my view. Having degree, having qualification, having money is inhuman. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अब मैं 96 lakhs patients को service दिया, 9,700 स्टूडेंट्स को पीजी डिप्लोमा, पीजी पोस्ट पीजी डॉक्टरेट इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। इंडिया में 2 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, अमिटी यूनिवर्सिटी और माई, ये कोर्स। अभी क्या है, अभी बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ क्लैश इन देम, बिकॉज द मास्टर ट्रेनर्स आर वेरी फ्यू, दे आर नॉट हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, दिस गैप इज इन टर्मॉइल। बगैर अटेंडेंस के बच्चे पास होना चाहते, क्लासेस को नहीं आना चाहते, और टीचर सीख रहा है उसके ऊपर कुछ तो भी एलिगेशन लगाते तो उसको कहीं तो भी फंसा देते। अब टीचर रिजाइन हो जाता, मेरे को मैन पावर नहीं तो कहां से लाना, बहुत बड़ा मुश्किल होता। अभी यही साल से मेरा एक कोर्स डी रिकग्नाइज करे, स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का, भाई ऑनलाइन उन्होंने दिल्ली से करता है, मेरे पीपल नॉट ट्रेन टू गिव ऑनलाइन इंस्पेक्शन को ट्रेन नहीं है, जो आदमी उन्हें इंस्पेक्ट कर रहा उन्हें भी ट्रेन नहीं है। मेडिकल काउंसिल के वजह से रिहैबिलिटेशन काउंसिल है संस्था, भाई संस्था में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ गैप्स आ रहा है सोसाइटी कैसा डैमेज हो रहा है। अब जितना मैं दुखी होगा, इतना तकलीफ मैं उठाया, मैं बोला भाई कोर्सेज बंद कर दूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम बंद कर दिया, अब दूसरे प्लेयर से चला न दो, मैं अब 17

0: इन ईयर्स हूँ, अब कितना वजन उठा सकता हूँ, फिर भी मेरे भगवान जो शक्ति दिया ज्यादा ही उठाया। अभी फर्स्ट कोर्स मैं स्पीच एंड ऑडियोलॉजी का बंद कर दिया। मैं बोला नेक्स्ट ईयर से मैं कोई कोर्स रन नहीं करूंगा, बिकॉज ये जो परिवर्तन है बच्चों में, यंगर जनरेशन में पढ़ रहे भी नहीं, डायरेक्ट एग्जाम को जाता हूँ, बोलते कैसा करता हूँ, दूसरे को कैसा सर्विस देता हूँ, पैसा कमाता, तो इसको मैं अपने अकेले चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत बड़ा मोदी जी तो कर रहे हैं, उन्होंने अकेले भी करना कर रहे हैं, कोई तो करना पड़ता, एक नहीं और दस लोगों के साथ करना पड़ता। वी कांट गो नेगेटिवली, ऑलवेज वी मस्ट हैव पॉजिटिव वाइब्स। आई बिलीव आई एम ए पॉजिटिव थिंकर।
1: दो चीज जो आपने बताई जो भारत को एक करती है, एक तो आध्यात्मिक भूख लोगों की या आध्यात्मिक आवश्यकताएं लोगों की जो कि समान बनाती है, और दूसरा जो आपने बताया कि वही आवश्यकता जो है जब सामर्थ्य में बदल जाती है तब पूरे भारत देश में हम परिवर्तन ला सकते हैं, भारत को यशस्वी बना सकते हैं जैसे कि आपने बनाया। हम चलते हैं एक रैपिड फायर राउंड की तरह जिसमें मैं आपको एक सवाल पूछूंगा और उसका जवाब आपको एक शब्द में देना होगा। आर यू रेडी? सबसे पहला सवाल, सेवा क्या है?
0: सेवा विच यू शेयर अदर पर्सन प्रॉब्लम, विच यू मेक अदर पर्सन लाइफ इजी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज सेवा, निष्काम सेवा। भाई कुछ अपन कोई लोगों से अपना आनंद क्या है, किसी का दुख बांट दिए, किसी को कुछ वेलफेयर का कुछ इसमें अपन हिस्सेदार बने, उसका दुखी में भागीदार कम करे, किसी को संतोष ऐड करे, बस वही सेवा। कोई एक्सपेक्टेशन करना सेवा है, नहीं तो भाई को बहन को मैं सब भाइयों को सबको ऊपर लाया, वो सेवा नहीं, वो मेरा धर्म था।
1: आशा से परे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को अगर हम समाधान कर सके तो वो सेवा है।
0: हाँ, विदाउट आशा वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। भाई बहन को करना तो धर्म है, कर रहे हैं। रियल सर्विस इज वन विच यू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू यू, समथिंग टू समबडी इज नोबडी टू यू, दैट इज सर्विस। शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग मीन्स लविंग, लविंग इज डिवाइन, डिविनिटी इज गॉडलीनेस।
1: उसके लिए कुछ करें जो आपके लिए कुछ भी नहीं हो और जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हो, उसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वही सेवा है।
0: बस
1: दूसरा सवाल, शांति क्या है?
0: जब आत्मतृप्ति रहता है शांति रहता है।
1: आत्मतृप्ति की शांति है। सुख क्या है?
0: जब तुम कोई चीज अपेक्षा करते हैं, कोई चीज नहीं पाते हैं, ओ, जब दुखी हुआ था आदमी, सो ज्यादा कोई चीज को न्याय कुछ फीलिंग होना नहीं, अपने पास ग्रीडी नहीं, कुछ जो जो भी दिया भाई वो दे दिया, बस मेरा भाग में एक तेज। तो उसमें दुखी होने का सवाल ही नहीं है, बस अरे के कर्मानुसार कर्म सिद्धांत जो करते रहते ना, बस अरे को आना है जाना है, अपना टाइम टेन्योर में अपना जर्नी जब है जितना करे अपन आनंद है। गॉड हैज गिवन मी अ चांस टू डू समथिंग टू समबडी हु इज नोबडी टू मी, एंड दैट टू द नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जब मदर बोलती है मेरा बच्चा बात कर रहा है अभी बहुत अच्छा है, तो हमारा दिल भर जाता है। मैं बोलता हूँ फीस आज क्यों बढ़ाया, मैं आज फीस बढ़ाया, मैं क्यों बढ़ाया, मैं तुम लोग से अभी क्या करता हूँ, अभी कमा के क्या करता हूँ मैं पैसा, इतने साल ही मैंने नहीं करा, मेरा 200-300 फीस था 40 साल तक, अभी मैं बड़ा है क्यों, बोलते मैं वैल्यू करने के लिए एवरीथिंग, एनी डॉक्टर क्यूर्स फ्री क्यूर्स नथिंग, कोई चीज पकड़ में आया ना उसका वैल्यू नहीं रहता, उसका वैल्यू रहना बोलते तो पार्टिसिपेशन रहना।
1: इसलिए लोगों के अंदर ये जागरूकता लाने के लिए कि जो चीजें उनके सामने रखी जा रही है वो बहुत बहुमूल्य है, इस वजह से उसका मूल्य आपने थोड़ा बढ़ाया। अगले कुछ सवाल जो है वो बड़े ही शॉर्ट है जिनका जवाब आपको एक या दो शब्द में ही देना है, तो स्वीकार क्या है?
0: स्वीकार टू एक्सेप्ट द पर्संस हु आर नॉट केयर्ड, हु आर रिजेक्टेड इन द फैमिली इवन बाय देयर ओन पेरेंट्स, डिसओन्ड, आई वांट टू एक्सेप्ट दे आर गॉड्स लेसर चिल्ड्रन, फॉरगॉटन चिल्ड्रन ऑफ सोसाइटी, सो दैट इज स्वीकार। वन मस्ट हैव अ बिग हार्ट। मदर इज रिजेक्टेड, शी इज फ्रस्ट्रेटेड, शी इज कर्सिंग द गॉड, क्यों दिया मेरे को ऐसा बच्चा। उसमें यू आर क्रिएटिंग होप टू द पीपल हु लास्ट होप, यू आर क्रिएटिंग स्माइल ऑन देयर फेसेस।
1: तो इसका मतलब स्वीकार जो है वो आशा है, एक शब्द में अगर पूरे तो।

0: अधिकार क्या है?
1: भाई मैं एक्सेप्ट करने से कोई मतलब ही नहीं है उसको, अगर मैं कोई अच्छा नहीं करूंगा कोई मतलब ही नहीं है। आई हैव टू गिव बैक। गॉड हैज गिवन मी टैलेंट, गॉड हैज गिवन मी एनर्जी, गॉड हैज गिवन मी मनी ऑल्सो, सो लेट मी गिव इट, लेट मी क्रिएट अ रे ऑफ होप ऑन द अदर्स।
0: इसका मतलब अगर स्वीकार किया लेकिन साथ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड किया, उसमें कुछ उपकार नहीं किया, तो उस स्वीकार करने का कोई
1: मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं।
0: इसका मतलब स्वीकार अगर आशा है तो उपकार उसका अर्थ है, उस स्वीकारने का अर्थ जो है वो उपकार है, कि सही मायने में स्वीकारना अर्थात उसका कुछ उपकार करना। भारत क्या है?
1: एक भारत पुण्य भूमि है, ये जो अपन भारतवासी है, भारत में जन्म लिए, भारत माता के सुपुत्र है अपन, धन्य है अपन।
0: आखिरी सवाल, हनुमंत राव कौन? एक शब्द में।
1: हम कुछ भी नहीं है।
0: नहीं नहीं कुछ तो है, क्या है वो सोच के बताइए।
1: भगवान का देन है और कुछ नहीं।
0: बहुत सुंदर, हनुमंत राव जो है भगवान का दिया हुआ एक देन है समाज को, जिसके द्वारा समाज में इतना प्रकाश फैल रहा है जो कईयों के जीवन के अंधकार को मिटा रहा है। डॉक्टर पी हनुमंत राव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद दोबारा हम करना चाहेंगे। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, अपने जीवन के अपने गूढ़ ज्ञान को हमारे साथ शेयर किया। लेकिन स्वागत इसलिए करना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि बाकी लोग दुनिया का बहुत भला कर रहे हैं लेकिन आप भी कर रहे हैं, तो आप भी उसी दल का एक हिस्सा है, और मैं तो कहूंगा केवल हिस्सा नहीं, आप एक नेता है जिनके नेतृत्व में बहुत सारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा स्वागत इसलिए भी करना चाहेंगे कि आप दोबारा माउंट आबू आए, रेडियो मधुबन के स्टूडियो में दोबारा आए और दोबारा हमारे श्रोता साथियों के साथ जुड़े, उनसे बातें करें और भी कई विषयों पर बात करें। आज तो समय की सीमा थी इसलिए हम बात नहीं कर सके, लेकिन अगली बार हम जानना चाहेंगे आपसे कि किस प्रकार से हम ऐसे लोगों का जो हमारे आसपास में है, जो कई प्रकार के मानसिक समस्याओं का शिकार है, उन्हें हम कैसे थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोबारा हम मिलेंगे आपके बीच में एक और ऐसी हस्ती को लेकर के आएंगे जिनके जीवन से हम हमारे जीवन को रोशन करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिएगा, सुनते रहिएगा रेडियो मधुबन। हर कार्यक्रम ही रेडियो मधुबन का शानदार होता है, लेकिन जी हाँ जरूर यशस्वी भारत कार्यक्रम को जरूर सुनिएगा 107.8 FM पर रेडियो मधुबन।
2: नमस्कार, मी वर्षा उसगावकर, तुम्ही ऐकता आहात पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदित रहा आणि नेहमी सगळ्यांना आनंदित ठेवा।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8। आपका हार्दिक स्वागत है ज्ञान चिंतन में, एक ऐसा रेडियो कार्यक्रम जहां हम विचारों की गहराई में उतरकर ज्ञान, जीवन, समाज, संस्कृति और आध्यात्म से जुड़े विषयों पर सार्थक संवाद करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल जानकारी देता है बल्कि सोच को नई दिशा भी प्रदान करता है। तो आइए आत्ममंथन और बौद्धिक समृद्धि की इस प्रेरक यात्रा में हमारे साथ जुड़िए और चिंतन को जीवन का हिस्सा बनाइए।
1: मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन इसका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। विषय है वास्तविक जीवन में कंट्रोल ऑल्ट डिलीट का महत्व। हम सभी कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते हैं। जब कभी हमारा सिस्टम धीमा हो जाता है, कोई प्रोग्राम अटक जाता है या स्क्रीन पर कुछ भी काम नहीं करता, तब हम एक खास कमांड का उपयोग करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। यह कमांड हमें नियंत्रण देती है, विकल्प दिखाती है और अनावश्यक चीजों को हटाने में मदद करती है। ठीक इसी तरह यदि हम चाहें तो इस कमांड को अपने जीवन में भी समय समय पर उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल यानी नियंत्रण। जीवन में कई बार हम परिस्थितियां, लोगों या अपनी ही भावनाओं के हाथों मजबूर हो जाते हैं। क्रोध, भय, ईर्ष्या, चिंता, ये सब हमारे जीवन को स्लो कर देते हैं। ऐसे में कंट्रोल हमें याद दिलाता है कि हमें अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। हम हर परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर बदल सकते हैं। अब आते हैं ऑल्ट पर। ऑल्ट यानी ऑल्टरनेट, विकल्प। जीवन में जब एक रास्ता बंद हो जाए, जब मेहनत के बावजूद सफलता न मिले, तब निराश होने के बजाय हमें विकल्पों पर विचार करना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में अलग अलग विकल्प होते हैं, वैसे ही जीवन में भी हर समस्या का एक से अधिक समाधान होता है। ऑल्ट हमें सिखाता है कि हार मानना समाधान नहीं है, बल्कि नया रास्ता ढूंढना ही बुद्धिमानी है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है डिलीट। डिलीट मतलब हटाना, मिटाना। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातें ढोते रहते हैं जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। नकारात्मक सोच, बीती हुई असफलताओं का बोझ, गलत आदतें और कभी कभी ऐसे रिश्ते भी जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर से अनावश्यक फाइलें डिलीट करते हैं और उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं, वैसे ही हमें अपने मन और जीवन से भी इन अवरोधों को हटाने का साहस करना चाहिए। कभी कभी जीवन में समस्याएं इतनी उलझ जाती हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या करें। ऐसे में हमें अपने दिमाग का टास्क मैनेजर खोलने की आवश्यकता होती है, यानी इस स्टेज पर आत्ममंथन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। यह देखना कि कौन सी बातें हमारी ऊर्जा खा रही हैं, मींस हमारी बैटरी लो कर रही हैं, और कौन सी हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। और अंत में स्वयं को सुरक्षित रखना। जैसे हम कंप्यूटर को लॉक करके उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वैसे ही हमें अपने निजी जीवन की सीमाएं तय करनी चाहिए। हर बात हर व्यक्ति से साझा करना जरूरी नहीं होता। आत्मसम्मान और गोपनीयता भी मानसिक शांति का हिस्सा है। प्रिय श्रोताओं, निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कंट्रोल ऑल डिलीट केवल एक तकनीकी कमांड नहीं है, बल्कि जीवन का मंत्र है। यह हमें सिखाता है नियंत्रण रखें, विकल्प खोजें, अनावश्यक चीजें हटाएं और आवश्यकता पड़ने पर नई शुरुआत करें। यदि हम इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा, बल्कि हम मानसिक रूप से अधिक सशक्त और संतुलित भी बने रहेंगे। इसी विचार के साथ मुझे अनुमति दीजिए, फिर मिलूंगा एक नए चिंतन के साथ। बने रहें हमारे साथ पुनेरी आवाज 107.8 FM पर और सुनते रहें इसी तरह प्यार से। खुश रहें, खुशियां बांटें।
0: प्रिय श्रोताओं, ज्ञान चिंतन के आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमें आशा है कि आज की चर्चा ने आपके मन में नए विचारों को जन्म दिया होगा और सोच को एक नई दिशा प्रदान की होगी। ज्ञान और चिंतन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। फिर मिलेंगे ज्ञान चिंतन में एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभकामनाएं। खुश रहें, खुशियां बांटें।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों बहनों, अरे मगन भाई सगन भाई, सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ दोंडीबा, आई का ओ आई का, ओ जर्नल सिंगर, ओ जर्नल सिंगर।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: नमस्कार. वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति.
2: थैंक यू सो मच
1: सिस्टर. मैं वो ही लाइन्स दोबारा पढ़ना चाहूंगा जो पिछले एपिसोड में पढ़ी थी. वी ईच डिसाइड वेदर टू मेक आर सेल्व्स लर्न इट और इग्नोर इट. नो वन फोर्सेस अस. No one decides for us, no one drags us along one path or the other.
2: Beautiful.
1: We are responsible for what we are.
2: Perfect. इसको जितनी बार बार बार भी हम सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इस पे मंथन करेंगे, तो हमें एक क्लैरिटी आती है हमारी कितनी पावर है औरों की कितनी पावर है. वन, जब हम कहते हैं कि यू नो ब्लेम मोड में जब हम जाते हैं, विक्टिम मोड में जाते हैं, सेइंग आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ, यू नो मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ, एंड देन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सिचुएशंस है या एक लिस्ट ऑफ लोग है.
1: बहाना.
2: बहाने ना, ब्लेम गेम में गए ना, विक्टिम, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ. तो एक वो अंडरस्टैंडिंग. दूसरी वो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं. ये लाइन हमें दोनों चीजें समझा रही है. वी ईच डिसाइड हु वी आर. नो वन कैन टेक मी ऑन दिस साइड और दैट साइड.
1: ये वाला तो मैं एंगल सोचा ही नहीं था.
2: ये भी तो समझ में आ गया ना.
1: हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, तो नया एंगल आ गया.
2: बिकॉज वी ईच डिसाइड हु वी आर.
1: वो तो मैं अपने लिए सोच रहा था.
2: दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा ना.
1: अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा.
2: दोनों तरफ से समझ में आ जाती है अब ये बात.
1: हम जो लोगों को बदलना चाहते हैं, व्हाट अबाउट दैट.
2: दैट विच मीन्स इस लाइन से हमें ये क्लैरिटी से समझ में आता है

0: कि हमारे ऊपर लोगों का कितना असर पड़ सकता है और हमारा लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसकी कितनी लिमिट है। हम ये समझते हैं, सी हाउ पावरलेस वी हैव बिकम एक्चुअली, जस्ट एक्सट्रीमली पावरलेस। हम जो हैं उसका ब्लेम हम लोगों पे डाल देते हैं, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि लोग हमें बना नहीं सकते वैसा। हम अपनी विक्टिम फीलिंग में रह के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं। एंड दूसरा, जहां तक लोगों को बदलने की बात आती है तो हम पूरी तरह से उनको बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे पेरेंट बच्चे को, हम जैसा चाहे हम उसको बनाएं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, हमने उनको नहीं बदला, हम नहीं किसी को बदल सकते। ये कोटेशन ये भी तो बात अंडरलाइन कर रही है, वी ईच डिसाइड हु वी आर, वी ईच डिसाइड हु वी आर, नोबडी कैन टेक मी ऑन ईदर पाथ दिस वे और दैट वे।
1: यू मीन टू से, अगर मैं, जैसा मैंने बोला था कि मेरी वाइफ को आई लाइक दिस, डोंट वेयर दिस, वेयर दिस, तो अब मैंने बदला उसको या शी डिसाइडेड?
0: शी चोज, आपने तो राय दी, शी चोज।
1: तो मैंने बदला नहीं
0: ना, वी कैन नॉट चेंज एनी वन। चॉइस उनकी किस बेसिस पे थी उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। सपोज एक पेरेंट बच्चे को, एक हस्बैंड वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को, या फ्रेंड फ्रेंड्स को, कोई भी किसी को एक बात कहते हैं कि यू शुड डू दिस, यू शुड बी लाइक दिस, सामने वाली आत्मा चूज करती है कि उसको वो करना है या नहीं करना है। चूज करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। सपोज राइट नाउ आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ऐसे नहीं करो या आप ऐसे करो, ठीक है, तो आपने अपनी बात कह दी, राय दी। सपोज आपने डांट के भी राय दी या गुस्सा करके भी दी। सपोज कई बार हम बहुत इजीली कहते हैं, उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने कर लिया, ना उन्होंने तो सिर्फ गुस्सा किया, ठीक है, करना या नहीं करना फिर भी मेरी चॉइस है।
1: ये बात सही।
0: अब मैंने जब चूज करना है कि मुझे आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, उसके कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, आपने जो बात मुझे कही वो मुझे सही लगी अपने लिए, आई लाइक्ड इट, कि दिस इज राइट, ये बात मेरे लिए सही है, तो वो तो मैंने फिर उस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके उस बात को अपना बना लिया कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, तो मैंने करना शुरू कर दिया, वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आई फियर यू, मुझे डर लगता है।
1: थर्ड ऑप्शन, आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी।
0: थर्ड ऑप्शन इज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, मुझे सिर्फ आपको खुश करने के लिए या आपका अप्रूवल लेने के लिए, क्या आप खुश रहे मेरे से, आप नाराज ना हो, विच कुड हैपन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, विच कुड हैपन बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर एट वर्क, इट कैन हैपन बिटवीन एनी टू सोल्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल। मैं आत्मा, अगेन उस मुझ आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है। अगर मुझ आत्मा को वो बात सही लगी अपने लिए और मैंने चूज की करनी, वो मेरी शक्ति है। अगर मुझ आत्मा ने इसलिए चूज किया करना क्योंकि मैं डरती हूं, या मुझे आपको खुश करने के लिए करना है इवन दो आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इट, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओनली टू प्लीज पीपल, ओनली सो दैट आई डू नॉट लूज पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, सिर्फ ताकि लोग कहें कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूं क्योंकि मैंने उनका कहना माना, उस रीजन से करना। और अगर वो चीज मैं कम्फर्टेबल नहीं हूं या मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है। चौथा जो आपने कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं मजबूरी से नहीं कर रही, ये करके ये खुश होते हैं, अगर मैं ये करती हूं तो ये खुश होते हैं, तो करने में क्या जाता है, नथिंग। बट प्रोवाइडेड जो डिसीजन मैंने लिया वो करने का इट्स राइट फॉर मी। दूसरे को खुश करना इफ इट्स नॉट राइट फॉर मी, तो वो भी मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, तो कौन किसको चेंज कर सकता है।
1: सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी, सिंस बिलोंग टू हैदराबाद, तो मैंने बोला हमारे घर में हाफ स्लीव जरा अच्छे नहीं। किसी ने फ्रेंड ने पूछा वाई आंटी वेयरिंग, इतने पुराने हैं तुम, मॉडर्न पहनो। माई हस्बैंड डज लाइक, लेकिन जब फोन किसी का आया तो मैंने बोला उसको

0: करना है, लेकिन कोई और आत्मा होती वो ये भी झूठ भी बोल देती आपके लिए, और फिर सारे जीवन ये कहती क्या करूँ, झूठ बोलना पड़ता है। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इनकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है, विच इज अ विक्टिम फीलिंग विच मेनी ऑफ अस गिव टुडे।
1: 70s में सिस्टर हमारे पेरेंट्स फादर की जो प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें आसपास में हम लोग जब शॉपिंग पे जाते थे तो पूरी रोड में कितने कपड़ों की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी। एक ही दुकान थी जहां उसने लिखा था फिक्स्ड प्राइस, एक सिंगल, और सबको मालूम था एंट्री पे इसका यहाँ बार्गेन नहीं कर सकते। और दूसरी दुकान वाले मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्या करेंगे, धंधा है ना, बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है, ऊपर नीचे ये तो युक्ति है, झूठ थोड़ा ये। तो 99% के अगेंस्ट एक आदमी,
0: पावरफुल सोल, दिस इज द साइन कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, चाहे संग का रंग कुछ भी है, चाहे परिस्थिति, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस आत्मा को थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़े, हो भी सकता है ना, कुछ समय, इट टेक्स टाइम यू नो, व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से हो सकता है कि हमारा कभी नुकसान भी हो थोड़ा सा, ये पॉसिबल है, लेकिन उस फेस को भी क्रॉस करना है। उस हो सकता है दूसरे लोग कम प्राइस पे दे रहे हो, आसपास दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट किस तरफ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लोग किस तरफ जाएंगे जहां इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है,
1: के साथ उसका प्रोडक्ट भी तो अच्छा होता था ना,
0: यही तो है ना,
1: डुप्लीकेट माल तो नहीं देता।
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी वाली आत्मा पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आसपास वाली दुकान कम में भी दे दे, लेकिन आपको बहुत जल्दी उनके वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दिखाई देने लग जाते हैं कि ये कम में भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना कि अच्छी चीज दे भी रहे हैं कि नहीं, मुझे दिखने से तो पता नहीं चलती है, लेकिन आई सी द क्वालिटी ऑफ द सोल, इस आत्मा की इंटेग्रिटी कहाँ है। यही चीज उसने अभी एक्स प्राइस बोली, 5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया, ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे। तो वो फेस थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे। सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट, वी आर हु वी आर, वी चूज, वी आर रिस्पॉन्सिबल। ये लाइन हमें कितना पावरफुल बनाएगी, और ये लाइन हमें दूसरों को वो जैसे हैं एक्सेप्ट करने में इजी करा देगी। हमारी जीवन की जो लंबी यात्रा चल रही है ना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करने की, वी कैन नॉट चेंज पीपल। हमारा रोल कितना है दोनों डायरेक्शन में, दूसरे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं,
1: ठीक है,
0: हम पर भी, संघ का जैसे आपने बोला, पेरेंट्स के वाइब्रेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी ग्लोबल लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे सिचुएशंस आती हैं कुछ ऐसी, तो सिचुएशंस लोग हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा अपना होगा। सिमिलरली हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन
1: मेरा
0: उस आत्मा का होगा, ना कोई हमें चेंज कर सकता है, ना हम किसी को चेंज कर सकते हैं। लोग मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं, मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता हूँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता, फाइनल डिसीजन उनका है। सो नीदर अ फीलिंग ऑफ विक्टिम, आई एम बिकॉज वट पीपल डिड टू मी, नीदर अ फीलिंग ऑफ अ कंट्रोलर कि आई कैन चेंज पीपल, सी आई चेंज सो मेनी पीपल, आई चेंज दिस वन, आई चेंज माई दिस वन, आई चेंज, नीदर वन इज पॉसिबल। ये आत्मा को बहुत पावरफुल और बहुत लाइट बना देगा। हम दोनों चीजों में आज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जहां अपनी बात आती है अपने संस्कारों की, तो हम बेचारा बन जाते हैं, हम कहते हैं क्या करें, इट्स बिकॉज ऑफ, तो वो पावर हम खो देते हैं। जहां दूसरों के संस्कारों की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसको तो मुझे बदलना ही है।
1: मेरे पास एक गुस्से का संस्कार ज्यादा था, मैं कितना लोगों को गया, मैंने बोला गुरुजी मुझे शांति चाहिए, गुरुजी मुझे शांति, फाइनली कि एक गुरु ने बोला कि भाई तू शांति के कर्म तो कर,
0: सिंपल,
1: तो मांगते ही रहता है शांति, कर्म क्या करता है शांति के।
0: अब ये इसी लाइन को देखते हैं, उन्होंने आप पर प्रभाव डाला, मतलब एक राय दी, एक बात बोली, आप शांति मांग रहे हैं तो आप शांति

0: जी के कर्म करें। सिंपल, राय दिया, अगर उस राय का आप पर प्रभाव पड़ा तो आपने उस राय को स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन में यूज करना धीरे धीरे, इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। सपोज आपकी स्थिति, आपका संस्कार चेंज हो जाता है, लेट्स से अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपके अंदर 6 महीने पहले बहुत गुस्सा था, आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स, तुम आज से शांति के कर्म करो, आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर एक बहुत नोटिसेबल विजिबल चेंज आया, राइट। लेकिन ये जो चेंज आया, ये चेंज कौन लाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर बना देते हैं। और अगर वो जो महात्मा है वो अगर फील करते हैं कि मैंने इसको चेंज कर दिया, तो वो भी एक इल्यूजन में रह रहे हैं। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, मेरी कितनी पावर है और कितनी नहीं है, उस महात्मा की, संत आत्माओं की, पेरेंट की, फ्रेंड्स की कितनी पावर है, राय दे सकते हैं, फुल स्टॉप, फिनिश्ड, दैट्स वेयर इट एंड्स, बी बेटर नो दैट दैट्स वेयर इट एंड्स।
1: संत आत्मा की आपने जो बात कही अभी, कि अगर वो समझे कि मैंने इसको ठीक किया, फिर वो सबको छुड़ा दे।
0: हाँ, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबको चेंज कर दे, एंड जिसको जो बोले वो इम्प्लीमेंट कर ले, तो कितनी पावर है। अब यही चीज हर पेरेंट को समझने की भी कोशिश है कि पेरेंटल रोल और इन्फ्लुएंस कितना है। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, वर्क प्लेस, हम सोचते हैं हम जैसा चाहे, इवन इन एन ऑफिस एक सीनियर ये फील करेगा मैं जैसा बोलता हूँ ना वैसे लोग हो जाने चाहिए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मैं जैसा चाहूँ वैसे सब चलने चाहिए, नॉट गोइंग टू हैपन। हर आत्मा, वो कोटेशन, डिसाइड्स हु दे आर। हमारा रोल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस ऑल्सो हाउ, राइट एडवाइस, सही राय, और उससे भी ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस, सही वाइब्रेशन। अगर जिन्होंने आपको कहा कि तुम शांति के कर्म तो करते हो, मतलब आज से शांति के कर्म करो, राइट,
1: हाँ, शांति के कर्म करते हो, जो शांति मांग रहे हो,
0: लेकिन वो बात का प्रभाव भी तब पड़ेगा अगर वो आत्मा खुद शांति के कर्म करती है तो, नहीं तो वो तो बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। चेंज तो कर ही नहीं सकते, प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। अगर हम एक बात बोल रहे हैं लेकिन हम उसको लिव नहीं कर रहे, तो वो बात तो ऐसे ही उड़ जाएगी।
1: वही बात हो गई ना कि मैं सिगरेट पियो, बच्चे को बोलो नहीं पियो। मैं एक बच्चे को बोलो कि बोल दो डैडी घर पे नहीं है फोन पे, और बोले तुम झूठ मत बोलो, वही बात हो गई।
0: तो कितनी पावर है, वन, वी डोंट हैव पावर टू चेंज पीपल, definitely we have power to influence people, but that power to influence people will also be there only if we are living what we are radiating and what we are saying to them. Nahi to power to influence bhi nahi hai.
1: This is a very very very important
0: power to
1: point.
0: Influence bhi nahi hai fir to,
1: ke matlab jo bhi agar supposing main bachcho ko kuch bol raha hu to pehle mujhe wo karna chahiye, वो मैं करता हूँ तभी जाके उनको असर होगा।
0: पावर टू इन्फ्लुएंस होगा नहीं ना उस बात का, क्योंकि उस बात में पावर नहीं है। कि किसी की बात को हम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा एंड मुझे जैसे टच हो गई वो बात, मुझे, मेरे दिल को छूगी, नहीं बोलते हम, दैट थिंग जस्ट हिट मी व्हेन दैट पर्सन सेड दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उन्होंने बोला। अच्छा, कई बार हम क्या कहते हैं, ये बात मैंने इतनी बार सुनी है, मुझे तो पता है ये बात, कितने लोगों ने मुझे आज तक बोली थी, कितनी जगह मैंने पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने कहे ना तो मुझे जैसे कि जस्ट हिट कर गई। वो क्यों हिट, किसकी बात करेगी, हिट वो बात करेगी जो पावर के साथ आएगी, और पावर के साथ किसकी बात आएगी, जो इम्प्लीमेंट की हुई, जिसको आपने भी एक बार कहा था कि जो तपी हुई बात आएगी, उसके अंदर पावर होनी चाहिए। तप मतलब क्या, तप मतलब उस बोल में शक्ति, उस बोल में कितनी पावर है। नहीं तो हम किसी को एक अच्छी बात कह भी रहे हैं, अच्छी राय दे भी रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन नेगेटिव है, हम कुछ और कर रहे हैं, हम ऑपोजिट कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस तो वाइब्रेशन का ज्यादा होगा ना, बोल से ज्यादा।
1: जैसे किसी को मैं

0: रिकॉर्ड की कहानी या 100 साल पुरानी कोई कहानी सुनाओ और आप बीती सुनाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ बोलूं तो वो भी बंदे को मेरे इमोशन के साथ वो एक हो जाता है।
1: अगर मैं सैड है ना,
0: जो मैं सैडनेस में तो उसका भी चेहरा ऐसे हो जाता है। और पिक्चर की सुनाओ तो ऐसे अच्छा अच्छा।
1: जब आप पिक्चर की सुना रहे, सपोज आप मुझे यहाँ बैठ के एक स्क्रिप्ट सुना रहे, एक मूवी सुना रहे, तो सिर्फ वर्ड्स हैं उसके बारे में, वाइब्रेशन नहीं है उसकी।
0: ये वाला तपा हुआ ज्ञान है, एक्सपीरियंस्ड है, मेरा स्वयं
1: तपा हुआ मतलब वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस।
0: हाँ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस।
1: वाइब्रेशन उसकी आनी चाहिए ना, वाइब्रेशन ऑफ कन्विक्शन एंड एक्सपीरियंस सामने वाले के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव
0: है। ज्ञान में मैं कई बार लेक्चर में जाता हूँ सिस्टर, जो हम कंप्यूटर में पढ़ लेते हैं, किताबों में पढ़ लेते हैं, वही अगर आदमी खड़ा हो गया रट्टू रट्टू मार के वो बोलते हैं तो मुझे नींद आ जाती है। ऑर्डिनरी आदमी भी जो बिना कागज के, बिना उसके जब तपा हुआ अपना तपस्या वाला ज्ञान सुनाता है शक्ति से, ऐसे मेरा एक एक वर्ड सुनाई देता
1: है। एक छोटा बच्चा भी हमें सिखा के जा सकता है। सीख तो हम किसी से भी सकते हैं, सीखने के लिए हमें कहीं जरूरी नहीं है ऐसी जगह जाना है। सीखना मतलब दूसरों के गुण, दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होकर उस गुण और संस्कार को अपना बनाना, वो तो हमें किसी के अंदर भी दिखाई दे सकता है। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनी वन। अगर हम अपना एंटीना हमेशा रखे उस डायरेक्शन में कि मुझे कैच करना है, मुझे सीखना है, वी विल गेट टू लर्न फ्रॉम एवरी वन वी मीट।
0: मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ, बट आई डोंट इवन रिमेम्बर, 30 मोर देन 30 ईयर्स। मैं कुछ ऐसी कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, यू नो, थोड़ा सा झुक के बात कर रहा था, कुछ काम चाहिए था, तो पीछे से कहता है सुरेश भाई ये आपको शोभा नहीं दे रहा है, यू नो आई वॉज मेकिंग अ ड्रिंक फॉर हिम। तो मतलब ये आप मत करिए, आपको शोभा नहीं देता। तो मैं ऐसा हिला, वो कौन था क्या था मुझे आज तक याद नहीं है सिस्टर। उसके बाद मैंने अपनी रेस्पेक्ट रखी, मैंने बोला इतना झुकना नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि कोई कब आके सिखाया जाता है, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझे सिखा गया, फिर मैं कभी नहीं किया, फिर मैंने मांगा ही नहीं।
1: दिस इज इट, मतलब जिसने कहा वो बात उसकी वो अपने जीवन की धारणा थी।
0: लेकिन मैं दूसरों को देखता था ना कि इनसे वो लोग खुश रहते हैं, ऐसा करने वाले, ये बिहेवियर, तो मुझे ना चाहते हुए वो बिहेवियर मैं ट्राई कर रहा था।
1: राइट।
0: तो ऐसा टच किया, आई स्टिल डोंट नो हु ही वॉज, यहाँ हाथ लगाया था।
1: अभी तो हम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन शब्द में कितनी पावर थी,
0: उसकी फीलिंग में और उसका मेरे बारे में
1: भावना, इंटेंशन। तो वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन इससे अभी हमें क्लैरिटी से समझ में आ जाता है लोगों की हम पर कितनी पावर है और हमारी लोगों पर कितनी पावर है। इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ये हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है। आज हम अपने लिए कह देते हैं मेरी गलती नहीं, और दूसरे के लिए कह देते हैं ये ठीक क्यों नहीं हो जाता। अपने को चेंज करने के लिए हमें दिखता है कि कितना मुश्किल है। आज अपना एक संस्कार उठा लीजिए, कोई भी एक, एनीथिंग, एनी वन संस्कार, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। ऐसा नहीं होता कभी आज से मैं ये नहीं करूंगा, हो गया, इसे तो कोई भी नहीं कर सकता है। जब हमें अपना एक संस्कार चेंज करने में, अपना जिसमें कंप्लीट हमारी पावर है, जब अपना एक संस्कार चेंज करने में एफर्ट, अटेंशन, फिर उसमें भी कभी हम हारते हैं, फिर कभी ओवरकम करते हैं, कभी नहीं कर पाते, इट्स अ जर्नी ना। जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसा, ये कभी कैसे हो सकता है? हम इतना इजीली दूसरों को कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे होने,
0: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम?
1: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? क्यों हम बोलते हैं इतना भी नहीं कर सकते?
0: इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? इतना तो सोचो, उम्र देखो, क्या क्या बोल देते हैं हम?
1: बिकॉज कुछ संस्कार जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल है। राइट, सपोज आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए इतनी नेचुरल चीज है, तो मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं है ना। सो जो चीज का हमें एफर्ट नहीं होता तो हम उसको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही, मतलब ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये तो है ही,

0: आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, पेड़ को भी हिला सकते हैं। सपोज मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे लिए तो आधा किलोमीटर चलना भी एक एफर्ट है। लेकिन तब उस चीज को देखकर कि ये कैसे चल रहे हैं, इनको आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है, और वो भी कितना धीरे धीरे, ऐसे कोई चलता है क्या, वो भी टेढ़ा होके ऐसे, ऐसे कोई चलता है, तो देन यू विल मेक फन ऑफ मी, यू विल रिडिक्यूल मी, यू विल क्रिटिसाइज मी ऑल्सो, इतना भी नहीं करना आता।
1: ये जो आपने बात की कि क्रिटिसाइज रिडिक्यूल वर्सेस जो हाथ मुझे आया जिस आत्मा का, ये आपको शोभा नहीं देता। तो सिस्टर मैं उसके बाद हर चीज वो मैंने बांध लिया, मतलब आ गया, कहीं भी कोई भी चीज जो शोभा नहीं देती उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, चाहे मंत्री होए, चाहे फिल्म होए, चाहे अच्छे से अच्छा रोल होए, या कोई मतलब दुनिया का कोई किंग बोले क्या चाहिए, जहां शोभा मतलब मुझे जो शोभा नहीं देती, अपने से झुक के अपने आप को गिरा के, कभी लोग भले मुझे बोले एरोगेंट, बड़ा अकड़ू है या बड़ा अहंकार है, नहीं, मैंने उसकी बात को पकड़ ही लिया था।
0: अब उस बात को भी हम और गहराई से देखेंगे, क्योंकि राय दूसरे ने दी, राय किस भाव से दी, किस भावना से दी, किस सिचुएशन में दी, और किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए दी, और फिर क्या हमने उसको देखा कि उसने मेरे जीवन को कंफर्टेबल बनाया, मुझे कौन सी चीज शोभा नहीं देता,
1: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
0: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
1: नहीं करूंगा,
0: नहीं करूंगा। अब इस लाइन को और गहराई से लेना है, जो भी रॉयल्टी नहीं है वो नहीं करूंगा। बहुत सूक्ष्म, जैसे आपने अभी कहा ना कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी कि ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करते करते मेरे जीवन में अहंकार बढ़ रहा था या नम्रता, ये मुझे चेक करना है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है,
1: मेरे जीवन में तो अहंकार ही बढ़ा था।
0: आंतरिक शक्तियां बहुत सूक्ष्म होती है,
1: उस टाइम पे तो अहंकार बढ़ा।
0: ये हम और गहराई से देखेंगे फिर कि मेरे जीवन में क्या बढ़ा उस लाइन से,
1: अहंकार,
0: और उस लाइन को आज भी लेना है फिर से, क्योंकि लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है कि ये आपको शोभा नहीं देता, मतलब ये रॉयल्टी नहीं है, लेकिन अब मैं उसके और डीपर मीनिंग में जाऊं और चेक करूं क्या क्या मुझे शोभा नहीं देता और क्या क्या चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो दूसरे की दी हुई राय भी एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट करनी होती है। दिस इज द पावर।
1: मैंने दूसरे की दी हुई राय इम्प्लीमेंट नहीं की, मेरे अंदर कुछ जाग गया,
0: दैट्स ओके, बट उसको
1: और मैं वैसा बन गया, लेकिन आई एक्सेप्ट कि मेरी, मैंने कभी भी उसको नम्रता से नहीं किया।
0: सो इसीलिए जब हमें कोई राय दे, एनीथिंग, नॉट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जस्ट अदरवाइज, उस राय को लेना है, अपने लिए चेकिंग करनी है,
1: बढ़ता गया मेरा,
0: मेरे लिए क्या कम्फर्टेबल है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हमने राय को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें लगा कि नहीं इतना नहीं ऐसे, फिर हमें उसको चेंज करना है। तो यही जो आप कह रहे थे पहले कि हम बहुत इजीली लोगों को कह देते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल थ्रू आर संस्कार। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर यू नो एडवाइस देंगे या कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी।
1: सही बात।
0: और आप इतना इजीली मुझे कह देंगे इतना भी नहीं कर सकते,
1: चार रोटी नहीं खा सकते, हाँ, तुम दो ही खाते।
0: सो वी आर सीइंग पीपल थ्रू आर संस्कार, वी हैव टू सी पीपल थ्रू देयर संस्कार।
1: सिस्टर, देयर संस्कार का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह बोल के वीक भी तो फील कराते हैं ना।
0: राइट,
1: ये मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अगले एपिसोड।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर, व्हिच मींस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर एंड cannot blame situations, past or people. It also means other people will choose their path. We cannot force them to change. We can give our opinion to people. To accept it or not is their choice. They can

किसी बात पर से किसी का पेट भरता नहीं। हम जो सलाम कर कभी भी मरता नहीं।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर हैं। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसके दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
2: कायदा कायदा कायदा, हर चीज में कायदा, आखिर इसका फायदा? कायदा तोड़ के सोचो एक दिन, चांद निकलता नीचे से और मैदान पर रखा होता।

0: अच्छा सोचो, सूरज का रंग नीला होता
1: होता
0: और पेड़ों का रंग लाल
1: लाल,
0: पंछी रहते पानी में
1: वाह,
0: और मच्छी गगन विशाल
1: वाह वाह वाह।

सोचो, जरा सोच के देखो, खेत में उगती टॉफी, पेड़ पे फलते लड्डू पेड़े और नल खोलो तो कॉफी।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडिओ पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुश।

स्वर्णिम भारत के पूर्वी तट की ओर जब हम चलते हैं, एक विशेष प्रदेश जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और जिसके मिट्टी को सागर की लहरें छूते हुए कई सारी महान व्यक्ति विशेष और कलाकारों से राज्य श्रृंगारित हुआ है। आइए इस शुभ दिन पर इस राज्य की महानता की गाथा का वर्णन करते हुए इसके ऐतिहासिक तथ्य, भौगोलिक तथ्य और संस्कृति के बारे में आप सभी को अवगत कराते हैं। आइए बढ़ते हैं उड़ीसा की ओर।

उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के इस प्रदेश का इतिहास बहुत ही मनोरंजक है। उड़ीसा राज्य प्राचीन समय में कलिंग के नाम से विख्यात था। ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग विजय करने के लिए एक शक्तिशाली सेना भेजी थी, जिसका कलिंग के निवासियों ने जमकर सामना किया। सम्राट अशोक ने कलिंग तो जीता, परंतु युद्ध के भीषण संहार से सम्राट के मन में वैराग्य पैदा हो गई और अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग फिर से स्वाधीन हो गया। इसके बाद ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में खारावल राजा के अधीन कलिंग एक शक्तिशाली साम्राज्य बन गया, पर खारवेल की मृत्यु के बाद उड़ीसा की ख्याति लुप्त हो गई। चौथे शताब्दी में विजय पर निकले समुद्रगुप्त ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और इस प्रदेश के 5 राजाओं को पराजित किया। बाद में सन 610 में उड़ीसा पर शशांक नरेश का अधिकार हो गया और शशांक के निधन के बाद हर्षवर्धन ने उड़ीसा पर विजय प्राप्त की। 7वीं शताब्दी में उड़ीसा पर गंगवंश का शासन रहा। सन 795 में महाशिवगुप्त यजाति द्वितीय ने उड़ीसा का शासन भार संभाला और उड़ीसा के इतिहास का सबसे गौरवशाली अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने कलिंग, कनगोड़ा, उत्कल और कौशल को मिलाकर खारावल की भांति विशाल साम्राज्य की नींव रखी। 16वीं शताब्दी के लगभग मध्य से 1592 तक उड़ीसा 5 मुस्लिम राजाओं द्वारा शासित रहा। मुगलों के पतन के पश्चात उड़ीसा पर मराठों का अधिकार रहा। सन 1803 में ब्रिटिश राज से पहले उड़ीसा मराठा शासकों के अधीन रहा। अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया, जिसे अब उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि उड़ीसा

स्वतंत्रता के बाद ओडिशा तथा इसके आसपास की रियासतों ने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी। रियासतों के विलय संबंधी आदेश 1949 के अंतर्गत जनवरी 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों का ओडिशा राज्य में संपूर्ण विलय हो गया।

ओडिशा के कलिंग, उत्कल और ऊध्र जैसे कई प्राचीन नाम हैं। कला द्वारा हम किसी भी प्रदेश की पहचान करते हैं। जानते हैं कुछ यहाँ के कला के बारे में। ओडिशा ने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया है। भित्ति चित्रों, पत्थर व लकड़ी पर नकाशी देव चित्र पट्टचित्र कला के नाम से विख्यात है और ताड़ पत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं आज भी कायम है। यहाँ हस्तशिल्प कलाकार चांदी में बेहद महीन जाले की कटाई की अलंकृत शिल्प कला के लिए विख्यात है। जनजातीय इलाकों में कई प्रकार के लोक नृत्य है। मादल व बांसुरी के संगीत गाँव में आम है। ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी 700 वर्षों से भी अधिक समय से अस्तित्व में है।

मूलतः ये ईश्वर के लिए किया जाने वाला मंदिर नृत्य था। नृत्य के प्रकार, गति, मुद्राएं और भाव भंगिमाएं बड़े मंदिरों की दीवारों पर, विशेषकर कोणार्क में, शिल्प व उभरी हुई नक्काशी के रूप में अंकित है। मयूरभंज और सरायकेला प्रदेशों का छऊ नृत्य, जो कि मुखौटे पहने कलाकारों द्वारा किया जाता है, ओडिशा की संस्कृति की एक अन्य धरोहर है।

आइए अभी जानते हैं कुछ साहित्य के बारे में। सारला दास ही उड़िया के प्रथम जातीय कवि और उड़िया साहित्य के आदिकाल के प्रतिनिधि हैं। कटक जिले की झंकड़वासिनी देवी चंदी सारला के वर प्रसाद से कवित्व प्राप्त करने के कारण सिद्धेश्वर परिडा ने अपने

को शूद्र मुनि सारलादास के नाम से प्रचारित किया। इनके तीन कृतियां उपलब्ध हैं, जैसे कि विलंका रामायण, महाभारत, चंडी पुराण। ये हम आदि युग की बात कर रहे थे, अभी मध्य युग की ओर चलते हैं। इस युग में पंच सखाओं के साहित्य का प्रधानता है। ये पंच सखा है बलराम दास, जगन्नाथ दास, यशवंत दास तथा अनंत दास और अच्युत अनंत दास। चैतन्य दास के साथ सख्य स्थापित करने के कारण ये पंच सखा कहलाए। इनके उपास्य देवता थे पुरी के जगन्नाथ जी, जिनकी उपासना शून्य और कृष्ण के रूप में ज्ञान मिश्रा, योग योग प्रधान, भक्ति तथा काय साधना द्वारा की गई। पंच सखाओं में से प्रत्येक ने अनेक ग्रंथ लिखे। 16वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में दिवाकर दास ने जगन्नाथ चरित्रमृत के नाम से पंच सखाओं के जगन्नाथ दास की जीवनी लिखी तथा ईश्वर दास ने चैतन्य भागवत लिखा। सालवेग नामक एक मुसलमान भक्त कवि के भी भक्ति रसात्मक अनेक पद प्राप्त है। इस युग में शिशु शंकर दास, कपिलेश्वर दास, हरिहर दास, देव दुर्लभ दास तथा प्रताप राय जैसी भी महान कवियों ने अपने अपने रचना दिए हैं। आइए सुनते हैं भक्त सालवेग जी के द्वारा रचित एक भजन।

अभी बात करते हैं रीति युग के बारे में। रीति युग में 1651 से लेकर के 1703 तक कवि दीन कृष्ण दास ने बहुत सारे काव्यों का रचना किया। साथ ही साथ कवि उपेंद्र भंज, जिनको रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कहते हैं, इनके कारण ही रीति युग को भंज युग भी कहा जाता है। इनकी अनेक प्रतिभाशाली कृतियों ने उड़िया साहित्य में इनको सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित किया। भंजकालीन साहित्य के बाद उड़िया साहित्य में चैतन्य प्रभावित गौड़ीय वैष्णव धर्म और रीतिकालीन लक्षण दोनों का समन्वय देखने में आता है। इनमें प्रधान है सचिदानंद कवि सूर्य, साधु चरण दास, भक्त चरण दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, गोपाल कृष्ण पटनायक, यदुमणि महापात्र तथा बलदेव कवि सूर्य आदि। इस क्रम में प्रधानत और दो व्यक्ति पाए जाते हैं, जिनका नाम है ब्रजनाथ बड़जेना और भीम भोई। ब्रजनाथ बड़जेना ने गुंडीचा विजय नामक एक हिंदी काव्य भी लिखा था और भीम भोई जन्मांध थे। वो जाति में आदिवासी थे, वो निरक्षर थे, लेकिन उनके रचित स्तुति चिंतामणि, ब्रह्ममणि रूपण गीता और अनेक भजन भी पाए जाते हैं। वे एक ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज के अंदर कुसंस्कार कुरीति के विरुद्ध बहुत सारी कविताएं रचना

भी है। आइए यहाँ पर सुनते हैं संत कवि भीमो भोई जी के द्वारा रचित एक भजन, और जिस भजन के अंतर्गत वो हमें ये सूचित करते हैं कि भले मेरा जीवन नर्क में हो लेकिन जगत का उद्धार हो।

0: आइए अभी चलते हैं आधुनिक युग की तरफ। यद्यपि ब्रिटिश काल से ही आधुनिक युग प्रारंभ होता है, किंतु अंग्रेजी का मोह होने के साथ ही साथ प्राचीन प्रांतीय साहित्य और संस्कृत से साहित्य पूरी तरह अलग नहीं हुआ। इस काल के प्रधान कवि राधानाथ राय हैं। आधुनिक युग को कुछ लोग राधानाथ युग भी कहते हैं। अभी बात करते हैं उड़िया उपन्यास सम्राट फकीर मोहन सेनापति जी के बारे में। उपन्यास में ये बेजोड़ हैं। उनकी कृति प्रायश्चित का हिंदी में अनुवाद भी हुआ है। इस काल के एक और प्रधान कवि मधुसूदन जी हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने भक्ति परक कविताएं भी लिखी हैं। इस काल में काव्य, उपन्यास और गल्प के समान नाटकों पर भी लोगों की दृष्टि पड़ी। नाटककारों में प्रधान रामशंकर राय हैं। उन्होंने पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, गीति नाट्य, प्रहसन और यात्रा आदि भिन्न भिन्न विषयों पर रचनाएं की है। राधानाथ युग के अन्य प्रसिद्ध कवि है गंगाधर मेहर, पल्ली कवि नंदकिशोर वल, विश्वनाथ कर, व्यंग्यकार गोपाल चंद्र प्रहराज आदि। इसके उपरांत गोपबंधु दास ने सत्यवादी युग का प्रवर्तन किया। वो अक्सर कहा करते थे,
1: मिशु मोरो देह ए देश माटी रे, देशवासी चले जानतु पिठी रे। मिशु मोरो देह ए देश माटी रे, देशवासी चले जानतु पिठी रे। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोरो मांस हाड़। देशर स्वराज्य पथे जेते गाढ़, पुरु तही पड़ी मोरो मांस हाड़।
0: इसका मतलब यही है कि मेरा तन मन धन सब देश के सेवा के लिए है। पद्मचरण पटनायक, नीलकंठ दास तथा गोदावरी मिश्रा आदि इस युग के प्रधान साहित्यिक थे। इस युग में पद्मचरण पटनायक, कवियत्री कुंतला कुमारी सावत छायावादी साहित्यकार और लक्ष्मीकांत महापात्र हास्य रसिक हैं। सत्यवादी युग के बाद रोमांटिक युग आता है। इसके प्रधान कवि मायाधर मानसिंह हैं। कारंद चरण पाणिग्राही, वैकुंठनाथ पटनायक, हरिहर महापात्र, शरद चंद्र मुखार्जी, आनंद शंकर राय ने सबुज कवित्व से सबुज युग का श्री गणेश किया। वासंती उपन्यास इनके सम्मिलित लेखन का फल है। इसके बाद प्रति युग या अत्याधुनिक युग आता है। लेकिन यहाँ पर सुनते एक बहुत ही अच्छा गाना, जो गाना हमें ये कहेगा कि उड़ीसा की मिट्टी कितनी अच्छी है। आइए सुनते हैं।

ये गाना यही कहता है, भले मेरा गांव का नाम भूगोल और इतिहास में नहीं है, लेकिन मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है और मैं अपना अंतिम सांस भी इसी गांव में ही लूंगा। 29 राज्य एक राष्ट्र एक कहानी, अतुल्य भारत, जहां पर हम बात कर रहे हैं अभी ओडिशा राज्य के बारे में। इस अत्याधुनिक युग में ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को पूर्व में काशी भी कहा जाता था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल भी रहा। प्राचीन काल में हजारों वर्ष तक बौद्ध धर्म यहाँ पलता फूलता रहा। बौद्ध धर्म की तरह जैनों के लिए भी ये जगह काफी महत्वपूर्ण है। प्रथम शताब्दी में यहाँ चेदी वंश का एक प्रसिद्ध जैन राजा खारवेल हुए थे। इसी तरह 7वीं शताब्दी में यहाँ प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ था। इस प्रकार भुवनेश्वर वर्तमान में एक बहुसांस्कृतिक शहर है और इसको टेंपल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 13वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म यहाँ उन्नत अवस्था में था। बौद्ध धर्म की तरह यहाँ जैन धर्म से संबंधित कलाकृतियाँ भी मिलती हैं। उदयगिरी तथा खंडगिरी की गुफाओं में जैन राजा खारवेल की बनवाई कलाकृतियाँ मिली है। उदयगिरी और खंडगिरी प्राचीन नाम है स्कंदगिरी। इन पहाड़ियों में पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्रसिद्ध चेदी राजा खारवेल जैन मुनियों के निवास के लिए करवाए थे। यहाँ करीबन 1 से 20 गुफाएं तक देखने को मिलती है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं। इनमें से कुछ गुफाएं 5वीं सदी से संबंधित हैं। यहाँ पत्थर को काटकर बनाई गई वाराह अवतार की मूर्ति पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक मानी जाती है। गुफा संख्या 4, जिसे रानी गुफा के नाम से भी जाना जाता है, यह एक आकर्षक गुफा है। गुफा संख्या 10 में, जिसे गणेश गुफा भी कहा जाता है, वहाँ गणेश की मनमोहक मूर्ति है। इस गुफा के दरवाजे पर 2 हाथियों को दरवान के रूप में स्थापित किया गया है। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा में शिवलिंग है, जिसकी पूजा स्थानीय लोग आज भी करते हैं। इन 20 गुफाओं के अलावा गिरी शिखर पर ध्वंसावशेष भी दिखते हैं। जन श्रुतियों के अनुसार आज भी इसे अशोक का महल कहा जाता है। आइए थोली के बारे में जानते हैं। थोली भुवनेश्वर के दक्षिण में राजमार्ग संख्या 203 पर स्थित है। ये वही स्थान है जहां अशोक कलिंग युद्ध के बाद आगमन

प्रसिद्ध पत्थर स्तंभों में एक यही है। इस स्तंभ में अशोक के जीवन दर्शन का वर्णन किया गया है। यहाँ का शांति स्तूप भी घूमने लायक है, जो धौली पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है। इस स्तूप में बुद्ध जी की मूर्ति तथा उनके जीवन में संबंधित विभिन्न घटनाओं की मूर्तियाँ स्थापित है, जैसे कि भुवनेश्वर को टेंपल सिटी कहा जाता है। कुल मिलाकर के 50 ऐसे मंदिर हैं जिसको पर्यटक देखने के लिए आते हैं। उनमें से राजा रानी मंदिर है, जो कि 11वीं शताब्दी में हुई थी। इस मंदिर में शिव और पार्वती की भव्य मूर्ति है। इस मंदिर के नाम से ऐसा लगता है कि मानो इसका नाम किसी राजा रानी के नाम पर रखा गया है, लेकिन एक खास प्रकार के पत्थर से बना है, जिसे राजा रानी पत्थर कहा जाता है। इसी कारण इस मंदिर का नाम राजा रानी मंदिर है। राजा रानी मंदिर से कुछ ही दूर पर ब्रह्मेश्वर मंदिर है और मुक्तेश्वर मंदिर, बहुत सारे ऐसे पौराणिक मंदिर वहाँ पर हैं। मुक्तेश्वर मंदिर में परमेश्वर मंदिर भी है, जो कि इस क्षेत्र के पुराने मंदिरों में सबसे आकर्षक है। इसके जगमोहन में जाली का खूबसूरत काम किया गया है और इसमें आकर्षक चित्रकारी भी की गई है। आइए अभी चलते हैं लिंगराज मंदिर की ओर। इस मंदिर समूह का निर्माण सोमवंशी वंश के राजा जजाति केशरी ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। ये मंदिर नागर शैली में बना हुआ है और ये उड़ीसा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। यहाँ पर शिव जी के पूजा की जाती है। मंदिरों के अलावा आप यहाँ पर प्लानिटोरियम, चिड़ियाघर, राज्य संग्रहालय भी देख सकते हैं। प्लानिटोरियम जो है पठानी सामंत प्लानिटोरियम के नाम से जाना जाता है। पठानी सामंत जी के बारे में अगर हम बताएं तो पठानी सामंत जी को कहा जाता था महामहोपाध्याय सामंत चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र। पठानी सामंत नाम से वो जाने जाते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के अवस्थिति के बारे में, साथ ही साथ दैनिक, वार्षिक आवर्तन एकदम सटीक रूप से वो गणना कर सकते थे। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के सही समय निर्धारित करने में वो माहिर थे, इसीलिए उनको महामहोपाध्याय की उपाधि मिली थी। वो ग्रह नक्षत्रों की दूरता को एक बांबू पाइप के माध्यम से नाप के डिस्टेंस बता सकते थे। उनके सारे तकनीकी रिसर्च ऑब्जर्वेशन उन्होंने लिखा है और उस किताब का नाम है सिद्धांत दर्पण। इसमें करीबन 2000 से भी ज्यादा पद्य हैं। उन्होंने बहुत सारे यंत्रों की भी रचना की है, जैसे कि गोल यंत्र, सूर्य घड़ी, शकुदंड, उलम्बी चक्र, मान यंत्र, खगोल यंत्र। सूर्य घड़ी के माध्यम से सूर्य की गति के अनुसार समय निर्धारण करने के लिए सूर्य घड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने जाना भुवनेश्वर के बारे में, टेम्पल सिटी के बारे में। अभी हम चलेंगे पुरी की ओर, यानी कि जगन्नाथ धाम, भारतवर्ष के चार मुख्य धामों में से एक धाम की ओर।

इस गाने का अर्थ यही कहता है कि भगवान जगन्नाथ जी का जब रथ यात्रा आयोजित होता है तो किस प्रकार से भक्ति में लोग गाना गाते हैं। ये आप सुन रहे थे संबलपुरी लोक संगीत। आइए हम चलते हैं श्री क्षेत्र की ओर, श्री क्षेत्र यानी कि पुरी की ओर। पुरी उड़ीसा प्रांत का एक जिला है। भारत के चार पवित्रतम स्थानों में से एक है पुरी, जहां समुद्र इस शहर के पांव धोता है। 65 मीटर ऊंचा जगन्नाथ जी का मंदिर पुरी के सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। यह मंदिर नीलगिरी पहाड़ी के आंगन में बना है। चारों ओर से 20 मीटर ऊंची दीवार से घिरे इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर बने हैं। मंदिर के शेष भाग में पारंपरिक तरीके से बना सहन, गुफा, पूजा कक्ष और नृत्य के लिए बना खम्भों वाला एक हॉल भी है। सड़क के एक पार पर गुंडीचा मंदिर के साथ ही भगवान जगन्नाथ जी का ग्रीष्मकालीन मंदिर भी है। गार्डन हाउस के रूप में प्रसिद्ध गुंडीचा मंदिर एक छोटा मंदिर है, जहां रथ यात्रा के दौरान मूर्तियों को रखा जाता है। आइए जानते हैं अभी पुरी के समुद्री तटों के बारे में। पुरी के समुद्री तटों पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बहुत ही आनंददायक होते हैं। पुरी से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर साक्षी गोपाल मंदिर है। यहाँ पर केवल अनाला नवमी के दिन श्री राधा जी के पवित्र पैरों के दर्शन किए जा सकते हैं। हिंदू नववर्ष की खुशी के लिए कुछ बात। हिंदू नववर्ष की खुशी में यहाँ चंदन यात्रा निकाली जाती है। पूरे भारतवर्ष और विश्व के पर्यटकों के लिए रथ यात्रा आकर्षण के प्रमुख केंद्र है।

ये यात्रा जून माह में आयोजित होती है, जो पूरी रथ यात्रा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। श्री जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को वार्षिक अवकाश पर मुख्य मंदिर से 2 किलोमीटर दूर एक छोटे मंदिर यानी कि गुंडीचा घर में ले जाया जाता है। रथ यात्रा और नव कालेवाड़ा पुरी के प्रसिद्ध पर्व हैं। ये दोनों पर्व जगन्नाथ की मुख्य मूर्ति से संबंधित हैं। पुरी रथ यात्रा का त्यौहार साल में एक बार मनाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए तीर्थयात्री देश के विभिन्न कोने से आते हैं।

रथ यात्रा में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा की पूजा अर्चना करते हैं। जगन्नाथ मंदिर के पास में प्रसिद्ध शिव मंदिर लोकनाथ मंदिर भी है। यहाँ के निवासियों में ऐसा विश्वास है कि भगवान राम ने इस जगह पर अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो ये रही पुरी की बात, लेकिन पुरी से कुछ ही दूरी पर सन टेम्पल यानी कि कोणार्क स्थित है। आइए जानते हैं कोणार्क के बारे में। कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के प्रतापी नरेश नरसिंह देव प्रथम ने अपने एक विजय के स्मारक स्वरूप करवाया था। 1200 कारीगर 12 वर्ष तक निरंतर लगे रहे। अबुल फजल ने अपने आईन अकबरी में लिखा है कि इस मंदिर में उड़ीसा राज्य के 12 वर्ष की समूची आय लगी थी। उनका ये भी कहना है कि ये मंदिर नवी शक्ति में बना था। इस मंदिर के निर्माण से संबंधित एक दंत कथा प्रचलित है कि संपूर्ण प्रकार के निर्माण हो जाने पर शिखर के निर्माण की एक समस्या उठ खड़ी हुई। कोई भी कारीगर उसे पूरा कर न सका। तब मुख्य कारीगर विश्व महाराणा के धर्मपद नामक 12 वर्ष पुत्र ने यह साहसपूर्ण कार्य कर दिखाया। उसके बाद उसने ये सोचा कि उसके इस कार्य से सारे कारीगरों की अपकीर्ति होगी और राजा उनसे नाराज हो जाएंगे। यह सोचकर उसने उस शिखर से कूदकर आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर में कुंभर पत्थर नामक चुंबकीय शक्ति से युक्त पत्थर लगा था। उसके प्रभाव से इसके निकट से समुद्र में जाने वाले जहाज और नौकाएं खींची चली आती थी। बहुत सारे कहानी इस मंदिर के साथ जुड़े हुए हैं। पुराणों में इस सूर्य मूर्ति का उल्लेख कोणार्क अथवा कोणादित्य के नाम से किया गया है। कहते हैं कि रथ सप्तमी को सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान कर उक्त मूर्ति प्राप्त की थी। आज भी उस तिथि को वहां लोग स्नान और सूर्य की पूजा करने आते हैं। मंदिर परिसर के दक्षिण पूर्वी कोने में सूर्य देव की पत्नी माया देवी को समर्पित एक मंदिर भी है। यहां नव ग्रहों वाला अर्थात सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, जुपिटर, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित मंदिर भी है। आइए अभी कोणार्क से डायरेक्ट हम चलते हैं उड़ीसा के और कुछ प्रमुख शहरों की ओर। अभी चलते हैं राउरकेला में। राउरकेला उड़ीसा का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को नदियां और पर्वतमाला घेरे हुए हैं। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखानों में से एक कारखाना यहां भी स्थित है। यहां राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान राउरकेला भी स्थित है, जो कि भारत के NITs में से एक है। अभी बात करते हैं संबलपुर के बारे में। संबलपुर भारत के उड़ीसा प्रांत के एक जिला है। इसका नाम समलेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा है, जो शक्ति रूपा है और इस क्षेत्र में पूज्य है। संबलपुर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के बीच स्थित दोनों प्रांतों को जोड़ता है। महानदी के बाएं किनारे पर स्थित यह नगर एकदा हीरों के व्यवसाय का केंद्र था। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त सूती और रेशमी बुनावट की वस्त्र कारीगरी, इकत, आदिवासी समृद्ध विरासत और प्रचुर जंगल भूमि के लिए प्रसिद्ध है। संबलपुर उड़ीसा के जादुई पश्चिम भाग का प्रवेश द्वार के रूप में सेवारत है। यह राज्य के उत्तरी प्रशासकीय मंडल का मंडल मुख्यालय है, जो एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक और शिक्षा केंद्र है। हीराकुद उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में ईब और महानदी के संगम पर स्थित है। यह स्थान का प्रसिद्धि के कारण हीराकुद बांध है। यह सोन, धूल एवं हीरा भी प्राप्त होता है। हीराकुद की झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हीराकुद बांध संसार के विशालतम तथा सबसे लंबे बांधों में से एक है। आइए बात करते हैं कटक के बारे में। बारावटी किला के बारे में बात करते हैं। महानदी के किनारे बना ये किला खूबसूरती से तराशे गए दरवाजों और 9 मंजिला महल के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण गंग वंश ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। युद्ध के समय नदी के दोनों किनारों पर बने किले इस किले की रक्षा करते थे। वर्तमान में इस किले के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी है। 5 एकड़ में फैले स्टेडियम में 30,000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। यहाँ खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता रहता है। कटक जिले में धवलेश्वर द्वीप भी है। इस द्वीप के चारों ओर महानदी है। इस द्वीप को जाने के लिए ज्यादातर नौका या झूला पुल के इस्तेमाल की जाती है। ये झूला पुल एशिया के सबसे लंबा झूला पुल है। अभी आते हैं चिलिका झील के ओर। चिलिका झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। ये भारत की सबसे बड़ी एवं

विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। इसको चिली का झील के नाम से और चिल का झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अनूप एवं उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में पूरी जिले में स्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। ये समुद्र का ही एक भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग होकर एक छिछली झील के रूप में हो गया है। दिसंबर से जून तक इस झील का जल खारा रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। तो यहाँ पर हमने जाना उड़ीसा राज्य के बहुत सारे पर्यटन स्थलों के बारे में। सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

अभी इस खूबसूरत गाने के बाद आइए जानते हैं खान पान के बारे में। चावल ओडिशा का प्रधान भोजन है। पखाल भात यहाँ के एक लोकप्रिय भोजन है। यह भोजन एक दिन पहले के चावल को आलू के साथ तलकर बनाया जाता है। इसके साथ आम, आलू भरता, बड़ी चूरा जो कि एक मसालेदार व्यंजन है, इसके साथ

खाया जाता है। साथ ही साथ पाई साग, ये साग उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही साथ छतु तरकारी, यानी कि ये तीखा भोजन है जो कि मशरूम से बनता है। उड़ीसा में हर खाने में पंचफोरन मिलाने का रिवाज है। ये एक खास तरह का मसाला होता है जिसे हर भोजन में मिला दिया जाता है। इसे भोजन में मिलाने से खाना स्वादिष्ट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ तड़का, डालमा, पीठा तथा नारियल के तेल में पूरी बनाया जाता है। आइए जानते हैं कुछ उत्पादों के बारे में। यहाँ पत्थर से बने बहुत खूबसूरत सामान मिलते हैं। इन सामानों में मूर्तियाँ से लेकर बर्तन तक शामिल है। पत्थरों से बने वस्तुओं के अलावा सिंक से बने वस्तुएं जैसे कि पेन स्टैंड, कंघी, इस प्रकार सजावटी वस्तुएं भी मिलते हैं। और साथ ही साथ पिपली के हस्तकला भी प्रसिद्ध है जिसको चांदुआ के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं उड़ीसा के त्योहारों के बारे में। इसका एक अनोखा त्योहार अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाने वाला है, बोईता बंदना, जिसमें नौकाओं की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ रज उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व के दौरान घर की महिलाएं, बहनें, बेटियां नए वस्त्र पहनते हैं और साथ ही साथ झूला में झूलते हैं और उस 3 दिन तक वो कोई भी काम नहीं करते हैं। इस पर्व के दौरान बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाया जाता है। इस पर्व को 3 दिन मनाया जाता है। इसके अलावा होली, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, ईद, रमजान आदि बहुत सारे पर्व इकट्ठे होकर के सभी मनाते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति ने उड़ीसा को कई रत्न दिए हैं, उसी प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी उड़ीसा ने कई रत्न दिए हैं।

जिनमें प्रमुख हैं सुभाष चंद्र बोस, गोपबंधु दास, हरे कृष्ण मेहताब, बख्शी जगबंधु। लेकिन आज मैं बात करूंगी दो ऐसे महान देश भक्तों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बात करते हैं भारत के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम से पहले एक वीर पुत्र ने, जिनका नाम था जय राजगुरु। अंग्रेजों का डट के सामना किया था अपने पाइकों को लेकर के, यानी कि 7000 सेना के साथ। लेकिन अंत में देशद्रोहियों की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो दिन था 6 दिसंबर 1806 का दिन। जय राजगुरु जी को अमानुषिक तरीके से हत्या किया गया था और वो बन गए हमारे देश के प्रथम शहीद। वो अक्सर कहा करते थे, मैं जीवन दे दूंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। इसीलिए उड़ीसा के लोग ये कहते हैं, जइया पछे जीवन देला नुआई नहीं मथा। अर्थात उन्होंने जीवन दे दिया लेकिन सर नहीं झुकाया। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस महान देशभक्त के वीरता को न सिर्फ उड़ीसा, पूरा भारत मिलके सलाम करता है।

0: सफर आरजे सनी के साथ।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर खाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, खाबों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं खाबों के सफर इस कार्यक्रम में हम लोग 50s एंड 60s के ओल्ड मेलोडीज सुनाते हैं और कुछ गजल्स भी सुनाते हैं। तो आज हम लोग सुनाएंगे एम अल्फाबेट के सारे गाने। जी हाँ, जो बहुत ही खूबसूरत गाने हैं एम अल्फाबेट वाले, वो आपको आज सुनाएंगे। लेकिन शुरू करेंगे एक गजल से। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसको खास हम लोग अभी सुनाने वाले हैं, जैसे कि ये।

0: और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं पल्लवी जी, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में।
1: हेलो, थैंक यू सो मच
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा, पहली बार आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और हमारे सभी श्रोताओं से रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज से, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताइए।
1: मेरा नाम पल्लवी है, मैं हरियाणा में कुरुक्षेत्र शहर से हूँ। ये माँ भारता की लैंड है, जैसे कि आप सब जानते हैं। मैं प्रोफेशन से एक शेफ हूँ, पेस्ट्री शेफ हूँ। मैं एक यहाँ पे बिजनेस रन करती हूँ और लोगों के लिए डिजर्ट बनाती हूँ, बहुत सारे सुंदर सुंदर केक्स, चॉकलेट। अभी सारा काम नीचे खाए और धीरे धीरे सब काफी कुछ बढ़ने वाला है जी।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी सुनकर सोच रहे होंगे कि केक हमें भी मिल जाए तो अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। और पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ख्वाबों के सफर में। और मैं जिस गजल के बारे में बात कर रहा था, ये एल्बम क्राई फॉर क्राई करके एल्बम थी, जगदीश सिंह साहब ने इसे संगीत से संवारा है और नंदलाल पाठक ने इसे लिखा है, सीजा रॉय ने इस गजल को गाया है। तो चलिए पल्लवी जी, मैं आपके लिए खास ये पहला गजल कार्यक्रम की शुरुआत में जो एम अक्षर से शुरू होता है उसे सुनाना चाहूंगा। बहुत ही प्यारी सी गजल है, सीजा रॉय की खूबसूरत आवाज में जगदीश सिंह का खूबसूरत संगीत है। तो चलिए साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में ये पहला गजल आपके नाम।

0: बहुत ही प्यारा सा गजल आपने सुना, आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। और पल्लवी जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: जी जी जी जी, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, ख्वाबों के सफर में। मैं हूँ आपका हम सफर और अब ले चलता हूँ मैं एम अक्षर वाले गीतों की तरफ। एक गाना है जो 1961 में एक एल्बम आई थी, आया सावन झूम के, बहुत ही प्यारी सी फिल्म थी, और इसमें एक गाना है एम अक्षर वाला जैसे कि ये।

शाम में जब अगर समुन्द्र के किनारे पे आप समुन्द्र के किनारे पे बैठकर नजारे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन जो है एकदम क्या कहते हैं शांत हो जाता है और एक अलग फील कराता है। तो आइए आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गीत, मोहम्मद रफी साहब का गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का खूबसूरत संगीत से सजा आया सावन झूम के इस एल्बम से ये गीत है, तो इस गीत का आनंद उठाएंगे। और कहा जाता है कि ये जो एक फिल्म है आया सावन झूम के, एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी इसमें बताई गई है, जीवन के जो उतल पुतल है, उतार चढ़ाव है, जिसमें एक गलती से एक व्यक्ति जो है बूढ़े व्यक्ति को मार देता है और बाद में पता चलता है उस व्यक्ति को कि ये जो व्यक्ति गलती से मारा गया है वो उनकी प्रेमिका के पिता है। तो आइए इस फिल्म के कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरुपमा रॉय, राजेंद्र नाथ और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रघुनाथ जालानी ने। तो दोस्तों आइए इस गाने का आनंद उठाते हैं, उसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं। आप सुना है रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों के सफर इस कार्यक्रम में। और काफी अच्छी बातें हो रही हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं। अगला गाना है मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। पल्लवी जी कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: जी जी जी, क्या आपने ये गाना सुना है कभी?
1: नहीं सुना।
0: अच्छा अच्छा, मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत मस्ती भरा गीत है और एकदम जैसे कि चुलबिल जैसे कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी सी मस्ती है इस गाने में। और ये आन 1952 की एक फिल्म है, उसमें ये गाना है, शकील बदायूं साहब का लिखा, मोहम्मद रफी साहब ने इसे गाया है और नौशाद साहब ने इस फिल्म में यानी इस गाने को संगीत से सजाया है। तो ये फिल्म आन जो है एक गरीब ग्रामीण की कहानी है, जय नाम के एक कैरेक्टर का कहानी है जो एक खेल में राजकुमार को हराता है, जिससे राजकुमार परेशान होता है और बाद में जय को शमशेर की बहन से प्यार होता है और उसे अपने प्यार के लिए राजी करने की कोशिश करता है। तो एक प्रेम कहानी है और वो चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो इस फिल्म के कलाकार हैं दिलीप कुमार, निम्मी, नादिया, प्रेमनाथ और मुकेश। महबूब खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। तो पल्लवी जी आगे बढ़ते हैं और इस गाने को सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छे अच्छे गीत आप सुन रहे हैं और पुराने जो गाने हैं उसमें एक मेलोडी है जो हमारे दिल को छू लेती है। आज के समय में जो गाने हैं और पहले के जमाने में गाने हैं उसमें थोड़ा सा अंतर जरूर है और आज भी हम लोग पुराने फिल्मी गीतों को सुनते हैं और नए सुनते हैं, बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें पता ही चल जाता है। पल्लवी जी बताइए, आपको कैसा लगता है पुराने गीत या फिर अभी वाले गीत में क्या डिफरेंस है?
1: पुराने वाले गीत में एक अलग ही मस्ती होती थी, एक अलग ही प्योरिटी होती थी। मतलब जब उसको सुनते थे तो ऐसे मन करता था कि आंखें बंद करके उस गाने को फील करा जाए। आजकल के जो गाने हैं उनका कोई सेंस ही नहीं होता, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, बल्कि आजकल के सारे सिंगर्स पुराने गाने को ही लेकर रीमिक्स करते हैं। उनका कोई सेंस ही नहीं होता, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप। हम भला क्या हैं, सितारों को झुका सकते हैं आप।

موسم سوہانا ہے، دلکش زمانہ ہے، پھر بھی اداسی ہے یہ رات پیاسی ہے۔

ही सोना सोना जब तक न हो नबीना। दुनिया की वादियों में बिन यार कैसे जीना, दरिया भी सोना सोना जब तक न हो सफीना।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है, आजकल पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दू, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होनी चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हेलो पुराना स्तंभ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसी हो मनु?
0: मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आज आप जल्दी से बताइए कि कौन सी कहानी सुनाने जा रहे हैं मुझे।
1: पहले मुझे ये बताओ कि क्या भारत की टीम ने कभी कबड्डी में मेडल जीता है?
0: शायद जीता होगा।
1: अच्छा, फीमेल क्रिकेट टीम के 5 प्लेयर्स के नाम बता दो।
0: अब मुझे तो एक ही पता है, मिताली राज।
1: अच्छा, भारतीय हॉकी टीम का आखिरी मैच कब हुआ था?
0: वो तो पता नहीं, लेकिन आप आज ये मेरे साथ क्विज कॉन्टेस्ट क्यों खेल रहे हैं?
1: क्योंकि खेल जगत में भारत अच्छा कर रहा है। लेकिन सभी लोग अगर एक खेल के अलावा किसी और खेल की न जानकारी रखेंगे और न देखेंगे तो भला उन खेलों को बढ़ावा कैसे मिलेगा?
0: अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मुझे तो क्रिकेट का शौक भी है, पर फीमेल क्रिकेट टीम के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं। और हॉकी, उसे देखने में भी मजा आता है। क्या इधर से उधर बॉल के पीछे भागते हैं सब खिलाड़ी?
1: हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है ये खेल।
0: तो चलिए, आज का मेरा होमवर्क तो मुझे मिल गया। अब आज की कहानी किसकी है वो भी बता दीजिए।
1: आज की कहानी है वासुदेव बलवंत फड़के की।
0: वासुदेव बलवंत फड़के जी की?
1: हाँ। वासुदेव बलवंत फड़के का जन्म 4 नवंबर 1845 ईस्वी में

0: कल्याण और पूना में उनकी शिक्षा हुई।
1: अच्छा।
0: फड़के के पिता चाहते थे कि वह एक व्यापारी की दुकान पर 10 रुपए मासिक वेतन की नौकरी कर ले और पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन फड़के ने ये बात नहीं मानी और मुंबई आ गए।
1: और फिर
0: वहाँ पर GRP में 20 रुपए मासिक की नौकरी करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी।
1: अरे वाह।
0: 28 वर्ष की आयु में फड़के की पहली पत्नी का निधन हो गया। इस कारण उनका दूसरा विवाह करवा दिया गया। विद्यार्थी जीवन में ही वासुदेव बलवंत फड़के 1857 ईस्वी की विफल क्रांति के समाचारों से परिचित हो चुके थे। शिक्षा पूरी करके फड़के ने ग्रेट इंडियन पेंसुलर रेलवे और मिलिट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट पूना में नौकरी की।
1: अच्छा।
0: हाँ, उन्होंने जंगल में एक व्यायामशाला बनाई।
1: अरे वाह।
0: जहाँ ज्योतिबा फूले भी उनके साथी थे। जानती हो ना ज्योतिबा फूले को?
1: बिल्कुल, उनकी कहानी तो आपने सुनाई थी हमें।
0: हाँ, यहाँ लोगों को शस्त्र चलाने का भी अभ्यास कराया जाता था।
1: अच्छा।
0: लोकमान्य तिलक ने भी वहाँ शस्त्र चलाना सीखा था।
1: ओह, लोकमान्य तिलक ने भी?
0: जिनकी कहानी तुम सुन चुकी हो।
1: बिल्कुल।
0: 1857 की क्रांति के दमन के बाद देश में धीरे धीरे नई जागृति आई और विभिन्न क्षेत्रों में संगठन बनने लगे। इन्हीं में एक संस्था पूना की सार्वजनिक सभा थी।
1: अच्छा।
0: इस सभा के तत्वावधान में हुई एक मीटिंग में 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने एक भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि अंग्रेज किस तरह भारत की आर्थिक लूट कर रहे हैं। इसका फड़के पर बड़ा प्रभाव पड़ा। नौकरी करते हुए भी छुट्टी के दिनों में गांव-गांव घूमकर लोगों में इस लूट के विरोध में प्रचार करते रहे।
1: अच्छा।
0: हाँ, 1871 ईस्वी में एक दिन सायंकाल वासुदेव बलवंत फड़के कुछ गंभीर विचार में बैठे थे। तभी उनकी माता जी की तीव्र अस्वस्थता का तार उनको मिला। इसमें लिखा था कि वासु यानी वासुदेव बलवंत फड़के, तुम शीघ्र घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद ना हो सकेंगे। इस वेदनापूर्ण तार को पढ़कर अतीत की स्मृतियां फड़के के मानस पटल पर आ गई और तार लेकर अंग्रेज अधिकारी के पास अवकाश का प्रार्थना पत्र देने के लिए गए।
1: अच्छा।
0: किंतु वहां उन्हें अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। उस अंग्रेज अधिकारी ने अवकाश नहीं दिया, लेकिन वासुदेव बलवंत फड़के दूसरे ही दिन अपने गांव चले आए।
1: अच्छा।
0: गांव पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनका मुंह देखे बिना ही तड़पते हुए उनकी ममतामयी माँ चल बसी। उन्होंने पांव छूकर रोते हुए माँ से क्षमा मांगी, किंतु अंग्रेजी शासन के दुर्व्यवहार से उनका हृदय द्रवित हो उठा।
1: अच्छा।
0: इस घटना के होने से वासुदेव फड़के ने नौकरी छोड़ दी और विदेशियों के विरुद्ध क्रांति की तैयारी करने लगे।
1: अच्छा।
0: उन्हें देशी नरेशों से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी का रास्ता अपनाकर आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी।
1: अच्छा।
0: उन्होंने फरवरी 1879 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। धन संग्रह के लिए धनिकों के यहाँ डाके भी डाले। अब आगे की कहानी के लिए इंतजार करो मनु।
1: हाँ हाँ, मुझे पता है। वहाँ पार्क में कुछ बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए आने वाले हैं ना, इसीलिए आप मुझे आगे की कहानी नहीं सुना रहे हैं।
0: हाँ, अब मुझे फुटबॉल मैच देखना भी बड़ा पसंद जो है।
1: तो ठीक है, आज मैं भी आपके साथ फुटबॉल मैच देखूंगी।
0: ठीक

0: चलो हम दोनों मिलकर देखते हैं।
1: हाँ, और आगे की कहानी बाद में सुनूंगी। थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
0: बाय बाय मनु।

0: हम साथ में कर सकते हैं, है ना दोस्तों।
1: 1857 की क्रांति के बारे में भी उन्होंने पढ़ाई करने के दौरान ही जाना। मतलब कि दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं और लगन से करते हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज हमें नहीं मिलती, बल्कि बहुत सारी अन्य नॉलेज भी उस दौरान हमें प्राप्त होती है, जो कभी न कभी हमारे लाइफ को एक नया एम ऑब्जेक्टिव दे सकती है। और क्या पता हमें क्या सीखने को मिल जाए। मतलब अगर हमें सीखने का कोई भी रास्ता खुला दिखता है तो हमें सीखते रहना चाहिए। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, ये मैंने सुना था कहीं। तो कुछ ना कुछ सीखते हमेशा रहना चाहिए, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो। लेकिन सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर सीखना खत्म हुआ तो लाइफ ना बोरिंग लगने लगेगी। कभी कभी हमें लगने लगता है मुझे सब आ गया। जैसे अगर मैंने संगीत में विशारद कर लिया, या फिर स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल पे खेल लिया, या फिर कोई एक काम बहुत बार कर लिया, तो ऐसा लगता है अब मैं इस पे परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गई। लेकिन दोस्तों, सीखने की भावना अगर जिंदगी से गई तो सच में असल एंजॉयमेंट चला जाएगा, और शायद हमें लाइफ कभी कभी एमलेस भी लगने लगती है। तो इसलिए लाइफ का एम ऑब्जेक्टिव बना रहे तो लर्निंग की भावना भी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बहुत कुछ है सीखने को, है ना। तो आप भी मेरी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहिए। और फिलहाल मिलूंगी आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे पुराने स्तंभ जी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो पुणे री आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लो।
1: अजी सुनते हो?
2: हाँ सुनी तो रहा हूँ।
1: क्या सुन रहे हो?
2: रेडियो पुणेरी आवाज।
1: ओ रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो खुशियां।

0: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम,
1: अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम।
0: आ जाए जी सुर में देखो जीवन की सरगम।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: यानी कि मैं किन मान्यताओं को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। अब ये तो पूरा का पूरा मेरी सोच जो है उस पर निर्भर करता है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जीवन जीने का जो तरीका है वो मेरी मान्यताओं पर ही खड़ा है। कैसे अब उनको देखना है और कैसे उन्हें बदलना है, ये पूरी श्रृंखला का हमारा जो है वो एस्पेक्ट रहेगा। लेकिन आज बातचीत करते हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स पर एक बार फिर से, और हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामा कुमारी सिस्टर शिवारी, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: एक और लहर चल पड़ी है सिस्टर शिवानी, और हमारे पास जिस तरह के मेल्स भी पहुंचने लग गए हैं, बार बार हम यही कहते हैं आप ही का मंच है तो फिर अपने मंच पर खुले मन से बात करते हैं, तो अब ढेरों बिलीफ सिस्टम आने लग गए हैं। और फिर ये कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है या ये ट्रुथ है। आपने एक बात हमें कही थी अगर पिछली कड़ी को याद करें, कि अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी फीलिंग जो है वो ठीक है, अच्छी की फीलिंग है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई अनकंफर्टेबलनेस नहीं है, मतलब बिलीफ सिस्टम ठीक है। और अगर मैं अनकंफर्टेबल हूं, कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, चेक द बिलीफ सिस्टम। बहुत से लोगों ने किया है। अब ये बिलीफ सिस्टम जो है, जो जिस पर मैं काम कर रही थी, वो वर्क कैसे करता है, यू नो, चेंज कैसे करना है, ये तो एक लंबा प्रोसेस होगा और इस पर हम डेफिनेटली, मतलब इस पर डीप में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें तो ये बिलीफ सिस्टम, जैसे कोई भी है, अगर मेरा कोई भी बिलीफ है, वो मेरी हैप्पीनेस को कैसे ले लेता है?
1: जो बिलीफ सिस्टम है उसी के आधार पर ही थॉट्स क्रिएट होंगे ना। लेट्स से चलो हमने पिछली बार कई बड़े बड़े बिलीफ, छोटे छोटे सिंपल बिलीफ देखते हैं। इवन ए सिंपल बिलीफ लाइक आज के समय में चिंता होना तो नेचुरल है, यू नो, कि तनाव तो नेचुरल है। अब ये मेरा बिलीफ है कि तनाव तो नेचुरल है, तो सारा दिन में जितनी बार भी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी या टेंशन या वरी, आई विल एक्सेप्ट इट एज
0: कि ये कुछ गलत नहीं हो रहा है,
1: ये गलत नहीं हो रहा है, ये
0: और डिस्टर्बेंस इज ओके,
1: इज ओके। एंड फिर मैं अपने आप को छोटी छोटी बातों में टेंस्ड होना भी परमिशन दे देती हूँ कि इट इज ओके। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम अलाउड टू स्मोक, तो फिर मैं सोचूंगी थोड़ी उसकी वजह

0: सारे ये सिचुएशन मेरे मन के थॉट्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ मेरा बिलीफ सिस्टम बनता है कि सिचुएशंस क्रिएट थॉट्स। दिस इज वेयर बिकॉज आई सी इट हैपनिंग प्रैक्टिकली कि मैं अपने मन का कंट्रोल पूरी तरह से उस सिचुएशन को जो अभी तो अक्रॉस द स्क्रीन है लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरह से दे देता हूँ। वो रोते हैं तो मैं रोता हूँ, वो हंसते हैं तो मैं हंसता हूँ, तो इतना मेरा मन पूरी उसके अंदर इनग्रॉस्ड हो जाता है। तो उतनी देर क्या होता है, मेरी माइंड की क्रिएटिविटी जो हम कह रहे हैं कि हमारे मन की इतनी पावर है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सिचुएशन हमारे माइंड के अंदर पावर है अपने आप की थॉट क्रिएट करना, कि भले कोई सारे भी रो रहे हो मेरे आसपास मेरे मन के अंदर फिर भी ताकत है कि मैं उस समय स्टेबिलिटी की थॉट क्रिएट कर सकूं। लेकिन जितनी देर ये हम टेलीविजन या मूवी देख रहे हैं उतनी देर हमने क्या किया, अपनी मन की पावर को दबाते गए। तो एक चीज है जिसको हमें धीरे धीरे से एक्चुअली एम्पावर करना है लेकिन हम उसको रोज और ही दबा देते हैं एंड रोज उसकी क्रिएटिविटी को फिनिश करते हैं।
1: क्रिएटिविटी टू क्रिएट माय ओन थॉट्स,
0: क्रिएटिविटी टू चूज माय ओन थॉट्स। क्रिएट तो हम कर ही रहे हैं, तो एक तरफ से हम वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर क्रिएटिविटी को अवेयरनेस के साथ हम अपनी थॉट्स क्रिएट करें और दूसरी तरफ से हम अपनी ही क्रिएटिविटी को खत्म करते जाते हैं। तो जहां तो हम एक तरफ से बात करते कि कोई भी सिनारियो में हमें डिटैच्ड होकर रहना है ताकि सिचुएशन का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, पर अभी तो टीवी और मूवी का ही प्रभाव इतना पड़ रहा है
1: पर उसमें मजा आ रहा होता है ना, उसमें वी गेट सो इन्वॉल्व एक्चुअली, चाहे वो नॉवल की बात करते हैं, किताब की बात कर रहे हैं या फिर हम मूवी की बात कर रहे हैं या सीरियल्स की बात कर रहे हैं।
0: यस,
1: तो एक स्टिमुलेंट है एक कहीं ना कहीं, व्हाई वी लाइक इट सो मच,
0: बिकॉज इट्स अ स्टिमुलेंट जो मेरे अंदर एक तो मेरी सी वो मेरे इनर वर्क को बंद कर देता है। आई डोंट हैव टू डू एनी इनर वर्क, जैसे कि मेरे सोचने का काम
1: वो करने लगता,
0: वो करने लगता है, मुझे नहीं करना,
1: वो बने बनाए थॉट्स मुझे दे रहा है पैक कर करके।
0: सी नाउ दिस इज अ गुड वन, कि वो बने बनाए मुझे दे रहा है, अब यही थॉट प्रोसेस
1: खाना नहीं बना रहा है मुझे पैक कर करके खाना मिल रहा है। वाह,
0: यस, तो मुझे मेरे को कुछ नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर, समवन एल्स इज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी क्योंकि वो समवन एल्स हैज टेकन ओवर माई होल माइंड पावर। तब हम कहते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है क्योंकि हम पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गए,
1: सारे इमोशंस को जी लिया। yes. एक बार किसी ने मुझे कहा कि मैं इस फिल्म में इतना खुश हुआ क्योंकि मैंने सारे इमोशन को जिया है।
0: सर सी अब क्या, लेकिन बच्चे ओके आप देखें वो सारा, बट ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यही इफेक्ट फिर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है। अभी तो थोड़ी देर टीवी के एक्टर्स थे लेकिन फिर जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ हो गए हम सारा दिन, तब भी अगर मेरे माइंड ने वो पावर गिव अप कर दी है कि आई गो इन टू माई लाइफ देन विद दिस बिलीफ सिस्टम कि सिचुएशंस मेरी थॉट्स को क्रिएट करती हैं, क्योंकि मेरे माइंड के अंदर वो पावर धीरे धीरे खत्म होती जाती है। वाई डू वी से इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, कहते हैं ना इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया कितना है आज के बच्चों पर, सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया,
1: वो इट मींस यू नो लाइक वो इतना स्ट्रांग आपका हैबिट बन जाती है you know, आपके माइंड की
0: थॉट को क्रिएट कर रही है ना। आप एक पर्टिकुलर सीरियल, एक
1: कार्टून देख रहे हैं बच्चे
0: कंटिन्यूअसली, अब कार्टून में भी आज अगर वायलेंस है यू नो कार्टून में भी वायलेंस हो गया है तो मैं वायलेंस देखता जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन इज क्रिएटिंग थॉट्स, अब वो वायलेंस की इन्फॉर्मेशन लेते गए उसी क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट होती गई और हर रोज देखते देखते देखते हर रोज देख रहे हैं तो वो मेरा क्या बनता जा रहा
1: है,
0: तो वही मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन रहा है, वही मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर आता जा रहा है, तब कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया।
1: ओह, वी रियली नीड टू सी एक्चुअली, इफ आई रिपीट इट विल बिकम मोर कम्फर्टेबल फॉर मी, कि मैं आज कोशिश ये कर रही थी कि अपने थॉट्स खुद क्रिएट करो, राइट, लेकिन मेरे बिलीफ सिस्टम्स या वो बिलीफ जो मेरे साथ चल रहा था वो एक थॉट इतना स्ट्रांग होता था कि उसको मैं ओवरपावर नहीं कर पा रही थी, नया थॉट नहीं क्रिएट कर रही थी। और आज मैंने अपने आप को ऐसी सिचुएशंस ऐसे माध्यम दिए, चाहे वो टेलीविजन है चाहे वो सीरियल है फिल्म है या नॉवल है, कि उस हर सिचुएशन ने मेरी क्रिएट करने की थॉट क्रिएट करने की सही थॉट चूज करने की जो पावर है उसको कुंद कर दिया, आपको खत्म कर दिया।
0: एब्सोल्युटली, एंड उसमें भी अब क्या हो रहा है,
1: क्वालिटी,
0: इट इज हार्मफुल, यस, एंड इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग व्हेन क्वालिटी क्या है जो आप रोज देख रहे हैं। जब हमें ये समझ में आता है कि ये मीडिया हमारे थॉट पावर को कितना डीप इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब और भी हमारे

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम किस तरह का प्रोग्राम, किस क्वालिटी का प्रोग्राम अंदर फीड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी थॉट्स को क्रिएट करना है. अब मेजोरिटी जो हमारे सीरियल्स हैं या सोप ऑपरा है, उसमें हर एक दूसरे को या तो चीट कर रहा है, कोई किसी का विश्वास तोड़ रहा है, कोई किसी के अगेंस्ट मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि दे विल से दिस इज व्हाट सेल्स. अगर सब कुछ हम उसमें अच्छा अच्छा दिखाएंगे तो हु इज गोइंग टू वॉच.
1: और ऊपर से कई बार तो ये भी कहा जाने लगे कि जो हो रहा है समाज में उसी का आईना है.
0: या लेकिन अगर कहीं थोड़ा थोड़ा हो भी रहा सपोज, लेकिन इतने सब लोग अगर उसको रोज देखते जाएंगे एंड दैट इज हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन माई थॉट्स, तो कहीं ना कहीं वो मेरे घर में धीरे धीरे
1: होना शुरू हो जाएगा,
0: क्योंकि वो मेरे मन में होना शुरू हो गया. टीवी का इम्पैक्ट घर पे नहीं है, टीवी का इम्पैक्ट हर एक के मन पर है और फिर वो हर एक की सोच वैसी बन. अगर मैं रोज एक सीरियल देखूं जिसमें मुझे ये दिखाई दे कि किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, आज तो घर के अपने ही परिवार वाले घर वालों को धोखा दे रहे, अगर मैं रोज रोज रोज ये देखूं, विल इट नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन माय थॉट?
1: डेफिनेटली. इवन न्यूज को भी अगर हम देखते हैं, हर रोज चाहे वो पात्र बदल जाए, चाहे वो लोग बदल जाए, लेकिन वो न्यूज इतनी यही वाली हिट कर रही है,
0: वायलेंस वाली, फियर वाली, तो वो मेरी थॉट्स पर क्रिएट होगा. अगेन लेट्स ब्रिंग इट बैक टू दिस प्रोग्राम. क्यों अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? क्योंकि यहां हम एक डिफरेंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं. अब जो एक बिलीफ सिस्टम के साथ चल रहे थे कि एंगर इज नेचुरल, टेंशन इज नेचुरल, फिर सुन सुन के क्या हुआ, उनकी थॉट पर उसका इफेक्ट पड़ा. एंड मेनी पीपल सेड लेट अस एक्सप्लोर कि गुस्से के बिना भी काम हो सकता था. लेकिन रोज अगर सीरियल देखेंगे जिसमें गुस्से से काम हो रहा है,
1: तो गुस्से पिक्चरें अभी तक यू नो लाइक ये जो बात है कि अंडरडॉग का जो वो होता है कि उसका जो है उसका वायलेंस, उसका दुख, उसका
0: इट इज
1: हाईलाइट और ग्लैमराइज किया जाता है.
0: एब्सोल्युटली. तो दिस इज अ डायरेक्ट प्रूफ कि जो आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस को कितना डीप इन्फ्लुएंस करता है.
1: यू नो इनफैक्ट आई हैव दिस मेजर बिलीफ सिस्टम कि जो पैसा है वो आपको गलत रास्ते पर लेकर जाता है. पैसा इज सिन. And this is what the belief system had because of the sins.
0: True, but which is not true.
1: But actually, I understood it now.
0: Yeah. So this is not true. So कहीं ना कहीं वो हमारा belief system बहुत influence होता है. तो भले आज हम TV देख रहे हैं, movies देख रहे हैं, और फिर हम सिर्फ अकेले नहीं देख रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे, जितने छोटे हैं उतना उनके ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी तो अभी पावर ऑफ द माइंड डेवलप हो रही है कि कैसे थॉट्स क्रिएट करें.
1: और बड़ी बात आज यहाँ क्लियर ये होती है शिवानी कि ये हम सब कहते आ रहे हैं कि टीवी का इन्फ्लुएंस बहुत खराब है, फिल्म्स नहीं देखनी चाहिए इतनी, टीवी इतना मत देखो. क्यों कहते हैं हम माँ बाप अपने बच्चों को? क्या हमें रीजन पता था? लेकिन आज अपने लिए भी तो रीजन पता चला. हम कहते हैं हम बड़े हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें तो देखना ही पड़ेगा, हमें इन्फॉर्मेशन तो लेनी है ना, हमें न्यूज तो देखनी है ना, हमें ये तो करनी है. और हम सिर्फ कहने के लिए कहते आ रहे थे आज तक अपने बच्चों को. आज अगर हम समझ के अपने ऊपर और बच्चों के ऊपर एटलीस्ट थोड़ा सा काम करना शुरू करें, तो टीवी से हम निकल तो नहीं पाते कंप्लीट.
0: नहीं, हम बच्चों को कहते हैं टीवी मत देखो, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज्यादा टाइम वो उसी के सामने स्पेंड कर रहे हैं, उतना टाइम उन्हें पढ़ना चाहिए या उनकी आईसाइट खराब होती है. वेरी फ्यू ऑफ अस नो कि उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड पर कितना पड़ता है.
1: हम कहते तो आते थे लेकिन कैसे पड़ता है ना, ये तो मुझे भी नहीं पता था अभी तक.
0: अब अगर मैं इतनी देर टीवी एक घंटा भी देखा, सपोज दो घंटा देखा, एंड माई माइंड बिकम्स एकदम यू नो ओवर पावर्ड बाय दैट, अब पढ़ने के लिए बैठो उसके बाद वो माइंड तो नंब अवस्था में है अभी, फिर उसको एक्टिवेट करना और फिर उसको वो कंसंट्रेशन लेवल पर लेकर आना, उसने कंसंट्रेट करना बंद कर दिया है. उसने वो एक घंटे के लिए कॉन्सेंट्रेट,
1: उसके बाद आप किताब खोल के बैठे हो, कंप्यूटर खोल के भी बैठे हो, कुछ
0: नॉट वेरी इजी. इट्स नॉट वेरी इजी. इट्स लाइक फिर उसको बहुत धीरे धीरे धीरे उसको वापस उस स्टेज पर लेकर आना पड़ता है. तो टीवी का इम्पैक्ट, मीडिया का इम्पैक्ट हमें समझना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड की क्रिएटिविटी को धीरे धीरे, क्रिएटिविटी इन द सेंस पावर टू चूज माई थॉट्स, उस पर इम्पैक्ट डालता है. एंड टूडे एंटरटेनमेंट के नाम पर बहुत
1: तो हम सब इतने अच्छा. अनदर थिंग विच आई वॉन्टेड टू टॉक इज दैट ये तो एंटरटेनमेंट वो ही जो मुझे सचमुच में आई वॉज गेटिंग इन्वॉल्व यू नो मे बी सीरियल्स थे या फिल्म्स थे. लेकिन आज जो रियलिटी शोज के नाम पर हमें देख परोसा जा रहा है और हम उसे देखने पे मजबूर हैं, क्या हमारी हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम स्विच भी नहीं ऑफ कर पाते उसको? सोचते जाते हैं, हम बोलते जाते हैं ये क्या दिखाया जा रहा है, ये ऐसा, ये मतलब सच के नाम पे क्या दिखा रहे हैं, शादी के नाम पे क्या दिखाया जा रहा है, रियलिटी शोज में बच्चों के साथ किस तरह

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन नाउ, इवन अगर कल बीत गया इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

ओम शांति। अवेकनिंग के ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूं ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुंच रहा है, आपके फोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल

0: हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफर को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफर पर चले, उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए।
1: मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, सो इट्स लाइक अ बिग फैमिली, यू नो, एवरीवन हैज जस्ट जॉइंड इन एंड इट्स सो वंडरफुल टू हैव एवरीवन टुगेदर एंड एवरीवन जस्ट सेंड्स इन लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स व्हिच वी आर वेरी थैंकफुल टू देम, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेज भेजते हैं। और सबसे ब्यूटिफुल चीज जो लगती है कि मेजोरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि यू नो, कोई हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे, और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट एंड विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट, यू नो, कि इट जस्ट गोज टू प्रूव कि जहां आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो तो परिवर्तन कितना सहज है। जो आज तक हम सोच रहे थे नहीं, अपनी आदतों से मुक्त होना कितना मुश्किल है, वो कितना सहज अब लगने लग गया।
0: अच्छा, एक बात और कहना चाहूंगी मैं, हमारे साथ भी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो कितना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नजर आ रही हैं, तो आप इतनी छोटी सी हैं, इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई हैं और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं, तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है।
1: हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है ये डायरेक्ट इस समय, इट्स नॉट जस्ट टू से इट बट इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, के ये डायरेक्ट निराकार परमात्मा जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं। आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया, और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था, शायद हमारी बुद्धि उतनी यू नो शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम टीचर है, और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करे, यू नो, बिकॉज आई हैड ऑल्सो रेड सो मेनी बुक्स एंड लिसन टू सो मेनी पीपल, बट वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक और एक कंफ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं। तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा, मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो, अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे यू रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटिफुल। और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज, हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना, वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता है, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में
1: इतनी आसानी और उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते, और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर सुप्रीम फादर आकर देते हैं और हमें वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते, और फिर बताते बताते चाहे वो बहुत हाई बात भी हो वो हमारे लिए इतना इजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं, सो इट्स एवरीथिंग इज डन। तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ में मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका और हजार कदम मदद के मेरे साथ में, दैट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। आज दिन तक हम एफर्ट कर रहे थे, इट वॉज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफर्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफर्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल। तो आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज है, वो

0: एफर्ट करती भी तो उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफर्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है।
1: शिवानी, एक और बात, अभी हमने क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है और ये सबसे सुंदर बात है। फिर भी कहीं न कहीं, कभी न कभी जिंदगी जीते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशन सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है, तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी जरूरत लगती है।
0: हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहने कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे और वो रोज पढ़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज डलती जाएगी और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही। एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें, अब दूसरा है अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन का और गहरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन से हमें पावर मिलती है, हमें नॉलेज और पावर दोनों चीजें चाहिए। अभी हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज से एफर्ट हो रहा है, लेकिन पावर चाहिए और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। अब कई भाई बहने हमें लिखते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सेंटर पर अगर समय निकाल कर जाएं, क्योंकि दैट इज वेयर इट विल बिकम वेरी इजी। सेंटर का एक वायुमंडल होता है, वहां बहने हैं जो हमें गाइड कर सकती हैं। हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है, तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहने रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज लाइक अ चार्जर। आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिजल्ट ज्यादा मिलेगी। अब यही चीज को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा, यू नो इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना, तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहने भी वहां हेल्प करने के लिए होंगे, इट जस्ट बिकम सो इजी। तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज जा पाए तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर रोज नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज।
1: इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफर में ये रही है कि अनुभव, तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश जरूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है, तो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव हम कहां खुद खड़े।
0: 2 महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहां पहुंच जाएंगे। यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले, तो यू नो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है, तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। 10 दिन कर लें वो एफर्ट और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट। फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड इट विल बी वन ऑफ द थिंग्स इन योर डेली रूटीन। जैसे कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम न होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते, भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, एक या दो बार मिस कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा, तो वो

0: काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे। इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है, हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है, तो वो मेरे को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज बढ़ा रही है, व्हाई विल आई नॉट टेक आउट टाइम फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट।
1: ओके, सो इट्स अ प्रॉमिस टू आवरसेल्फ्स, एक्चुअली एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद।
0: इट्स ओनली फॉर दोज हु वांट टू डू इट। सी अगेन, इट्स नॉट दैट यू हैव टू डू, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज हैव टू गो टू एनीवेयर। लेकिन अगर क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, देन दैट इज द स्टेप।
1: वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफर होता है, और मुझे लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग जो हैं वो उस आगे के सफर पे भी जाना चाहते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशन, यू नो, मतलब क्या है वो बेसिकली?
0: आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ, एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है विच इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। लगभग लेट्स से 10 ईयर्स बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है, उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ जिसके लिए हम कहते हैं। IQ वेरी कॉमन, पहले से हम सुनते आए कि इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वी डिडंट नो। तो एक है रैशनल इंटेलिजेंस, जो IQ हम कहते हैं कि हमारी लॉजिक कितनी अच्छी है, यू नो, एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, हम रैशनलाइज कितना अच्छा कर पाते हैं। तो रैशनल इंटेलिजेंस पर हम बहुत समय से चलते आए और आज इतना कुछ जो हमने क्रिएट किया है, दैट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस, जो कि इट्स वेरी गुड। लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम बहुत ज्यादा बाहर बाहर बाहर की तरफ जहां जाते गए, तो कहीं हम इन द प्रोसेस अंदर से जो कनेक्शन था वो टूटता गया। वी वेंट लाइक दिस। आज हम कनेक्टेड बहुत अच्छा है सब एक दूसरे से, पहले हमें 15 दिन लगते शायद एक चिट्ठी भेजने कहीं पर, यू नो, लेकिन वो याद कितनी अच्छी थी, वो चिट्ठी फिर भी जो जाती थी वो कितनी फीलिंग्स और भावनाओं से भरी हुई थी। आज हम एक सेकंड में ईमेल भेज सकते हैं, एक सेकंड में सेल उठाकर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना चाहते। तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि अंदर से हम जितने खाली होते गए या अपने आप से डिस्कनेक्ट होते गए, तो हम औरों से भी डिस्कनेक्ट होते गए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ब्रॉडली अगर सोचे तो उसको कहेंगे समवन हु इज अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, यू नो, अवेयरनेस, कि एक जागृता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी रैशनल इंटेलिजेंस है, जागृता है कि बाहर क्या चल रहा है। आई नो एवरीथिंग कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, दैट्स रैशनल इंटेलिजेंस, वो सब पता है। स्पेस में क्या चल रहा है, समुद्र के एकदम गहराई में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है,
1: मैं
0: सी, तब जाकर एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है। मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आकर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक पता नहीं, एंड फिर क्योंकि हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर नहीं आंसर्स निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं हम उस पर सोचना ही बंद कर देते हैं, एंड देन अगेन वी गो बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सी, दैट इज हाउ इट हैपेंड, क्योंकि हमें अंदर नहीं आंसर मिल रहा था, हम और बाहर जाने लगे, और बाहर जाने लगे, और अंदर से और दूर होते चले गए,
1: क्योंकि हमें इतनी आदत हो चुकी थी आंसर्स पाने की। बाहर हर चीज का हमें एनालिटिकल पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि हर बात का आंसर मिल रहा था।
0: बाहर जो आंसर मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, यू नो, इंस्टेंट। बाहर जो आंसर मिलता है वो प्रूफ से मिलता है, और अंदर जो आंसर मिलता है वो अनुभव से मिलता है। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब वो अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा, बट वी जस्ट थॉट दैट we're too fast, we're just moving too fast, and why were we moving too fast? Because hum bhool gaye ki main kaun hu, maine socha main sharir hu, main sharir hu, to sharir ko khushi kahan se milegi? Physical cheezon se milegi. Sharir ki life kitni hai? Bas itni hai, to itne mein mujhe sab kuch batod lena hai. To I just went fast and fast and fast, and sab kuch mil gaya, लेकिन खुशी नहीं मिली, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द बॉडी वांटेड। शरीर को जो चाहिए था वो सब मिल गया, कंफर्ट सारे मिल गए, लेकिन जिसको खुशी चाहिए थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा। तो इसीलिए नाउ वी हैव गॉन बैक टू आस्किंग आवर सेल्फ दैट क्वेश्चन कि हु एम आई, व्हाट इज माई पर्पज इन लाइफ, खुशी कहां से मिले, मेडिटेशन, यू नो, सी, ये सिर्फ अभी होने लगा, बिकॉज हमने वो पूरी

0: जर्नी कम्प्लीट कर दी और जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला, सो नाउ वी रियलाइज कि इट्स अ डिफरेंट जर्नी. एक्चुअली हम दोनों जर्नी साथ साथ कर सकते थे. इसलिए कई बार लोग कहते हैं अभी नहीं प्रोफेशनल लाइफ कर लो फिर बाद में स्पिरिचुअल लाइफ करना, बट नहीं, आपको खुशी रिटायर होने के बाद थोड़ी चाहिए.
1: इनफैक्ट एक और अब भी मुझे कुछ सुनने को मिला कि कीप योर प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट.
0: या हाउ कैन यू से दैट? इट्स लाइक सेइंग यू नो फिजिकल मेंटर, ये भी तो दो स्तर है. तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल. क्या आप कोई जब ऑफिस में आएगा आप उसको कहेंगे कीप योर फिजिकल एंड मेंटल लाइफ सेपरेट? नो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पैकेज, पर्सनालिटी है वो. एंड वो पर्सनालिटी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है जब मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, एंड नाउ स्पिरिचुअली भी हेल्दी है. सो यू कांट रियली से कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग रखो. इनफैक्ट जितना उसको इंटीग्रेट करते जाओगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ वो और भी ज्यादा अच्छी होती चाहिए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग वेरी बिग. अगेन इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया. आज इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कई बार उसका जो सार होता है कि एसेंस में वो क्या है, इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर.
1: दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू नो, बिकॉज अब हम उस दौर में हैं. सडनली आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. यू नो कहीं कितने कल्ट्स और कितने इतना सारा है, इतना कंफ्यूजन अब स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया कि हम बोलने तो लग गए हैं वही भाषा लेकिन अंदर वही इतनी कंफ्यूजन है. हाउ टू एक्चुअली यू नो सी व्हाट इज द रियल थिंग, हाउ टू रियली अंडरस्टैंड,
0: क्योंकि उसको भी शायद हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं.
1: हाँ, और बिल्कुल बोल रही है वही भाषा बोलने लग गए हैं
0: क्योंकि पढ़ ली ना.
1: हाँ,
0: पढ़ ली,
1: सुन लिया,
0: सुन ली. अभी तक भी सब कुछ रैशनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, सुन रहा था और उसी को कर रहा था, अनुभव नहीं कर रहा था. अभी उसी की आदत पड़ी हुई है तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं. तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, एवरीवन इज रीडिंग, बट वेयर इज द प्रूफ दैट आई एम रीडिंग दैट बुक? द प्रूफ has to come into me, but I just read it. मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, क्लोज द बुक एंड फिनिश, एंड देन आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय द नेक्स्ट बुक, बट आई एम नॉट यूजिंग इट. तो ज्ञान इज नॉट जस्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड डिस्कसिंग. ज्ञान मतलब अवेयरनेस, कि आप वो, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस ऑफ मेरे अंदर क्या चल रहा है. अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं इंटरनलाइज कैसे करूं? एक सिर्फ एक सेंटेंस को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, एंड यू विल नीड वन वीक टू वर्क ऑन इट. इट्स नॉट दैट सिंपल. लेकिन एक बार आपने उसके साथ वर्क कर लिया, इट्स देयर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम. उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया, और एक बार अनुभव की हुई चीज अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है. तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माय इमोशंस, माय फीलिंग्स. अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा, कंट्रोल ओवर माय इमोशंस, मास्टरी ओवर माय फीलिंग्स. अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता. तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है. इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो ईक्यू. तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा, आई एम फीलिंग दैट एंगर. जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई विल शाउट एट एवरीबॉडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया, दैट्स लो. लेकिन इफ आई एम अवेयर जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर. और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस.
1: If you talk about emotions, what exactly is meant by emotion? Because emotional strength, emotions को भी बहुत अभी भी हम बहुत positively लेते हैं कि मेरी emotions बहुत strong है, बहुत strongly feel करता हूँ मैं, या
0: feel करता हूँ. See, मैं strongly feel करता हूँ. That's okay. Emotions different, feeling different. अभी क्या हुआ है कि because we're not aware कि वो exactly क्या है, तो हम emotion word और feeling word को एक ही भाषा में use कर लेते हैं कि as if they're both the same.

0: feeling, but actually they're totally...
1: So emotion, being emotional and having feelings is a totally different thing.
0: Yeah, totally different thing. Being emotional is even taken in a very positive sense. Like we said, being sensitive. You know, being sensitive. I'm very emotional. Kya mere paas mere emotions pe koi control hi nahi hai. Koi ro raha hai to main bhi ro deta hoon. So that's not a strength actually. It just shows ki aap kitni jaldi
1: deplete
0: ho jate hain. कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं. तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ. इमोशंस वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स वुड टेक इमोशन इन अ हेल्दी वे. They think it's a healthy creation.
1: Yeah, actually.
0: Yeah. But agar spiritual level par hum usko samajhte hain, at a deeper level, to emotion is actually a disturbance. A disturbance in the energy of my consciousness. Which happens when something or someone to which I'm attached is threatened or moved. Sab kuch theek chal raha hai. Everything is going fine. तो मेरी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्टेबल है. कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है. आप आए और आपने ऐसे हाथ मारो और ये कप टूट गया. इफ दैट कप इज वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो, जैसे कईयों का होता है घर में दैट फ्लावर वाज इज वेरी प्रेशियस टू मी या ये क्रॉकरी इज वेरी प्रेशियस, मतलब आई एम अटैच्ड टू दैट. तो टूटा तो ये, लेकिन डिस्टर्बेंस यहां क्रिएट होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माई अटैचमेंट ये कप था और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने आकर हिला दिया. और जैसे ही मेरे अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट को किसी ने हिला दिया, मेरी जो एनर्जी अंदर वो डिस्टर्ब हो जाती है. एंड दैट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ पर्सन, यू नो, माई रिलेशन, समबडी आई एम वेरी क्लोज टू, समबडी आई एम वेरी अटैच्ड टू, उनको कुछ हो गया, अगर वो बिल्कुल ठीक है आई एम ओके, एनर्जी इज ओके, उनको कुछ हो गया एनर्जी यहां डिस्टर्ब, क्योंकि अटैच्ड गॉट डिस्टर्ब, आई गॉट डिस्टर्ब. इमोशन हमेशा एक डिस्टर्बेंस के रूप में क्रिएट होगा. एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस, इवन डिक्शनरी में अगर आप देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशन, इट सेज एजिटेटेड माइंड. एब्सोल्युटली, बिकॉज स्टेबल था लेकिन कहीं कुछ हुआ और यहां एक एजिटेशन शुरू हो जाती है. और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने प्रकार की इमोशंस क्रिएट करते
1: हैं, यू नो, कि
0: आप सारा दिन में हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप जस्ट कीप वॉचिंग, इट्स हैपनिंग एवरी टाइम. सारा दिन में चेक करें कि ये डिस्टर्बेंस कितनी बार होती है, कितनी, और आप पाएंगे कि इट्स जस्ट टू ऑफन, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन, बिकॉज अटैचमेंट्स बहुत सारी हैं. अटैचमेंट्स ऑब्जेक्ट से हैं, अटैचमेंट्स लोगों से हैं, अटैचमेंट्स इस शरीर से हैं, अटैचमेंट्स अपने बारे में जो सोच के रखा है. आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अटैचमेंट है उस इमेज के साथ, किसी ने आकर कह दिया आपका तो काम सारा गलत है, डिस्टर्ब्ड. क्यों? क्योंकि मेरी वो जो इमेज थी, किसी ने आकर उस इमेज को हिला दिया. तो जैसे ही वो इमेज हिलेगी मैं हिल जाऊंगी. वन डे जस्ट स्पेंड इन दिस एंड यू विल रियलाइज कि हाउ मेनी टाइम्स इट गोज, एंड दैट्स वाई इट्स हैपनिंग सो ऑफन. इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ी सी शांति चाहिए. क्यों थोड़ी सी शांति चाहिए, जबकि आई एम अ पीसफुल बींग, क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली जो स्थिति है ये सारा दिन में बहुत कम रह रही है, वो डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही है. अब जब हम अवेयर होते जाएंगे कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, नाउ आई विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग.
1: एंड बिफोर एक्चुअली गेटिंग इन टू दैट इमोशन, द अवेयरनेस विल स्टॉप मी.
0: अभी पिछले एक दो मास में हर रोज टेलीविजन पर शाम को जो मैच आता था, क्रिकेट मैच, विच इज ओके, आई मीन इट्स नॉट द क्रिकेट मैच इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा देश और मिलियंस ऑफ पीपल, वेरी मेच्योर पीपल, ग्लूड टू दैट टेलीविजन एंड उनके इमोशंस, यू सी. अब कोई कहेगा बट दिस इज गुड,
1: यूफोरिया,
0: इट्स हेल्दी, इट्स वेरी अनहेल्दी, इट्स वेरी वेरी अनहेल्दी, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को एक मिनट ऐसे, क्योंकि एक मिनट एक सिक्स हो जाएगा तो एक मिनट कोई आउट होगा. वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दे दिया है तो क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो भी एक मिनट बहुत हाई और फिर एक मिनट एकदम लो. और वो रोज, क्योंकि आप उस you know, once in a while is okay. But because ye, this went on for a couple of months and aap roz dekh rahe the usko 2 ghanta utne de, it's kind of an addiction.
1: It can be very tiring actually.
0: It is, kyunki aap it is tiring, yes. Lekin wo roz hone se kya hua ki aapke man ko us emotional disturbance ki aadat pad jati hai.
1: Then you start looking for it.
0: Yes. And then you will start looking for a stimulant which will create that disturbance. And that affects the body also. Because body mein bhi chemicals ho jate hain. So body ko bhi aadat pad gaya. So now you will start looking for things outside to create that emotional disturbance.
1: So Shivani, I'm amazed, you know, every time we pick up a topic, there's something which, like, jise hum ye soch rahe hote hain ki wo normal hai, wo sahaj hai, wo zindagi mein hota hi hai, aisa hi hota hi hai. It comes out ki it can be different actually, you know. And wo jo kahin na kahin anjane mein hi hum puri energy ko deplete kar rahe hain, wo kaise contain karke hum ek behtar zindagi jise hum talash rahe hain use pa sakte hain. Is puri baat cheet ko hum aage jari rakhenge. Aaj ki is jankari ke liye bahut bahut dhanyawad. Om Shanti.
0: Om Shanti.
1: Emotions or feelings, अभी तक हम इसे एक ही मानते थे. हमें लगता था कि अगर हम इमोशनल हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी ताकत है. अगर हम खुश हो पाते हैं या दुखी हो जाते हैं किसी को देखकर, तो वो भी, कोई अगर दुख में है तो वो, अगर हम उसके साथ रिलेट कर रहे हैं और हम खुद रोने लग जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, तो समवेयर वील हैव टू एक्चुअली चेक कि हो क्या रहा है. और जैसा कि सुषमा शिवानी ने आज कहा है कि एक दिन अपने आप को देते हैं और देखते हैं कि कितनी बार हम ये जो यो-यो होता है हमारे इमोशंस के साथ, हमारे पूरी जो स्टेबिलिटी है उसके साथ, उसे चेक करें और जानने की कोशिश करें कहां कहां हम ऊपर नीचे हुए हैं. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में का ये सफर यूं ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण आपको देते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

अफवाह और हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन करा के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। संत कबीर दास का जन्म संवत 1456 और निर्वाण संवत 1575 माना गया है। कबीर निष्कपट, फक्कड़, आडम्बरहीन और वीतरागी जीवन जीते थे। आपाद मस्तक प्रेम में डूबे हुए कबीर ने पंडित, शेख, अवधू और योगी सभी पर आक्रमण तो किया, मगर बिना किसी बदनीयत के। पूजा, नमाज, हज और तीर्थ से उनका कोई सरोकार नहीं था। बड़े ही सहज रूप से कबीर ने कहा था कि हम वासी उस देश के, जहां 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कमल, तेज पुंज प्रकाश। उनके लिए प्रेम परम पुरुषार्थ है।

भाषा कबीर की चेरी थी, मगर उन्होंने कभी भी शब्दों का आडंबर नहीं रचा। आचार्य द्विवेदी ने कबीर के बारे में कहा है कि कबीर ने कहीं काव्य लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की, तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में कम रस इकट्ठा नहीं हुआ। कबीर न तो काव्यगत रूढ़ियों के कायल थे और न ही जानकार, फिर भी यूं लगता है जैसे उनके लिखे हुए सहज दोहों में सारे जग का दर्शन समाहित हो गया हो।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

कबीर ने विलक्षण अलस अगोचर अगम्य और प्रेम पारावर भगवान को राम कहकर संबोधित किया है। राम से उनका अद्भुत रिश्ता रहा। वे स्वयं को राम का कुत्ता मानते थे। वे कहते थे, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाऊं। पर राम है कहाँ, जरा कबीर से पूछिए।

0: आसमान जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे उमेश तरकसवार, वीनस तरकसवार, निखिल, कमलेश। संगीतकार थे उमेश वीनस। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम से। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम वतन का राग, स्वराज संस्थान संचालनालय, रविन्द्र भवन परिसर, भोपाल 462002। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं swaraj@gmail.com पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.swarajsansthan.org।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटीफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM आनंदी रहा आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुणेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वो ही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रांग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
1: Om Shanti.
0: Om Shanti and welcome to Being Shakti.
1: Thank you so much.
0: Sister, main wohi lines dobara padhna chahunga jo pichle episode mein padhi thi. We each decide whether to make ourselves learn it or ignore it. No one forces us. No one decides for us. No one drags us along one path or the other.
1: Beautiful.
0: We are responsible for what we are.
1: Perfect. इसको जितनी बार बार बार भी हम सुनेंगे बार बार पढ़ेंगे बार बार इस पे मंथन करेंगे तो हमें एक क्लैरिटी आती है हमारी कितनी पावर है औरों की कितनी पावर है. वन, जब हम कहते हैं कि यू नो ब्लेम मोड में जब हम जाते हैं विक्टिम मोड में जाते हैं सेइंग आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ यू नो मैं ऐसा हूं बिकॉज ऑफ एंड देन हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सिचुएशंस है या एक लिस्ट ऑफ लोग है.
0: बहाना
1: बहाने ना ब्लेम गेम में गए ना विक्टिम आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ. तो एक वो अंडरस्टैंडिंग. दूसरी वो अंडरस्टैंडिंग जब हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं. ये लाइन हमें दोनों चीजें समझा रही है. वी ईच डिसाइड हु वी आर. नो वन कैन टेक मी ऑन दिस साइड और दैट साइड.
0: ये वाला तो मैं सोचा ही नहीं था.
1: ये भी तो समझ में आ गया ना.
0: हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं
1: बिकॉज वी ईच डिसाइड हु वी आर.
0: वो तो मैं अपने लिए सोच रहा था.
1: दोनों तरफ से समझ में आ जाएगा ना.
0: अरे ये तो बहुत अच्छा लिखा.
1: दोनों तरफ से समझ में आ जाती है अब ये बात.
0: हम जो लोगों को बदलना चाहते हैं व्हाट अबाउट दैट.
1: दैट विच मीन्स इस लाइन से हमें ये क्लैरिटी से समझ में आता है कि हमारे ऊपर लोगों का कितना असर पड़ सकता है और हमारा लोगों के ऊपर कितना प्रभाव पड़ सकता है उसकी कितनी लिमिट है. हम ये समझते हैं सी हाउ पावरलेस वी हैव बिकम एक्चुअली एक्सट्रीमली पावरलेस. हम जो हैं उसका ब्लेम हम लोगों पे डाल देते हैं. ठीक है विच इज नॉट ट्रू क्योंकि लोग हमें बना नहीं सकते. वैसा हम अपनी विक्टिम फीलिंग में रह के लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं. एंड दूसरा जहां तक लोगों को बदलने की बात आती है तो हम पूरी तरह से उनको बदलने की कोशिश करते हैं चाहे पेरेंट बच्चे को हम जैसा चाहे हम उसको बनाएं. लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है हमने उनको नहीं बदला. हम नहीं किसी को बदल सकते. ये कोटेशन ये भी तो बात अंडरलाइन कर रही है. वी ईच डिसाइड हु वी आर. वी ईच डिसाइड हु वी आर. नोबडी कैन टेक मी ऑन ईदर पाथ दिस वे और दैट वे.
0: यू मीन टू से अगर मैं जैसा मैंने बोला था कि मेरी वाइफ को आई लाइक दिस डोंट वेयर दिस तो अब मैंने बदला उसको या शी डिसाइडेड.
1: शी चोज. आपने तो राय दी. शी चोज.
0: तो मैंने बदला नहीं
1: ना. वी कैन नॉट चेंज एनी वन. चॉइस उनकी किस बेसिस पे थी उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं. सपोज एक पेरेंट बच्चे को एक हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को या फ्रेंड फ्रेंड्स को कोई भी किसी को एक बात कहते हैं कि यू शुड डू दिस यू शुड बी लाइक दिस. सामने वाली आत्मा चूज करती है कि उसको वो करना है या नहीं करना है. चूज करने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं.

0: ठीक है, सपोज राइट नाउ आप मुझे कुछ कहते हैं, आप ऐसे नहीं करो या आप ऐसे करो, ठीक है, तो आपने अपनी बात कह दी, राय दी, सपोज आपने डांट के भी राय दी या गुस्सा करके भी दी, सपोज कई बार हम बहुत इजीली कहते हैं उन्होंने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने कर लिया, ना उन्होंने तो सिर्फ गुस्सा किया, ठीक है, करना या नहीं करना फिर भी मेरी चॉइस है,
1: ये बात सही है।
0: अब मैंने जब चूज करना है कि मुझे आपकी बात को मानना है या नहीं मानना है, उसके कितने सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। एक, आपने जो बात मुझे कही वो मुझे सही लगी अपने लिए, आई लाइक्ड इट कि दिस इज राइट, ये बात मेरे लिए सही है, तो वो तो मैंने फिर उस बात को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करके उस बात को अपना बना लिया कि ये बात मेरे लिए अच्छी है, तो मैंने करना शुरू कर दिया, वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, आई फियर यू, मुझे डर लगता है।
1: थर्ड ऑप्शन, आई लव यू, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी।
0: थर्ड ऑप्शन इज आई वॉन्ट टू प्लीज यू, मुझे सिर्फ आपको खुश करने के लिए या आपका अप्रूवल लेने के लिए, क्या आप खुश रहे मेरे से, आप नाराज ना हो, विच कुड हैपन बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, विच कुड हैपन बिटवीन अ सीनियर एंड अ जूनियर एट वर्क, इट कैन हैपन बिटवीन एनी टू सोल्स, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द सोल। मैं आत्मा, अगेन उस मुझ आत्मा की पावर पर डिपेंड करता है, अगर मुझ आत्मा को वो बात सही लगी अपने लिए और मैंने चूज की करनी, वो मेरी शक्ति है। अगर मुझ आत्मा ने इसलिए चूज किया करना क्योंकि मैं डरती हूं, या मुझे आपको खुश करने के लिए करना है इवन दो आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इट, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ओनली टू प्लीज पीपल, ओनली सो दैट आई डू नॉट लूज पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल, सिर्फ ताकि लोग कहें कि आई एम गुड, मैं अच्छी हूं क्योंकि मैंने उनका कहना माना, उस रीजन से करना। और अगर वो चीज मैं कम्फर्टेबल नहीं हूं या मेरे लिए सही नहीं है, तो वो मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है। चौथा जो आपने कहा कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी फॉर एनी रिलेशनशिप, लेकिन मैं मजबूरी से नहीं कर रही, ये करके ये खुश होते हैं, अगर मैं ये करती हूं तो ये खुश होते हैं, तो करने में क्या जाता है, नथिंग, बट प्रोवाइडेड जो डिसीजन मैंने लिया वो करने का इट्स राइट फॉर मी। दूसरे को खुश करना If it's not right for me, तो वो भी मुझ आत्मा की कमजोरी की निशानी है। तो कितने सारे फैक्टर्स हो गए, तो कौन किसको चेंज कर सकता है।
1: सही बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी नई नई शादी हुई थी, सिंस बिलोंग टू हैदराबाद, तो मैंने बोला हमारे घर में हाफ स्लीव जरा अच्छे नहीं। किसी ने फ्रेंड ने पूछा वाई आंटी वेयरिंग, इतने पुराने हैं तुम, मॉडर्न पहनो। बोले माई हस्बैंड डजंट लाइक। लेकिन जब फोन किसी का आया तो मैंने बोला उसको बोलो मैं घर पे नहीं हूँ, तो उससे पहले ये वाला काम मेरे से मत कराइए आप। मैं झूठ वाला नहीं करूंगी।
0: सिंपल, ये ब्यूटीफुल है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी हर बात मान के, कहना मान के आपके अनुसार चलना है। जो बात सही लगेगी वो करेंगे, जो बात सही नहीं लगेगी वो नहीं करेंगे।
1: उन्होंने कहा मैं अनकम्फर्टेबल हूँ इसमें, नहीं कर सकती।
0: आत्मा को ये चेक करना है मैं किसमें कम्फर्टेबल हूँ, मैं किसमें कम्फर्टेबल नहीं हूँ। कोई और आत्मा डर के या खुश करने के लिए झूठ भी बोल देती फोन पे, ये भी तो करते हैं हम एक दूसरे के लिए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल, दिस इससे हमें पता चल जाता है कि मुझ आत्मा की कितनी शक्ति है और कितनी मुझे अभी और बढ़ानी है, अपने ऊपर काम करना है। लेकिन कोई और आत्मा होती वो ये भी झूठ भी बोल देती आपके लिए, और फिर सारे जीवन ये कहती क्या करूं, झूठ बोलना पड़ता है। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती, लेकिन मुझे इनकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है, विच इज अ विक्टिम फीलिंग विच मेनी ऑफ अस गिव टुडे।
1: 70s में सिस्टर हमारे पेरेंट्स फादर की जो प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें आसपास में हम लोग जब शॉपिंग पे जाते थे तो पूरी रोड में कितने कपड़ों की दुकान, पता नहीं क्या क्या दुकानें थी, एक ही दुकान थी जहां उसने लिखा था फिक्स्ड प्राइस, एक सिंगल, और सबको मालूम था एंट्री पे इसका यहाँ बार्गेन नहीं कर सकते। और दूसरी दुकान वाले मेरे फ्रेंड्स कहते थे क्या करेंगे, धंधा है ना, बिजनेस में तो बोलना ही पड़ता है, ऊपर नीचे ये तो युक्ति है, झूठ थोड़ा ये, तो 99% के अगेंस्ट एक आदमी।
0: पावरफुल सोल, दिस इज द साइन।

0: कि चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा है, चाहे संग का रंग कुछ भी है, चाहे परिस्थिति, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए उस आत्मा को थोड़ा सा नुकसान भी फेस करना पड़े, हो भी सकता है ना कुछ समय. इट टेक्स टाइम यू नो व्हेन वी स्टैंडिंग ऑन आवर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स. आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से हो सकता है कि हमारा कभी नुकसान भी हो थोड़ा सा, ये पॉसिबल है. लेकिन उस फेज को भी क्रॉस करना है. उस हो सकता है दूसरे लोग कम प्राइस पे दे रहे हो, आसपास दे रहे हो, तो ऑब्वियसली क्लाइंट किस तरफ जाएगा. लेकिन धीरे धीरे लोग किस तरफ जाएंगे जहां इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है.
1: इसके साथ उसका प्रोडक्ट भी तो अच्छा होता था ना.
0: यही तो है ना,
1: डुप्लीकेट माल तो नहीं देता.
0: मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटेग्रिटी वाली आत्मा पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं. आसपास वाली दुकान कम में भी दे दे, लेकिन आपको बहुत जल्दी उनके वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दिखाई देने लग जाते हैं कि ये कम में भी दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं ना कि अच्छी चीज दे भी रहे हैं कि नहीं. मुझे दिखने से तो पता नहीं चलती है, लेकिन आई सी द क्वालिटी ऑफ द सोल. इस आत्मा की इंटेग्रिटी कहाँ है? ये चीज इसने अभी एक्स प्राइस बोली, 5 मिनट के अंदर बार्गेन करते करते उसने 50% उसका कम कर दिया. ऐसी आत्मा क्वालिटी क्या दे रही होगी मुझे चीज की, ये हर एक को समझ में आता है धीरे धीरे. तो वो फेज थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे आप उसी के पास जाएंगे. सो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. वी आर हु वी आर, वी चूज, वी आर रिस्पॉन्सिबल. ये लाइन हमें कितना पावरफुल बनाएगी, और ये लाइन हमें दूसरों को वो जैसे हैं एक्सेप्ट करने में इजी करा देगी. हमारी जीवन की जो लंबी यात्रा चल रही है ना, दूसरों को चेंज करने की कोशिश करने की, वी कैन नॉट चेंज पीपल. हमारा रोल कितना है दोनों डायरेक्शन में, दूसरे हम पर प्रभाव डाल सकते हैं,
1: ठीक है,
0: हम पर भी संघ का जैसे आपने बोला, पेरेंट्स के वाइब्रेशन, ठीक है, सिचुएशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में भी ग्लोबल लेवल पे, देश के लेवल पे, समाज के लेवल पे सिचुएशंस आती हैं कुछ ऐसी, तो सिचुएशंस लोग हम पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन हमारा अपना होगा. सिमिलरली हम लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन
1: मेरा
0: उस आत्मा का होगा. ना कोई हमें चेंज कर सकता है, ना हम किसी को चेंज कर सकते हैं. लोग मुझ पर प्रभाव डाल सकते हैं, मैं लोगों पर प्रभाव डाल सकता हूँ, कोई किसी को चेंज नहीं कर सकता. फाइनल डिसीजन उनका है. सो नीदर अ फीलिंग ऑफ विक्टिम, कि आई एम बिकॉज व्हाट पीपल डिड टू मी, नीदर अ फीलिंग ऑफ अ कंट्रोलर, कि आई कैन चेंज पीपल, सी आई चेंज सो मेनी पीपल, आई चेंज दिस वन, आई चेंज माई दिस वन, आई चेंज, नीदर वन इज पॉसिबल. ये आत्मा को बहुत पावरफुल और बहुत लाइट बना देगा. हम दोनों चीजों में आज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जहां अपनी बात आती है अपने संस्कारों की, तो हम बेचारा बन जाते हैं, हम कहते हैं क्या करें, इट्स बिकॉज ऑफ, तो वो पावर हम खो देते हैं. जहां दूसरों के संस्कारों की बात आती है, तो हम कहते हैं नहीं ये सही नहीं है, इसको तो मुझे बदलना ही है.
1: मेरे पास एक गुस्से का संस्कार ज्यादा था. मैं कितना लोगों को गया, मैंने बोला गुरु जी मुझे शांति चाहिए, गुरु जी मुझे शांति. फाइनली कि एक गुरु ने बोला कि भाई तू शांति के कर्म तो कर.
0: सिंपल,
1: तो मांगते ही रहता है शांति. कर्म क्या करता है शांति के?
0: अब ये इसी लाइन को देखते हैं. उन्होंने आप पर प्रभाव डाला, मतलब एक राय दी, एक बात बोली, आप शांति मांग रहे हैं तो आप शांति के कर्म करें. सिंपल, राय दिया, अगर उस राय का आप पर प्रभाव पड़ा तो आपने उस राय को स्वीकार किया, फिर उसको अपने जीवन में यूज करना धीरे धीरे. इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दिस, लेकिन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया. सपोज आपकी स्थिति, आपका संस्कार चेंज हो जाता है, लेट्स से अगले 6 महीने के अंदर, ठीक है, कि आपके अंदर 6 महीने पहले बहुत गुस्सा था, आप उनसे मिले, उन्होंने कहा आशीर्वाद ब्लेसिंग्स, तुम आज से शांति के कर्म करो. आपने पुरुषार्थ करना शुरू किया, 6 महीने के अंदर एक बहुत नोटिसेबल विजिबल चेंज आया, राइट? लेकिन ये जो चेंज आया, ये चेंज कौन लाया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप ये फील करते हैं कि ये मेरा संस्कार इस गुरु ने चेंज किया, तो भी आप अपने आप को कमजोर

0: than 30 years. मैं कुछ ऐसी कर रहा था किसी प्रोड्यूसर से, यू नो, थोड़ा सा झुक के बात कर रहा था, कुछ काम चाहिए था, तो पीछे से कहता है सुरेश भाई आपको शोभा नहीं दे रहा है, यू नो आई वॉज मेकिंग अ ड्रिंक फॉर हिम, तो मतलब ये आप मत करिए आपको शोभा नहीं देता. तो मैं ऐसा हिला, वो कौन था क्या था मुझे आज तक याद नहीं है सिस्टर. उसके बाद मैंने अपनी रेस्पेक्ट रखी, मैंने बोला इतना झुकना नहीं है. तो जैसे आपने कहा ना कि कोई कब आके सिखा जाता है, और सारी जिंदगी के लिए वो मुझे सिखा गया, फिर मैं कभी नहीं किया, फिर मैंने मांगा ही नहीं.
1: दिस इज इट, मतलब जिसने कहा वो बात उसकी वो अपने जीवन की धारणा थी.
0: लेकिन मैं दूसरों को देखता था ना कि इनसे वो लोग खुश रहते हैं, ऐसा करने वाले ये बिहेवियर, तो मुझे ना चाहते हुए वो बिहेवियर मैं ट्राई कर रहा था.
1: राइट.
0: तो ऐसा टच किया. आई स्टिल डोंट नो हु ही वाज, यहाँ हाथ लगाया था.
1: अभी तुम जानते ही नहीं, देखा ही नहीं, पता ही नहीं, लेकिन शब्द में कितनी पावर थी
0: उसकी, फीलिंग में और उसका मेरे बारे में
1: भावना, इंटेंशन. सो वाइब्रेशंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है. लेकिन इससे अभी हमें क्लैरिटी से समझ में आ जाता है लोगों की हम पर कितनी पावर है और हमारी लोगों पर कितनी पावर है. इसकी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए. ये हमारे जीवन जीने के नजरिए को बदल देती है. आज हम अपने लिए कह देते हैं मेरी गलती नहीं, और दूसरे के लिए कह देते हैं ये ठीक क्यों नहीं हो जाता. अपने को चेंज करने के लिए हमें दिखता है कि कितना मुश्किल है. आज अपना एक संस्कार उठा लीजिए, कोई भी एक, एनीथिंग, एनी वन संस्कार, एंड जस्ट सी हाउ मच टाइम इट टेक्स. इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस. ऐसा नहीं होता कभी आज से मैं ये नहीं करूंगा, हो गया. ऐसे तो कोई भी नहीं कर सकता है. जब हमें अपना एक संस्कार चेंज करने में, अपना जिसमें कंप्लीट हमारी पावर है, जब अपना एक संस्कार चेंज करने में एफर्ट, अटेंशन, फिर उसमें भी कभी हम हारते हैं, फिर कभी ओवरकम करते हैं, कभी नहीं कर पाते, इट्स अ जर्नी ना. जब अपना एक संस्कार चेंज करने में इतनी जर्नी, अटेंशन, एफर्ट जाता है, तो हमारे बोलने से दूसरे का संस्कार चेंज हो जाएगा. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसा ये कभी कैसे हो सकता है? हम इतना इजीली दूसरों को कह देते हैं ऐसे नहीं, ऐसे करो, तुम ऐसे नहीं, ऐसे होने
0: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम?
1: इतना भी नहीं कर सकते क्या तुम? क्यों हम बोलते हैं इतना भी नहीं कर सकते?
0: इतनी भी समझ नहीं है क्या तुम में? इतना तो सोचो, उम्र देखो, क्या क्या बोल देते हैं हम.
1: बिकॉज कुछ संस्कार जो हमारे पास है वो हमारे लिए बहुत कम्फर्टेबल है. राइट. सपोज आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो आपके लिए इतनी नेचुरल चीज है, तो मतलब वो कुछ एफर्ट नहीं है ना. सो जो चीज का हमें एफर्ट नहीं होता तो हम उसको जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो है ही, मतलब ये कैसे नहीं हो सकता किसी के पास, ये तो है ही. तो आप अभी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, पेड़ को भी हिला सकते हैं. सपोज मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ कम है, तो मेरे लिए तो आधा किलोमीटर चलना भी एक एफर्ट है. लेकिन तब उस चीज को देखकर कि कैसे चल रहे हैं, इनको आधा किलोमीटर चलना मुश्किल है, और वो भी कितना धीरे धीरे, ऐसे कोई चलता है क्या? वो भी टेढ़ा होके ऐसे, ऐसे कोई चलता है? तो देन यू विल मेक फन ऑफ मी, यू विल रिडिक्यूल मी, यू विल क्रिटिसाइज मी ऑल्सो कि इतना भी नहीं करना आता.
0: ये जो आपने बात की कि क्रिटिसाइज, रिडिक्यूल वर्सेस जो हाथ मुझे आया जिस आत्मा का, ये आपको शोभा नहीं देता. तो सिस्टर मैं उसके बाद हर चीज वो मैंने बांध लिया, मतलब आ गया, कहीं भी कोई भी चीज जो शोभा नहीं देती उसके बाद मैंने कभी नहीं किया, चाहे मंत्री होए, चाहे फिल्म होए, चाहे अच्छे से अच्छा रोल होए, या कोई मतलब दुनिया का कोई किंग बोले क्या चाहिए, जहां शोभा मतलब मुझे जो शोभा नहीं देती, अपने से झुक के अपने आप को गिरा के कभी. लोग भले मुझे बोले एरोगेंट, बड़ा अकड़ू है या बड़ा अहंकार है, नहीं, मैंने उसकी बात को पकड़ ही लिया था.
1: अब उस बात को भी हम और गहराई से देखेंगे, क्योंकि राय दूसरे ने दी, राय किस भाव से दी, किस भावना से दी, किस सिचुएशन में दी, और किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए दी, और फिर क्या हमने उसको देखा कि उसने मेरे जीवन को कंफर्टेबल बनाया? मुझे कौन सी चीज शोभा नहीं देता?
0: जो भी रॉयल्टी नहीं है, नहीं.
1: जो भी रॉयल्टी नहीं है,
0: नहीं करूंगा,
1: नहीं करूंगा. अब इस लाइन को और गहराई से लेना है, जो भी रॉयल्टी नहीं है वो नहीं करूंगा.

0: बहुत सूक्ष्म, जैसे आपने अभी कहा ना कि जो चीज हम कर रहे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर लाइन के लिए भी कि ये शोभा नहीं देता, लेकिन ये लाइन इम्प्लीमेंट करते करते मेरे जीवन में अहंकार बढ़ रहा था या नम्रता, ये मुझे चेक करना है। ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। आंतरिक शक्तियां ना, आंतरिक शक्तियां बहुत सूक्ष्म होती है।
1: नहीं, उस टाइम पे तो अहंकार बढ़ा।
0: ये हम और गहराई से देखेंगे फिर कि मेरे जीवन में क्या बढ़ा उस लाइन से
1: अहंकार,
0: और उस लाइन को आज भी लेना है फिर से, क्योंकि लाइन तो बहुत ब्यूटीफुल है कि ये आपको शोभा नहीं देता, मतलब ये रॉयल्टी नहीं है। लेकिन अब मैं उसके और डीपर मीनिंग में जाऊं और चेक करूं क्या क्या मुझे शोभा नहीं देता और क्या क्या चीज मेरे लिए कंफर्टेबल है, तो दूसरे की दी हुई राय भी एज इट इज नहीं इम्प्लीमेंट करनी होती। दिस इज द पावर।
1: मैंने दूसरे की दी हुई राय इम्प्लीमेंट नहीं की, मेरे अंदर कुछ जाग गया है,
0: दैट्स ओके, बट उसको
1: और मैं वैसा बन गया, लेकिन आई एक्सेप्ट कि मेरी, मैंने कभी भी उसको नम्रता से नहीं किया।
0: So, इसीलिए जब हमें कोई राय दे, एनीथिंग, नॉट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, जस्ट अदरवाइज, उस राय को लेना है, अपने लिए चेकिंग करनी है,
1: बढ़ता गया मेरा,
0: मेरे लिए क्या कंफर्टेबल है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, फिर उस राय को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज हमने राय को इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हमें लगा कि नहीं इतना नहीं ऐसे, फिर हमें उसको चेंज करना है। तो यही जो आप कह रहे थे पहले कि हम बहुत इजीली लोगों को कह देते हैं कि तुम इतना भी नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर सीइंग पीपल थ्रू आर संस्कार। आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू अगर मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ पर यू नो एडवाइस देंगे या कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी।
1: सही बात।
0: और आप इतना इजीली मुझे कह देंगे इतना भी नहीं कर सकते,
1: चार रोटी नहीं खा सकते, हाँ, तो दो ही खाते।
0: सो वी आर सीइंग पीपल थ्रू आर संस्कार, वी हैव टू सी पीपल थ्रू देयर संस्कार।
1: सिस्टर, देयर संस्कार का मतलब ये है कि हम उसको कहीं ना कहीं इस तरह बोल के वीक भी तो फील कराते हैं ना।
0: राइट,
1: ये मैं बात आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अगले एपिसोड।
0: थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: वी ईच डिसाइड हु वी आर, नो वन ड्रैग्स अस अलोंग वन पाथ और द अदर, व्हिच मींस वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हु वी आर and cannot blame situations, past or people. It also means other people will choose their path. We cannot force them to change. We can give our opinion to people. To accept it or not is their choice. They can accept because they found it right, or they fear us, or they seek our approval and want to please us, or they will do it for our happiness. Whatever may be the reason, choice and decision is theirs. We have not changed them. People and situations can influence us, but the final decision will be ours. We can influence people, but the final decision will be theirs. No one can change us, and we cannot change anyone. Neither a victim feeling that we are who we are because of others, nor a feeling of being a controller. When we give advice to others, our vibrations and words both radiate to them. If we believe and live that advice, if it is a part of our energy field, then our vibrations and words will be in harmony and will create a powerful impact on them. Our vibrations influence others more than our words.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो, इसको पता चले कि दुख

0: चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, तैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले, क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा, अब ईंट का जवाब किससे भेजेंगे?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, अपने एक तहत रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मी आहे आपल्यासाठी शुभ असलेली शुभांगी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: परिस्थिति शब्द में ही सारा मीनिंग है। परिस्थिति किसी और की स्थिति, वो परिस्थिति है, किसी और की स्थिति है, और ये स्वस्थिति है, ये मेरी स्थिति है। आज हम अनअवेयर, क्योंकि सबने कहा, हमने भी मान लिया, सबने कहा जैसी परिस्थिति वैसी स्वस्थिति, और परमात्मा ने आकर सिखाया वो परिस्थिति और ये स्वस्थिति किसकी चॉइस है। टोटली ये टोटली मेरी चॉइस है, और एक बार वो करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अगली स्टेज आ जाती है कि जैसे स्वस्थिति वैसी परिस्थिति।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार, मैं हूँ अमोल। आप सभी रेडियो पुनेरी आवाज सुनने वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: प्यार के जमाने
1: आज कहां लगेगा
0: आए प्यार के जमाने
1: आज कहां लगेगा
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: दुल्हन को मनाने
1: चल हट रे दीवानी
0: ऐसे तो नहीं मैं तेरे दर से हटूंगा गोरी जी मैं सचू तो अब मर के रहूंगा गोरी दिल में यही है कुछ करके हटूंगा गोरी आजा तू आजा

प्यार की कसम। प्यार हमेशा से है अकल गंवाने वाला फूल, समझ कर शोले को उठाने वाला, आग से खेले वही जो है जल जाने वाला फूल।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरी जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारें तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चांद